मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026, प्रातः के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आषाढ़ माह के बाद सावन के इस माह में चारों तरफ हरियाली और ऊर्जा फैली हुई है। आसमान से आती बूंदें धरती के हर कण को तृप्त करती हुई उसमें गति और ऊर्जा भर रही हैं। नई उल्लास के साथ नई चेतना जागृत हो रही है और ऊर्जा को और अधिक बढ़ा रही है। और इसी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने लेकर आए हैं हम कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी हमजोली, जी हां संजोली। तो श्रोताओं, हम अपने सभी का स्वागत करते हैं। और श्रोताओं, वक्त हो चला है दीन दुनिया की खबर रखने का, यानी समाचार का। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4था युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस

0: पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर कृषि के विषय में चर्चा होना उतना ही जरूरी है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत एक भेंट वार्ता डॉक्टर अरुण कुमार से। वार्ता का विषय है खरीफ फसलों से समन्वित नाशी जीवी प्रबंधन, और आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं। खरीफ में हानिकारक कीट बीमारियों और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए समन्वित नाशी जीव प्रबंधन कैसे अपनाएं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि रक्षा विशेषज्ञ अरुण कुमार राय साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। राय साहब, ये बताएं कि खरीफ फसलों में IPM यानी समन्वित नाशी जीव प्रबंधन कैसे अपनाएं किसान भाई बहन?
3: नाशी जीव प्रबंधन एक उपयोगी विधि को हम कहते हैं, जिसमें हम सभी तरह की विधाओं का प्रयोग करते हैं कीट और बीमारियों के नियंत्रण करने के लिए। इसमें यांत्रिक विधि या कर्षण विधि, साथ में जैविक विधियों का भी उपयोग करते हैं, और अंत में यदि किसी प्रकार की समस्या रह जाती है तो रासायनिक विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारा मिला जुला जो हम प्रयोग करते हैं, इसे समन्वित नाशी जीव प्रबंधन कहते हैं।
2: तो इसमें खेती की लागत भी कम होती है?
3: डॉक्टर साहब, इसमें लागत ही नहीं कम होती है। आज मुख्य जो हमारी आवश्यकता है, लागत कम करने के साथ साथ विष मुक्त और पोषण युक्त खेती करने की आवश्यकता है। तो जिसमें लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ेगा।
2: क्योंकि लगातार कृषि रक्षा रसायनों के अनियंत्रित प्रयोग से जो मित्र जीव हैं, फफूंद हैं, मित्र बैक्टीरिया हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं।
3: जी, जमीन में लगभग 24 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ पोषक तत्व, उसके साथ कुछ जीवाणुओं की आवश्यकता होती है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है और कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। यही जीव जो जमीन में 24 तरह के अलग अलग ऐसे हैं तो बहुत सारे, बट प्रमुख रूप से जो 24-25 प्रकार के जीवाणु होते हैं, यह धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से नष्ट हो रहे हैं।
2: तो खरीफ फसलों की बात करें, इनमें ये जो IPM है, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, ये कैसे अपनाएं किसान?

0: अनियंत्रित प्रयोग से जो मित्र जीव हैं, फफूंद हैं, मित्र बैक्टीरिया हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं।
1: जी, जमीन में लगभग 24 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ पोषक तत्व, उसके साथ कुछ जीवाणुओं की आवश्यकता होती है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है और कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। यही जीव जो जमीन में 24 तरह के अलग अलग ऐसे हैं तो बहुत सारे, बट प्रमुख रूप से जो 24-25 प्रकार के जीवाणु होते हैं, यह धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से नष्ट हो रहे हैं।
0: तो खरीफ फसलों की बात करें, इनमें ये जो IPM है, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, ये कैसे अपनाएं किसान भाई?
1: डॉक्टर साहब, आज के नियंत्रण की बात अगर हम करें तो हमें कोशिश ये करनी है कि कोई बीमारी आने के पहले बचाव का कैसे उपयोग करें।
0: जी,
1: बचाव में हमारे पास दीमक का प्रयोग कम होता है बरसात में, लेकिन अगर धान की फसलों में या कहीं है तो उसके लिए बवेरिया बैसियाना का प्रयोग करना है। अगर फफूंद जनित बीमारियां किसी खेत में ज्यादा लगती हैं या ऐसी कोई समस्या है तो वहां पर हमें ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास का प्रयोग करना है, जो बीज उपचार में भी करना था सामान्यतया किसान भाइयों ने किया होगा, या अगर जो अगल दलहन या कुछ और बुआई कर रहे हैं तो बीज उपचार स्यूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा से सबसे पहले अवश्य करें, जिसके लिए 1 किलो बीज के लिए 1 माचिस के डिब्बी भर स्यूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा पर्याप्त होगा। इससे बीज को उपचारित करें, यह पहला सुरक्षा का टीका है। बाद में जमीन में भी अगर संभव हो, या जहां बुआई अभी बाकी है अथवा बीच में भी कई बार अगर वो खाद या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने जा रहे हैं या कर सकते हो, इसको गोबर की खाद में 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास को 30-40 किलो, 50 किलो या 100 किलो गोबर की खाद में मिला के छाये में 2-3 दिन के लिए फैला दें, जिससे ये पूरी तरह से अपनी कॉलोनी बना लें, विकसित कर लें, फिर इस जीवाणु युक्त कंपोस्ट को खेत में बखेर दें। आपके खेत का वास्तव में स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और फसल में स्वतः प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होगी, जो बहुत सारी बीमारियों को आने से ही रोक देगी।
0: राय साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 9450932236, 94509-32236।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन के बारे में? राय साहब,
1: खेत की अंतिम तैयारी बहुत सावधानी से करें, खरपतवार नियंत्रण नियमित रूप से करें, मेड़ों को साफ सुथरा रखें और खेत में हरी खाद और कंपोस्ट का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कार्बनिक मैटर खेत में बढ़ेगा और जीवाणुओं का मुख्य भोजन यही कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो इसकी मात्रा बढ़ाएं, आप अपने आप फसल को सुरक्षित करें और पैदावार भी बढ़ाएं।
0: अरुण कुमार राय साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन कैसे अपनाएं किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारे उपाय बताए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत एक भेंट वार्ता डॉक्टर अरुण कुमार से। मीडियम वेव 401.61 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इसलिए विचारों का सही मार्ग पर होना बहुत जरूरी है और जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर ज्ञान की वृद्धि करती है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये सुविचार जिज्ञासा डॉक्टर शिवा राकेश से।
3: स्वयं अपनी एक ज्ञान शक्ति होती है, जिज्ञासा के जागते ही किसी बात को जान सकने का सहायक ज्ञान स्वयं ही विकसित होने लगता है। जो जो जिज्ञासा गहरी होती जाती है, ज्ञान भी बढ़ता जाता है। मनुष्य की जिज्ञासु वृत्ति ने ही उसे दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं अन्वेषक बनाया है। यदि जिज्ञासा न होती तो मनुष्य में इस प्रकार के प्रश्न ही क्यों जागते कि वे क्या है, ये विराट विश्व क्या है, इसका रचयिता कौन है और इस संपूर्ण प्रपंच का प्रयोजन क्या है, इन सब का आदि कहां से होता है, अंत कहां होगा और भला क्यों इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में वह परिश्रम करता। जिज्ञासा के अभाव में मनुष्य आज जिस ज्ञानपूर्ण स्थिति में आया हुआ है कभी ना पाता। आज मनुष्य के ज्ञान भंडार में जो कुछ संचय है, वह आगे भी जो वृद्धि होगी उसका भी मुख्य हेतु उसकी जिज्ञासा ही होगी। आज यदि मनुष्य की

0: जिज्ञासु वृत्ति कुंठित अथवा तिरोहित हो जाए तो उसका ज्ञान अभिमान जहां का तहां ठप हो जाए और तब आगे भी ये जान सकने की संभावना सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए कि आखिर इन मंगल चंद्र अथवा बुध ग्रहों पर क्या है, इनका वास्तविक अस्तित्व क्या है, क्या इन पर भी उसी प्रकार जीवन का अस्तित्व हो सकता है जिस प्रकार की हमारी पृथ्वी पर। यदि इनमें जीवन है तो वहाँ के जीव किस प्रकार के हैं, मनुष्य की भांति उनके परम लक्ष्य मोक्ष की क्या परिभाषा होगी, और न जाने उनका साहित्य सभ्यता संस्कृति कला कौशल शिल्प व रहन सहन किस प्रकार का होगा। जिज्ञासा के आधार पर ही तो मनुष्य एक दूसरे से ज्ञान ग्रहण कर आगे बढ़ता है। जब किसी में कुछ जानने अथवा सीखने की उत्सुकता ही न रहेगी तब वे क्यों व्यर्थ में किसी विषय पर ज्ञानोपार्जन करेगा। जो जिज्ञासु है वही गहरे बैठता है। जिज्ञासु की दृष्टि सामान्य लोगों से कुछ अधिक पैनी और खोजक होती है। किसी एक दृश्य या घटना को कोई सामान्य व्यक्ति देखता है तो वे उसके लिए एक साधारण बात होती है, किंतु जब उसी विषय पर किसी जिज्ञासु व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तो वही साधारण बात कोई दार्शनिक अथवा कवित्व पूर्ण अभिव्यक्ति पाकर असाधारण बन जाती है। जिज्ञासु के लिए संसार की हर घटना एक रहस्य एवं एक महत्व लिए रहती है। एक रसोई के लिए भाप से बटलोई का ढक्कन उछलना सामान्य बात होती है, किंतु स्टीवेंसन के लिए भाप से ढक्कन का उठना गिरना एक असाधारण रहस्य की बात बनकर इंजन के आविष्कार का कारण बनी। एक माली के लिए पेड़ से फल गिरना एक सामान्यतम घटना है, किंतु उसके आधार पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत के ज्ञाता न्यूटन के लिए वह असाधारण महत्व की बात थी। इतनी असाधारण कि आगे चलकर उसी आधार सूत्र के बल पर अधर में लटके इस ब्रह्मांड के हर ग्रह नक्षत्र की चाल तथा अवस्था का रहस्य मालूम कर लिया गया। जिज्ञासा ज्ञान की महान जननी है। मनुष्य की जिज्ञासु बुद्धि उस चींटी की तरह सतत प्रयत्नरत रहती है जो सात पर्दों में छिपी हुई शक्कर को भी खोज कर दम लेती है। जिज्ञासु बुद्धि का सहज गुण होता है कि जब तक वह अज्ञात रहस्य को खोज नहीं लेती संतुष्ट नहीं होती, दिन रात उसी के पीछे लगी रहती है। जिज्ञासु की बुद्धि बड़ी ग्रहणीय होती है। वे एक बार में ही कोई बातें देख सुनकर ग्रहण कर लेती है और फिर कभी नहीं उसे भूलती। अजिज्ञासु बुद्धि कुंद एवं कुंठित होती है। हजार बार देखने सुनने और पढ़ने पर भी वे ना तो किसी बात को ठीक से समझ पाती है न ही याद रख पाती है। जिज्ञासा का अभाव मनुष्य को मंदबुद्धि बना देता है। जिज्ञासु व्यक्ति किसी भी बात की तह तक बैठ कर उसमें से किसी न किसी प्रकार की उपयोगिता खोज लाता है। जिज्ञासा शारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चारों उन्नतियों की हेतु होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जिज्ञासा को प्रमाद पूर्वक नष्ट न करे, उसे विकसित एवं प्रयुक्त करे, और यदि जिज्ञासा नहीं है तो उसे चाहिए कि वह तन्मयता एवं गहरे पैठने के अभ्यास से उसे पैदा करे, क्योंकि जिज्ञासा ही भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों महान क्षेत्रों में प्रगति का आधार बनती है।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ये सुविचार जिज्ञासा डॉक्टर शिवा राकेश से। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है 747 किलोहर्ट्ज़ पर। मनुष्य जीवन में ईश्वर के अस्तित्व को सहज रूप से साधना ही आराधना है। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

कि हे ईश्वर, आपका होना हमारे अस्तित्व को पूर्ण करता है। आप में समाहित होकर हम अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और अपने आप को संतुलित करते हैं।

भोले शंकर दीनों के हर पल बने सहारे, जपते हैं शिव नाम मिटे जीवन की अंधियारी। गंगा जटा चंद्र मुकुट

कि हे ईश्वर, जिसे संसार ठुकराता है उसे तू अपनाता है, मजबूत बनाता है, उठाता है और फिर उसे खड़ा कर देता है आत्मविश्वास के साथ।

कि हे प्रभु मेरे अवगुण बिसरा दो, चरणों में मुझको स्थान दो, भटके हुए इस जीवन को अपनी कृपा की पहचान दो, तेरी दया से खिल उठे मन का सूना हर एक द्वार, हे ईश्वर कृपा करो, कर दो मेरा जीवन साकार।

कि ईश्वर को जिस रूप में पूजो वो आपके साथ उस रूप में होता है, कि तेरी रोशनी से ही सहारा है भवानी, तेरी ज्योति से ही उजियारा है भवानी, तू हर राह में दिया बन बस साथ चलना माँ, तेरी नूर का ही नजारा है भवानी।

कि हे ईश्वर तेरा धन्यवाद इस सुंदर जीवन के लिए, हर सांस तेरी रहमत है, हर धड़कन तेरे ही दिए, सुख दुख में तेरा साथ मिले बस इतनी सी अरदास रहे, तेरे चरणों में शीश झुका जीवन भर मेरा विश्वास रहे।

कि हे ईश्वर, हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना और सद्मार्ग पर हमेशा चलाए रखना। इसी प्रार्थना के साथ आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मीडियम वेव 401.61 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अनेक ग्रंथों में महान ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग, भाग 251। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

शूर्पणखा जैसी राक्षसी, कामांध स्त्री, मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वो भाई, पिता, पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती। श्री राम ने लक्ष्मण को शूर्पणखा के कान और नाक काट देने का इंगित किया। लक्ष्मण ने स्वामी के आदेश का पालन किया। वो विलाप करती अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाकर उनके पौरुष को ललकारती है। शूर्पणखा के आहत होने का हाल सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े। राक्षसों की सेना निकट आई देख श्री राम ने लक्ष्मण के साथ सीता जी को पर्वत कंदरा में भेजकर अपने धनुष पर वाण चढ़ाया। ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे मतवाले हाथियों को आता देख सिंह उन्हें ताक रहा हो। श्री राम को देख राक्षसों की सेना चकित थकित रह गई। ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी देखा न था, उन पर वाण कैसे छोड़ें? तब युद्ध न करने के उद्देश्य से खर दूषण ने श्री राम से उनकी स्त्री की मांग की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस की संगीत में प्रस्तुति। आज का प्रसंग भाग 251, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब संस्कृत में समाचार होंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिकरूपेण सुदृढाः मानसिकरूपेण सबलाः आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। स्वस्थ मनुष्य में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए हमारा स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज का विषय है पारंपरिक स्वाद और स्वास्थ्य का संगम आम रस, और जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: नमस्कार, प्रतिदिन आप सुनते हैं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी मिठास की जो आपने जरूर चखी होगी। आप सभी का मैं नीना सोनकर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज की सुबह की मिठास हम एक ऐसे पारंपरिक प्रिय और बेहद लुभावने व्यंजन से शुरू करेंगे, जिसे न केवल भारत के हर कोने में प्रेम पूर्वक खाया जाता है, बल्कि गर्मी की दोपहरों में जब आम पक कर मिठास से भर जाते हैं तो घर घर में एक विशेष रस बनने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम रस की। आम का नाम सुनते ही जैसे मन में एक रसीली सुनहरी मखमली मिठास उतर जाती है, लेकिन जब यही आम मसलकर छानकर या कभी कभी हल्के दूध या इलायची के साथ मिलाकर एक परिपूर्ण रूप में हमारे सामने आता है तो उसे आम रस कहा जाता है। आम रस केवल एक व्यंजन नहीं है, ये भारतीय ग्रीष्म ऋतु की आत्मा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आम रस किसी उत्सव से कम नहीं होता। और बात जब स्वास्थ्य की हो तो इस रस में छिपे पोषण के कई अनदेखे पहलू सामने आते हैं। आम रस सबसे पहले तो ऊर्जा का भंडार है। ग्रीष्म भीषण गर्मी में

0: जब शरीर थक जाता है, जब दोपहर की धूप भीतर तक झुलसाती है, तब ठंडा आमरस एक प्राकृतिक ऊर्जा टॉनिक का काम करता है। आम में मौजूद प्राकृतिक शर्करा, खासकर फ्रक्टोज और ग्लूकोज, शरीर को तुरंत ऊर्जा देती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में खेतों में काम करने वाले लोग या यात्रा पर जाने वाले आमरस को अपना साथी बनाते थे, ताकि पसीने से निकली शक्ति को तुरंत फिर से प्राप्त किया जा सके। आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो आंखों की रोशनी को बनाए रखने में सहायक है। यही नहीं, इसमें बीटा कैरोटीन नामक तत्व भी होता है, जो त्वचा को पोषण देता है, उसे चमकदार और स्वस्थ बनाता है। जब आम को शुद्ध रूप में किसी रसायन के बिना सावधानी पूर्वक धोकर और छीलकर आमरस के रूप में तैयार किया जाता है, तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। आम रस में श्रोताओं विटामिन सी भी पाया जाता है, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करता है। ये न केवल त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है, बल्कि कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है और सर्दी खांसी जैसी समस्याओं से दूर रखता है। विशेषकर बच्चों और वृद्धों के लिए आमरस एक स्वादिष्ट और उपयोगी विकल्प हो सकता है। कई घरों में आमरस को दूध में मिलाकर पीने का चलन है। ये मिश्रण न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि शरीर को शीतलता भी देता है। वहीं कुछ लोग इसे पूड़ी या पराठे के साथ खाते हैं, जिससे ये एक संपूर्ण भोजन बन जाता है। हालांकि ये ध्यान देने की बात है कि आमरस स्वाद में जितना मोहक है, उसे पचाने के लिए उतनी ही सावधानी भी जरूरी है। ज्यादा मात्रा में आमरस खाना कभी कभी पाचन पर दबाव डाल सकता है, इसलिए संतुलन आवश्यक है। अगर हम बात करें आमरस के परोक्ष लाभों की, तो ये मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुख में भी योगदान देता है। जब परिवार एक साथ बैठकर आमरस खाता है, बच्चे खुशी से चम्मच चाटते हैं और बुजुर्ग उसकी मिठास को बचपन की यादों से जोड़ते हैं, तब केवल शरीर नहीं मन भी तृप्त होता है। भोजन जो केवल भूख मिटाने तक सीमित ना रह जाए, बल्कि संवाद, स्मृति और सुख का माध्यम बन जाए, यही तो भारतीय रसोई की विशेषता है। आम रस में फाइबर की मात्रा भी होती है, जो पाचन को नियमित रखने में सहायक है। कब्ज की समस्या से जूझ रहे लोगों को आम रस एक सरल और स्वादिष्ट समाधान दे सकता है। इसके अलावा आम में कुछ ऐसे प्राकृतिक एंजाइम्स होते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, विशेषकर गर्मी के मौसम में, जब अपच, जलन और सुस्ती जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब आमरस शरीर को सहजता देता है। आमरस में पानी की मात्रा भी होती है, जिससे ये शरीर में तरल की पूर्ति करता है। कई बार जब लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तब ऐसे रसीले फल या उनसे बने पेय शरीर को हाइड्रेटेड रखने में सहायता करते हैं। गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आमरस एक घरेलू उपाय की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग आमरस को थोड़ा अलग ढंग से बनाते हैं, उसमें इलायची, केसर या कभी कभी थोड़ा सा जायफल भी मिलाया जाता है। ये न केवल स्वाद को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने आप में औषधीय गुण भी रखते हैं। इलायची पाचन में सहायक होती है, केसर शरीर को ठंडक देता है और जायफल नींद लाने में मदद करता है। इस प्रकार जब हम प्राकृतिक या पारंपरिक ज्ञान के साथ रसोई को जोड़ते हैं, तो आमरस मात्र एक पेय नहीं रह जाता है, वो जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाता है। तो इस गर्मी आइए हम फिर से अपनी रसोई में आमरस को स्थान दें, बच्चों को इसके बारे में बताएं, बुजुर्गों की पसंद का ध्यान रखें और साथ बैठकर स्वाद और स्वास्थ्य के इस रस को आत्मसात करें, क्योंकि जब शरीर, मन और स्वाद एक साथ तृप्त हों, वही तो असली भोजन होता है। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए पारंपरिक व्यंजन या देसी स्वास्थ्य वर्धक सामग्री के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, स्वाद के साथ संतुलन बनाए रखें और हर दिन मिठास से भर दें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकालीन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश हमारे दिल्ली केंद्र से। पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। विधानमंडल समीक्षा

शायरी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। शाम 7:31 पर सुनेगा स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत एक वार्ता डॉक्टर जया श्रीवास्तव से। वार्ता का विषय होगा स्तनपान, माँ का आंचल, बच्चे का कवच। साथ ही एक और सुनेगा वार्ता डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ला से, विषय होगा कमर दर्द, सियाटिका कारण, लक्षण और उपचार। शाम 6:30 पर और 6:50 पर होगा हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम लोकायतन व खेती किसानी। लोकायतन के अंतर्गत आज आप सुनिएगा एक भेज वार्ता डॉक्टर सुनील प्रधान से। वार्ता का विषय होगा बढ़ती न्यूरो समस्याएं, कारण और बचाव, और आपसे बात करेंगी नीना सोनकर। कार्यक्रम खेती किसानी के अंतर्गत आज आप सुनिएगा एक भेंट

नीना सोनकर। कार्यक्रम खेती किसानी के अंतर्गत आज आप सुनेगा एक भेंट वार्ता डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव से। वार्ता का विषय होगा मिश्रित मत्स्य पालन और मत्स्य तालाब की देखभाल, और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। नई उड़ानी कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर, और हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग होगा अपने ही समय पर यानी शाम 5:10 पर। कार्यक्रम विज्ञान और किसान आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे एक भेज वार्ता डॉक्टर रतन कुमार आनंद से। वार्ता का विषय होगा खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन, और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। दोपहर 2:45 पर लोक संगीत के अंतर्गत लोक माधुरी में आनंद लीजिएगा अलका वाजपेयी व साथी के स्वर में आला गायन का। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए होगा दोपहर 1:50 पर। घर आंगन हमारी ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा दोपहर 1:15 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आप सुन सकेंगे प्रातः 11:00। उर्दू कार्यक्रम नष्ट किया जाएगा सुबह 9:30 पर। आज आप सुनेंगे बिजनौर व श्रावस्ती जिले की हलचल प्रातः 9:15 पर। श्रोताओं के पत्र व मेल पर आधारित इंटरेक्टिव प्रोग्राम आपके मेल व आपके गीत होगा प्रातः 8:45 पर। प्रातः 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पंडित पंकज कुमार बनर्जी का बांसुरी वादन, राग होगा भटियार। विधा कार्यक्रम होगा आपसे थोड़ी ही देर में यानी 7:10 पर। आज का विषय है संस्कृत और संस्कृति। तो श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 400.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

दुर्दा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली। श्रोताओं, आज का विषय है संस्कृत और संस्कृति। भारत विश्व की उन प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसने ज्ञान, आध्यात्म, विज्ञान और मानव मूल्यों की अनमोल धरोहर पूरी दुनिया को दी है। इस धरोहर के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, जबकि संस्कृति हमारे जीवन मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों और आदर्शों का समग्र स्वरूप है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृत भाषा ने भारतीय संस्कृति को शब्दों में अभिव्यक्त किया और संस्कृति ने संस्कृत को जीवंत बनाए रखा। इसलिए कहा जाता है कि यदि संस्कृत भारत की आत्मा की भाषा है तो संस्कृति उसकी पहचान है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक मानी जाती है। संस्कृत शब्द का अर्थ है परिष्कृत, शुद्ध और संस्कारित भाषा। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराण, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, गणित और दर्शन जैसे महान ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसे विश्व के सबसे व्यवस्थित व्याकरणों में से भी गिना जाता है। संस्कृत भाषा का उच्चारण स्पष्ट, व्याकरण सुसंगठित तथा शब्द रचना अत्यंत वैज्ञानिक मानी जाती है। इसी कारण से आधुनिक विज्ञान और कंप्यूटर भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ी है। बात की जाए अगर संस्कृति के अर्थ की, तो संस्कृति शब्द का अर्थ है संस्कारों से परिष्कृत जीवन शैली।

संस्कृति केवल नृत्य, संगीत, वेशभूषा या त्योहारों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य के विचार, व्यवहार, नैतिकता, जीवन दर्शन और सामाजिक मूल्यों का समावेश होती है। भारतीय संस्कृति का मूल संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, सेवा, सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान, प्रकृति की पूजा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं हैं। और कहीं न कहीं संस्कृत और संस्कृति का बड़ा गहरा संबंध है। संस्कृत और संस्कृति का संबंध शरीर और आत्मा जैसा है। संस्कृत भाषा ने भारतीय संस्कृति के ज्ञान को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा है। वेदों के मंत्र, उपनिषदों के विचार, भगवत गीता का कर्मयोग, रामायण की मर्यादा और महाभारत के आदर्श संस्कृत भाषा के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचते आए हैं। यदि संस्कृत भाषा ना होती तो भारतीय संस्कृति का विशाल ज्ञान सागर आज हमारे सामने इस रूप में उपलब्ध ही नहीं होता। इसी प्रकार संस्कृति के बिना संस्कृत केवल एक भाषा बनकर रह जाती, दोनों मिलकर भारतीय सभ्यता की अमोल धरोहर कैसे बनते। विशेषताओं की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में अनेक विशेषताएं हैं। कई विशेषताओं से परिपूर्ण है हमारी भारतीय संस्कृति। विविधता में एकता है, सभी धर्मों का सम्मान है, परिवार व्यवस्था है, संयुक्त परिवार की परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, योग, ध्यान, आध्यात्म का एक बड़ा महत्व है, प्राकृतिक संरक्षण की भी सद्भावना है, अतिथि देवो भव का आदर्श है, नारी सम्मान और मातृशक्ति का गौरव है, त्याग, सेवा और परोपकार की भावना है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति विश्व भर में सम्मान प्राप्त करती है। अगर आधुनिक समय में बात की जाए संस्कृत और संस्कृति के महत्व की तो वो भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आज विज्ञान और तकनीकी के इस युग में भी संस्कृत और संस्कृति का महत्व कम नहीं हुआ है। नई शिक्षा नीति में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनेक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। विदेशों में भी संस्कृत के अध्ययन को और शोध में रुचि ली जा रही है और रुचि और अधिक बढ़ती जा रही है। अगर दूसरी ओर बात की जाए तो भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, ध्यान, भारतीय संगीत और त्योहारों के माध्यम से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है। आज लाखों लोग योग और भारतीय जीवन दर्शन को अपनाकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं और यहाँ भी हैं। वैश्वीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण कुछ लोग अपनी भाषा और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। विदेशी भाषाओं और संस्कृति का प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। यदि हम अपनी मातृभाषा संस्कृत और संस्कृति परंपराओं की उपेक्षा करेंगे तो हमारी पहचान कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। संस्कृत और संस्कृति भारत की अमोल धरोहर है। संस्कृत ने हमें ज्ञान का अथाह भंडार दिया है। और संस्कृति ने हमें मानवता, नैतिकता और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया है। यदि हमें अपने राष्ट्र की गौरवशाली पहचान को सुरक्षित रखना है तो हमें इन दोनों का संरक्षण और संवर्धन करना होगा। नई पीढ़ी जब अपनी भाषा, अपने संस्कार और अपनी संस्कृति पर गर्व करेगी तभी भारत विश्व में ज्ञान, शांति और मानवता का मार्गदर्शक बना रहेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह संस्कृत भाषा का भी सम्मान करे और भारतीय संस्कृति का पालन और सम्मान करे और आने वाली पीढ़ियों तक इस अमूल विरासत को सुरक्षित पहुंचाए। यही सच्ची राष्ट्र सेवा और हमारी संस्कृति की जिम्मेदारी है।

0: यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
3: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का किया शुभारंभ, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। आज से शुरू हो रहा है राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र, कल अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। भारत की अध्यक्षता में आज से लखनऊ में शुरू हो रही है ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने किए हैं व्यापक प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
6: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
6: ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
5: श्री मोदी ने कहा

0: कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाना नहीं है।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें।
0: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है और जन जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है। लखनऊ के गुलजार उपवन में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी हिस्सा लिया। श्री सिंह ने कहा कि यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है।
2: लेकिन चरित्र निर्माण केवल कानून से नहीं होता है, संस्कारों से होता है। और जब संस्कारों की बात आती है तो ब्रह्म कुमारी जी का योगदान संस्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म कुमारी ने दशकों से बिना किसी भेदभाव के समाज में शांति, आत्म जागृति, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का दीप जलाया है।
0: देश भर के लगभग 10,000 से अधिक स्थानों पर कल एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें माय भारत स्वयंसेवक, एनएसएस के वॉलंटियर्स, युवा क्लब, शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन शामिल हुए। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान कल प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कल विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखने तथा स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने संबोधन में सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार सबके सहयोग से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू हो रही है। यह बैठक कल भी जारी रहेगी। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: NSO के प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। वहीं सांख्यिकी ट्रैक का विषय परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी ही रखा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले आंकड़ों, नवाचार, प्रभावी डेटा प्रसार और जन केंद्रित सांख्यिकीय व्यवस्था को

0: बढ़ावा देना है ताकि साक्ष्य आधारित समावेशी और टिकाऊ विकास को मजबूती मिल सके। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए उस भ्रामक वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वायरल वीडियो पुराना है जिसे भ्रामक संदर्भ के साथ साझा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज पवित्र सावन का पहला सोमवार है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: सावन के पहले सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 सीसीटीवी कैमरों के साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: हापुड़, चित्रकूट, अमरोहा, भदोही, बिजनौर और सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। संभल और अमरोहा में सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का किया शुभारंभ। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। आज से शुरू हो रहा है राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र। कल अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। भारत की अध्यक्षता में आज से लखनऊ में शुरू हो रही है ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने किए हैं व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। इसी के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित पंकज कुमार बनर्जी का बांसुरी वादन, राग है भटियार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित पंकज कुमार बनर्जी का बांसुरी वादन। और इसी कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न होता है। कल फिर होगी मुलाकात एक नई आवाज के साथ। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात होंगे।
1: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा

0: कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना

0: 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा जबकि 4:00 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर

0: और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: .4 MHz पर हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्ते बरेली।

श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नमस्ते बरेली कार्यक्रम में। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारिणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहीयनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। दोस्तों, आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और श्रावण मास वो पावन मास है जिस महीने में हम लोग उल्लास और उमंग में रहते हैं, वहीं भक्ति भाव से परिपूर्ण रहते हैं और देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक करते हैं और उसमें हमें प्राप्ति होती है परम आनंद की।

0: आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते बरेली। और नमस्ते बरेली कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने ज्योतिर्विद डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। डॉक्टर श्रीपति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, आज जो है श्रावण मास का पहला सोमवार है और श्रावण मास का जो है आध्यात्मिक बहुत महत्व है हमारे जो हिंदू धर्म शास्त्र है उसमें, तो बताइए सोमवार के बारे में, श्रावण मास और सोमवार का क्या महत्व है?
1: जी, श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार केवल एक तिथि नहीं है बल्कि आत्मा को शिवत्व से जोड़ने का पावन अवसर है। सनातन परंपरा में यह दिन भगवान शिव की आराधना, आत्मचिंतन और अंतर्मन की शुद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि श्रावण में किया गया शिव पूजन मन को स्थिरता, जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और कर्मों को नई दिशा प्रदान करता है। भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा हमें यह संदेश देते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, मन शांत और संतुलित रहना चाहिए। यही कारण है कि श्रावण सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि विचारों की पवित्रता, संयम, सेवा, करुणा और आत्मानुशासन का संकल्प है। शिवलिंग पर अर्पित जल केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता को त्याग कर प्रेम, क्षमा और विनम्रता को अपनाने का प्रतीक है। सच्ची शिव भक्ति मंदिर की चौकट तक सीमित नहीं होती बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे कर्म और हमारे संस्कारों में दिखाई देती है।
0: जी, तो इस बार जो श्रावण मास का आज पहला सोमवार है और इस बार कितने सोमवार पड़ रहे हैं और कौन सा विशेष मुहूर्त और पूजा के लिए सबसे बेहतर है और किस तरीके से जो हमारे शिव भक्त हैं वो भगवान शिव की आराधन पूजन करें?
1: इस बार श्रावण मास केवल कैलेंडर का एक पवित्र महीना नहीं है बल्कि शिव भक्ति, साधना और आध्यात्मिक जागरण का दिव्य पर्व बनकर आया है। इस श्रावण मास में 4 पावन सोमवार श्रद्धालुओं को भगवान शिव की विशेष आराधना का अवसर प्रदान करेंगे। इसके साथ ही श्रावण शिवरात्रि का शुभ संयोग इस पूरे माह की आध्यात्मिक महत्ता को और भी बढ़ा देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह महीना केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि स्वयं को बदलने का अवसर भी है। क्रोध के स्थान पर करुणा, अहंकार के स्थान पर विनम्रता, असत्य के स्थान पर सत्य और अशांति के स्थान पर आत्मिक शांति को अपनाने का संदेश श्रावण का वास्तविक सार है।
0: जी, श्रावण मास में जो बहुत से श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, कुछ लोग रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करते हैं भगवान की आराधना से जुड़े हुए, तो जो भगवान शिव का जो पूजन करें वो, तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
1: जी, श्रावण मास के भगवान शिव की पूजा यह सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है और उन्हें कई चीजों पर उनको ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से मन पवित्रता और निष्काम भाव से भर जाता है और निष्काम भाव से भी पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और पूजा स्थल पर भगवान शिव का ध्यान रखते हुए शिव का पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा से अभिषेक करें, यदि संभव हो तो दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें तथा पुनः स्वच्छ जल भगवान को के ऊपर अर्पित करें। भगवान शिव के बारे में कहा गया कि यह सतत कर्ताणाम भक्ताणाम अशुभम पापम च सहति नाशयति स शिव। शिव वह है जो आप जीवन के कष्ट को, अंधकार को, तिमिर को दूर कर उजाला भरे, सुख संपदा दे, वही शिव है। पूजन के दौरान बिल्व पत्र, धतूरा, आग के पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, सफेद पुष्प और मौसमी फल अर्पित जरूर करें। ध्यान रखें कि बिल्व पत्र खंडित न हो और उसकी चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रहे। धूप और दीप प्रज्वलित कर भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का मंत्र या रुद्राष्टक का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। यदि समय हो तो शिव चालीसा और शिव पुराण का श्रवण या पाठ भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।
0: जी, श्रावण मास।
2: तो डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जय त्रिलोकनाथ शंभू है शिवाय शंकरा। और आज जो है हमारे शहर के नाथ मंदिरों में धूम है। बरेली नाथ नगरी जो है वो पूरी तरह कांवड़ियों से जो गलियां हैं वो एक तरीके से आच्छादित हैं। और इस समय हम आपको लेकर चल रहे हैं शहर के नाथ मंदिरों की ओर। तो बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी और हमारे साथी शीशपाल राजपूत जी। तो शीशपाल जी कैसे हैं आप? हर हर महादेव।
1: हर हर महादेव।
0: तो क्या माहौल है धोपेश्वर नाथ मंदिर पर इस समय?
1: धोपेश्वर नाथ मंदिर में बिल्कुल भक्ति और उल्लास का माहौल है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और आपको बता दें कि अर्धरात्रि से ही यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है
0: जी।
1: कांवरियों के जत्थे जो हैं लगातार आ रहे हैं, डाक कांवर, और उनकी अलग से व्यवस्था कराई गई है। पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, सारे लोग व्यवस्था में मौजूद हैं और बोलबम हर हर महादेव के नारे जो है गुंजायमान हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी भी आपके साथ जुड़ी हुई है लगातार और हम अपने श्रोताओं को अपडेट दे रहे हैं। और नाथ नगरी की तो बात ही अलग है। मैंने आकाशवाणी का एक गीत लिखा था, उसमें भी कहा था कि मैं नाथ नगर अभिषिक्त सदा, मैं शिव डमरू की डमडम हूँ। तो बताइए और कैसा लग रहा है वहाँ पर, क्या दृश्य इस समय है?
1: बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ और जैसा कि आप जानते हैं कि नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है बरेली को, और उसमें से ये धोपेश्वर नाथ बहुत प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में से है। वो नाथ नगरी के 7 मंदिर हैं, उनमें से एक ये मंदिर भी है, बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर लोग की आस्था जो है अलग ही है, बहुत पुराने पुराने और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सारे आस्थावान लोग। और
0: जी
1: आपको बता दें कि रात को 1 बजे से यहाँ से लाइन लगी हुई है और लोग दर्शन कर रहे हैं सारे श्रद्धालु।
0: तो बिल्कुल आप भी इस उल्लासमय माहौल का आनंद लीजिए और हमारे साथ आप जुड़े, आपका धन्यवाद बहुत बहुत।
1: और ऊपर से मौसम भी बहुत साथ दे रहा है, बिल्कुल धूप नहीं है
0: जी, मौसम बहुत अच्छा है और मौसम जो है
1: बारिश हो रही है,
0: बिल्कुल आनंददायक मौसम है,
1: बहुत उल्लास और भक्तिपूर्ण माहौल है यहाँ का
0: जी। शीशपाल जी धन्यवाद आपका।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली। और अब दूसरे नाथ मंदिर यानी कि त्रिवटी नाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी ब्रजेश तिवारी जी। ब्रजेश जी, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं श्रृंगार जी आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूं। तो बताइए, त्रिवटी नाथ मंदिर में इस समय क्या माहौल है, क्या स्थिति है, कैसा लग रहा है वहाँ पर?
1: माहौल तो इतना शानदार है, यहाँ भगवामय हो गया है। सामरियों का जत्थे से जत्था आ रहा है और जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे कि मेरे पीछे लगातार घंटे घड़ियाल और जयघोष, भोलेनाथ के जयघोष लगातार चल रहे हैं। और मौसम भी आज भोलेनाथ की कृपा है कि हमारे जो कांवर भाई है ये लगातार इस मौसम के सहायता से आ रहे हैं। और आपको एक बात बताते चले कि जो लाइनें हैं, जो कतारें हैं, ये अर्धरात्रि लगभग लगभग आधी रात से लग रही हैं और लोग लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं भोलेनाथ का।
0: यानी कि आकाश पर बादल छाए हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है और बादल भी जो है वो देवादिदेव का अभिषेक कर रहे हैं आज।
1: बिल्कुल, एकदम सही शब्दों में आपने इसको बयां किया कि आज बादल भी देवादिदेव महादेव का जो है अभिषेक कर रहे हैं। और बाबा त्रिवटी नाथ की इस अनोखी घटा के बारे में क्या ही कहे, इतने सारे श्रद्धालु, हमने उनसे कुछ से बात करने की भी कोशिश की लेकिन आज ये प्रांगण सजा सज भरा हुआ है। प्रशासन एकदम मुस्तैद है, यहाँ सिविल डिफेंस, पुलिस और हर तरीके के जवान मुस्तैद है। कतारें अलग से बनाई गई है और डांस टावर जो हमारे भाई बंधु लेकर आ रहे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है कि वो जो है बिना कतारों के जलाभिषेक कर सके। और बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत दिव्य माहौल है, आध्यात्मिक माहौल है, लोग इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है इस माहौल में।
0: जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं को अपडेट दिया, तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर कार्यक्रम नमस्ते बरेली, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं पुलिस अधीक्षक यातायात अकमल खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्ते,

0: ये बताइए, कांवर यात्रा है आज और श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, तो आपके विभाग द्वारा जो है किस तरह का रूट डायवर्जन आज किया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए?
1: सबसे पहले सभी श्रोताओं को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी शुभकामनाएं।
1: जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पहला सोमवार है और इससे सभी कांवड़ यात्री सुरक्षित अपनी कांवड़ यात्रा को जा सकें, इसके लिए जनपदीय पुलिस बरेली
0: जी
1: द्वारा विभिन्न प्रकार के बंदोबस्त किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से ये है कि चूंकि आप सभी जानते हैं कि शहर में सारनाथ मंदिर है और विभिन्न श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से जो है वो जलाभिषेक के लिए जो है वो इन सारनाथ मंदिरों में आएंगे, तो
0: जी
1: ऐसे में जो है उनके सुरक्षा के दृष्टिगत जो है शहर के जितने भी मार्ग हैं जो कि शहर को कनेक्ट करते हैं उन सभी
0: जी
1: मार्गों पर जो है बड़े वाहनों का जो है प्रवेश निषेध रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
0: जी
1: इनमें अगर आप देखें तो इन्वर्टेड सिराहा से लेकर के आपका नवदिया झादा, वहां से और आगे बढ़े तो लालपुर गांव कट, वहां से और आगे बढ़े तो विले धाम, विले धाम से फिर बिलवा धाम हो, बिलवा धाम से फिर उसके बाद झुमका तिराहा, इन सारी
0: जी
1: जगहों पर जो है जो बड़े वाहनों का प्रवेश है वो बंद किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति ना होने पाए। जो मुख्य मार्ग है जो बरेली बदायूं मार्ग है उस पे जो है लगातार कांवड़ यात्रियों का जो है वो आवागमन चल रहा है। इसके
0: जी
1: दृष्टिगत जनपद बदायूं से भी वार्ता करके उस मार्ग पर भी किसी प्रकार के बड़े वाहन को के प्रवेश को रोका गया है।
0: जी
1: छोटे वाहन, दो पहिया और चार पहिया वाहन इस मार्ग पर चल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जनपद भर बदायूं मार्ग पर जो है हमने जो है एक लेन पूरी तरीके से डेडिकेटेड की हुई है कांवड़ लेन के रूप में, जिसमें केवल और केवल कांवड़ यात्री चल सकेंगे, और दूसरी लेन को जो है हमने आम जन के लिए खोल रखा है। आम जन में भी जो केवल दो पहिया और चार पहिया लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनको हमने रखा हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ व्यवस्था की
0: जी
1: गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या जो है वो हमारे कांवड़ यात्रियों को ना आने पाए।
0: जी एसपी ट्रैफिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो शहर के नागरिक हैं और जो रोज निकलते हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी दिनचर्या रखें, कैसे निकलें ऐसे में, और किस तरह का बर्ताव क्या रहे?
1: देखिए, कई जगहों पर जो है वो जो कट्स थे वो बंद कराए गए हैं ताकि जो कांवड़ यात्री हैं उनका जो है इधर दूसरे लेन में जो है वो मिंगल ना करने पाए, और ये
0: जी
1: केवल सुरक्षा रखा गया और आपकी सुरक्षा के दृष्टिगत भी रखा गया है।
0: जी
1: तो कृपया जो कट्स बंद कराए गए हैं उन कट्स के बंद कराए जाने को उसका आदर करें, सम्मान करें
0: जी
1: ताकि हम आपको बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दे पाए।
0: जी बिल्कुल, हम सबके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन द्वारा, उस सबका हमको अनुपालन करना चाहिए। और एसपी ट्रैफिक अकमल खान जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: जी हाँ, आप यातायात के नियमों का पालन कीजिए और जो व्यवस्था प्रशासन द्वारा बनाई गई है आपके लिए उसका विशेष ध्यान रखिए। तो साथियों, विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है और आप जानते हैं कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो इसी विषय पर जानकारी दे रही हैं आपके लिए डॉक्टर स्वप्निल। तो आइए सुन लेते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वप्निल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के इस अवसर पर मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि माँ का दूध एक नवजात शिशु के लिए सबसे बेहतरीन, सुरक्षित और संपूर्ण आहार है, खासकर डिलीवरी के बाद जो पीला और

काढ़ा दूध निकलता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। बहुत से लोग इसे पुराना या खराब दूध समझकर फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह बच्चे के लिए अमृत के समान है। ये बच्चे को बीमारियों से बचने की ताकत देता है, इसलिए इस दूध को बच्चे को ज़रूर पिलाएं और जन्म के पहले 1 घंटे के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान शुरू कर दें और पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही दें, ना पानी, ना शहद, ना घुटी और ना ही कोई अन्य दूसरा दूध या खाना। कई लोग गर्मी में यह सोचकर कि बच्चे को प्यास लगी होगी पानी दे देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि माँ के दूध में ही बच्चे के लिए ज़रूरी पानी होता है। 6 महीने के बाद घर का ताज़ा और पौष्टिक खाना शुरू करें, लेकिन 2 साल तक स्तनपान ज़रूर कराएं। अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की। पहली गलतफहमी, मेरा बच्चा बार बार रोता है, मतलब मेरा दूध कम बन रहा है। ये ज़रूरी नहीं है, बच्चा कई वजह से रोता है और याद रखिए जितनी बार बच्चा माँ का दूध पिएगा उतना ही ज़्यादा दूध बनेगा। दूसरी गलतफहमी, साइड में लेटकर या करवट लेकर स्तनपान कराना ठीक नहीं होता। पर ऐसा नहीं है, साइड में लेटकर या करवट लेकर स्तनपान कराना पूरी तरह सुरक्षित है। इस पोजीशन से माँ को आराम मिलता है और बच्चे को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। तीसरी गलतफहमी, अगर माँ को सर्दी, खांसी या हल्का बुखार हो तो स्तनपान बंद कर देना चाहिए, जबकि अक्सर ऐसी आम बीमारियों में स्तनपान जारी रखना चाहिए। अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। चौथी गलतफहमी, डिब्बे का दूध माँ के दूध जितना ही अच्छा होता है। कुछ खास मेडिकल वजह से कभी कभी डिब्बे का दूध देना पड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं होता है। स्तनपान से सिर्फ बच्चा ही नहीं, माँ भी स्वस्थ रहती है। इससे डिलीवरी के बाद गर्भाशय को अपनी पहली स्थिति में लौटने में मदद मिलती है।

तो श्रोताओं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यातायात के नियमों का पालन करते रहिए और आनंद लेते रहिए मौसम का, क्योंकि सावन का मौसम जो है वास्तव में अलग है। एक और भक्ति की धूम है, एक और त्योहारों की धूम है। तो आज आप सब भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे होंगे, अभिषेक और पूजन कर रहे होंगे। तो देवाधिदेव महादेव आप सभी का कल्याण करें और आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो नमस्ते बरेली कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए सुनिए लोकरंग कार्यक्रम। कार्यक्रम लोकरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लोकरंग में हम आपको सुनवाते हैं लोकगीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: और का शंकर भगवान जिस समय कृष्ण भगवान को जन्म है गो द्वापुर के अंदर, तो दर्शन के लिए पहुंच जाते का गोकुल में, और क्या काम कर रहे हैं।
1: ओरे भागम मर मृग छाला गल में।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 9 बजे हैं। आइए आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: सई परांजपे की उजाले, उनकी यादों के 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे विविध भारती पर सुनिए।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक, और वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: is coming.
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक और वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

गोलमाल थ्री से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शान अनुष्का मनचंदा की आवाजों में, कुमार ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म से ही गीत अभी आप सुन रहे थे फरहान अख्तर, अभय देओल, ऋतिक रोशन और साथियों की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते हैं इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दलेर मेहंदी चित्रा और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।
2: लीजिए प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
3: आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
4: सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है, जैसे मस्तानी ये प्रातः है कि सुख की बेला है।
5: दोस्तों, मित्रों और बहनों भाइयों, जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वालों को रविंद्र मिश्रा का सुप्रेम नमस्कार। आज फिर जान है तो जहान है कार्यक्रम में उपस्थित हैं फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली की डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, MBBS MS वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर कनुप्रिया, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फोकस नेत्रालय आई हॉस्पिटल बरेली से आज आपसे फिर जुड़ी हूँ। हम लोगों ने बहुत बातें करी हैं मोतियाबिंद के बारे में, मोतियाबिंद में कौन सा लेंस पड़ना चाहिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए, किन लोगों को ज्यादा मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे कराना चाहिए। लेकिन मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दिन हमें क्या क्या करना है और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मोतियाबिंद वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, मोतियाबिंद जिस दिन हम लोगों ने हमने निर्धारित कर लिया है कि आज हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो उस दिन हम लोग जो हैं सुबह सर से नहा कर जाएंगे, क्योंकि मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन है उसमें सर से नहाने के बाद का थोड़ा सा परहेज है। पहले जमाने में चीरा वाला ऑपरेशन होता था, चीरे वाले ऑपरेशन में पूरा एक महीने का परहेज हुआ करता था, लेकिन अब मोतियाबिंद का जो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है उसमें मात्र हफ्ते से 10 दिन का परहेज होता है। लेकिन फिर भी हफ्ते भर सर से ना नहाना कभी कभी गर्मियों में मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पहले से ही जिस दिन हमारा ऑपरेशन हो रहा है उस दिन सुबह सुबह में ही हम लोग सर से नहा लेंगे, ताकि एक हफ्ते तक अगर हमारा सर नहीं धुलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। और साथ ही साथ जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग अपनी जो लोग शेव करते हैं तो वो अपनी शेव भी कर लेंगे, ताकि एक हफ्ते के लिए या 3-4 दिनों के लिए आंख में या किसी तरीके से कोई केमिकल ना जाए, कोई साबुन ना जाए या फिर कोई चीज और ना जाए। तो इसके लिए हम आंखों में किसी भी केमिकल को दूर रखने के लिए हम लोग सुबह शेव भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कि सब मुझसे पूछते हैं वो ये है कि बीपी, शुगर, एस्थमा, हार्ट या इन सब की या गठिया या किसी भी चीज की, किसी भी मर्ज की आपकी कोई भी दवाई चल रही है तो आप वो उसी नियम से लेंगे। मतलब अगर आप सुबह खाते हैं तो सुबह लेंगे, दोपहर में खाते हैं तो अगर आपका ऑपरेशन है तो दोपहर में भी आप अपना जो बैग में है बैग में वो दवाई लेकर जाएंगे और उसी नियम से दवाई को लेंगे।

0: और जो परहेज, जो खान पीन आपका ऑपरेशन से पहले चल रहा था, वही खान पीन, वही सब बातें आपकी ऑपरेशन के बाद चलेंगी। दूरबीन वाले मोतियाबिंद में कोई परहेज नहीं है, आपका जिस तरीके से जो भी रूटीन चल रहा था वो उसी तरीके से चलता रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, ये जो बात ऑपरेशन से पहले की हुई है, लेकिन अब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या हमारे श्रोता ध्यान रखेंगे, ये बात हमारे श्रोताओं जरूर बताइए।
0: जब आपका ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का, ऑपरेशन मात्र 10 से 15 मिनट की एक सर्जरी होती है। कहने को तो ये बहुत छोटी सर्जरी होती है, उसी दिन जो है पट्टी नहीं लगती है, उसी दिन आपको क्या कहते हैं घर भेज दिया जाता है, और उसी समय आपको क्या कहते हैं वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, और रात को रुकने की आपको जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऑपरेशन के बाद हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, ताकि हमारी आंख की रोशनी जो बरकरार है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। ठीक है, ऑपरेशन के बाद जो हमें परहेज रखना है वो हमें ये रखना है कि हल्का फुल्का हो सकता है आंख में से पानी आए या लाली हो आंख में, तो जो पानी आंख में आता है तो वो हमें साफ रुमाल या साफ कपड़ा रखना है, और हमको अपनी आंख के नीचे जब वो पानी बहता है तो उसे पोंछ लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कोई दुपट्टा है या कोई पल्लू है या फिर कोई अंगोछा है, उससे हम अपने पसीने को पोंछते हैं, उसी से हम अपने नाक को पोंछते हैं, उसको हम आंख में इस्तेमाल ना करें। और अगर हमें आंख पोंछने की किसी समय ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हल्का फुल्का ऑपरेशन के बाद पानी आता ही है, तो उस पानी को हम साफ कपड़े से पोंछें। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि आप एक साफ रुमाल अपने हाथ में रखें और उस रुमाल को रोज़ बदलें, ताकि हमारी आँख की साफ सफाई बनी रहे। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम गर्दन से नीचे नहाएं। हमें सर से मग्गे से पानी डालना नहीं है, मात्र एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमें नहीं डालना है। और हम जो है गर्दन से नीचे आप दो बारी भी दिन में नहा सकते हैं, लेकिन चेहरे को, तो इसके लिए आप जो हैं गर्दन से नीचे नहाएं और चेहरे को साफ रुमाल या सॉफ्ट तौलिए को निचोड़कर, पानी से निचोड़कर अपने चेहरे को और सर को पोंछ सकते हैं, है ना। तो ये बात है जब हम दूरबीन वाला ऑपरेशन कराते हैं। लेकिन चीरे वाला ऑपरेशन में तो बिल्कुल भी आप सर के ऊपर, सर से नहीं नहा सकते हैं महीने भर के लिए।
1: डॉक्टर साहब, महिलाओं का तो अक्सर समय रसोई में ही कटता है, भोजन बनाने में, वहाँ का धुआं वगैरह।
0: बिल्कुल आपने सही बात बताई कि क्या कहते हैं महिलाओं को खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दूरबीन वाले ऑपरेशन में महिलाएं जो किचन में जा रही हैं वो किचन का भी काम कर सकती हैं। सिर्फ एक काम नहीं करना है, वो है छौके मारने वाला, जिससे किसी तरीके का धुआं आंख में ना जाए। उसके अलावा सब्जी काटना है, रोटी सेकना है, चाय बनाना है, और छोटे मोटे जितने भी किचन के काम हैं आप सारे अपने काम कर सकती हैं। दूरबीन वाले ऑपरेशन में इन तरीके का कोई परेश नहीं है।
1: आपकी बातों से एक बात याद आती है कि जिनके जो महिलाएं हैं उनकी बहुएं हैं, तो बहुओं से काम करा लें इन दिनों पे, बहुओं को ध्यान रखना चाहिए सासू माँ का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, घर परिवार में हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जिस समय जिसको जरूरत हो तो उसकी अच्छे से सेवा हो पाए।
1: सुना आपने, डॉक्टर साहब यही कह रही हैं कि परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, सुख दुख में हाथ बटाना चाहिए, है ना जी डॉक्टर साहब।
0: उसके बाद जो आप दवाई खा रहे हैं वो आप दवाई खा सकते हैं, उसी नियम से आप दवाई को खाना है। जो अगर आपको शुगर है, बीपी है, तो आपके जो परहेज चल रहे हैं उसका भी आपको उसी तरीके से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद के बाद आँख में रोशनी अच्छी आ गई है, आप बहुत खुश हैं, तो आप मिठाई बांट तो रहे हैं लेकिन साथ में खा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर शुगर बढ़ती है या किसी वजह से बीपी बढ़ता है, तो वो आँख को नुकसानदायक हो सकता है और रोशनी हल्की पड़ सकती है।
1: डॉक्टर साहब, ये भी तो होता होगा कि आप दवाइयाँ देते होंगे खाने के लिए, तो वो दूसरी दवाई बीपी गोली कितनी देर बाद खाएं, ये भी तो जरूरी होगा।
0: जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद की दवाइयां हैं वो बिल्कुल बेसिक दवाइयां हैं। उन दवाइयों से बीपी, शुगर या किसी भी तरीके से, सपोज ऑपरेशन के बाद आपको बुखार हो जाता है
1: जी,
0: है ना, तो आप अपने, या खांसी हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर से खांसी की भी दवाई ले सकते हैं, बीपी की भी दवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनका कोई रिएक्शन उन दवाइयों की वजह से नहीं है। तो अगर बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप बिल्कुल उसके लिए दवाई ले लें और अपनी दवाई कर सकते हैं। चौथी चीज, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि काला चश्मा हर समय लगा के रखना है। ये जो काला चश्मा हम लोग देते हैं, ये एक अलग तरीके का चश्मा होता है। ये नॉर्मल जो हमें गॉगल्स हमें बाजार में मिलते हैं उस तरीके का नहीं होता है, क्योंकि ये चश्मा जो है ये चारों तरफ से बंद होता है, और जो बंद चश्मा है वो हमें बचाता है कि किसी भी प्रकार का कोई धुआं,

0: कोई धूल, कोई मिट्टी या हवा, तेज हवा, गंदी हवा हमारी आंख में ना जाए, इस बात से हमें बचाता है। तो काला चश्मा हमको हर समय लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सोते समय हमारे को क्या कहते हैं उतारना है।
1: देखो जी मेरी आंखों में,
2: इधर आइए देखो तो जरा आपकी आंखों में क्या है।
1: मुझे तो साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, देखो जरा मेरी आंख में क्या हुआ है।
2: अरे लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है।
1: मोतियाबिंद? अरे वाह
2: अरे वाह, इसमें हंसने की क्या बात है,
1: फोकस नेत्रालय है ना,
2: तभी तो आपको हंसी आ रही है।
3: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
1: डॉक्टर साहिबा, जो काला चश्मा आपने बताया वो गोरे चेहरे पर तो बहुत ज्यादा फपता है, तो लोग उतारते ही नहीं होंगे, इसलिए कहेंगे आप जब आईने में देखते होंगे तो उनका चेहरा बहुत खिल उठता होगा।
0: बिल्कुल, आजकल तो इतने स्मार्ट गॉगल्स आने लगे हैं कि कई बार बाबूजी ऑपरेशन के बाद आते हैं तो ऐसा लगता है कोई हीरो ही अंदर चला आ रहा हो।
4: जब खान पान कैसे रहना चाहिए?
0: खान पान के लिए क्या कहते हैं, हमारी तरफ से कोई अलग से परहेज नहीं है। सभी लोग यही पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद हम क्या खाएं, क्या ऐसी कड़क चीज हम खाया लें उससे कहीं हमारा लेंस तो नहीं हिल जाएगा, या हम कसकस के चबाए ना। तो मैं उन सभी भाई बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि दूरबीन वाला जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, उसमें इतने अच्छे लेंसेज हैं कि अगर आप बोलते हैं या कड़क चीज खाते हैं या कोई भी चीज आप खान पीन के करने से, आपके लेंस जो है वो नहीं हटता है, नहीं हिलता है। तो आप अपना जो नियम ऑपरेशन से पहले चल रहा था, खाने का जो रूटीन आपको पहले चल रहा था, उसी नियम को ऑपरेशन के बाद में भी रख सकते हैं, ताकि क्या कहते हैं कोई भी किसी भी शुगर का, बीपी का फ्लक्चुएशन हमारे शरीर में ना हो, और आप हर चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब चीज खा सकते हैं, किसी भी चीज का कोई परहेज नहीं है। रोटी अच्छे से चबा के खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, आपको दलिया या किसी और चीज को खाने की ऐसी जरूरत स्पेशली नहीं है। आपका मन है तो खा सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई परहेज नहीं है।
4: यानी कहीं अगर मेहमानी में जाएं तो जा सकते हैं आराम से, वहां पे खा भी सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहमानी में जाएं आप और खूब खाएं, और क्या कहते हैं बस इस बात का ध्यान रखें कि शुगर नहीं बढ़े,
4: मतलब मटर पनीर खा सकते हैं आराम से।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं।
1: डॉक्टर कनुप्रिया जी, हमारे श्रोताओं के मन में जिज्ञासा होगी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों को कैसे धोएं, और कहीं धोने पर आंखों का लेंस हट तो नहीं जाएगा, रोशनी खराब तो नहीं हो जाएगी, बहुत सी बातें मन में आती होंगी, ये जिज्ञासा होगी, तो ये जिज्ञासा आप हमारे श्रोताओं की दूर करें।
0: तो मैं सभी श्रोताओं को ये फिर से कहूंगी कि दूरबीन वाले ऑपरेशन में फोल्डेबल लेंस पड़ता है, बिना चीरे के एक छोटे से छेद द्वारा लेंस को डाला जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे को आंख धुलना का तो परहेज रहता है कि हम आंख को पानी नहीं जाना चाहिए, तो आपको आंख नहीं धोनी है। चेहरे को साफ करने के लिए आप उबला हुआ या पका हुआ पानी को तौलिए में निचोड़कर आप अपने चेहरे को पोंछ सकते हैं। आंखों को साफ करने के लिए आजकल आई वाइप्स आने लगे हैं, ये वेट वाइप्स की तरीके से नहीं है, क्योंकि वेट वाइप में काफी खुशबू और काफी केमिकल होते हैं, तो वो हमारी आंख को नुकसान दे सकते हैं, लेकिन आंखों को साफ करने के लिए एक अलग से वाइप या कपड़ा आता है, आप उसको भी ले सकते हैं अस्पताल से, और उससे अपनी आंख को दिन में एक बार पोंछ सकते हैं, क्योंकि जो दवाई होती है कई बार हमारी आंखों के चारों तरफ जमने लगती है, और जब ये जमने लगती है तो उससे थोड़ी सी गंदगी आने लगती है। तो ये जमे ना, इसके लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हम आंख की सफाई का भी ध्यान रखें। कुछ कुछ लोग आते हैं अस्पताल में, जब मुझे 15 दिन के बाद मिलते हैं, तो उन्होंने 15 दिन से आंख की सफाई नहीं करी है, और उनके आंखों के चारों तरफ दवाई जमती ही चली जा रही है। तो उन सभी भाई बहनों को मैं यही समझाती हूँ कि आंख में कोई चीज जाए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख की सफाई भी ना करें। तो आंख की सफाई करनी बहुत जरूरी है।

0: और साफ कपड़े से आप आंख की सफाई दिन में एक बार ही करना है।
1: ये तो आपने बात की कि आंखों कैसे साफ रखें, लेकिन आजकल फैशन चल रहा है कि लोग दाढ़ी रखते हैं, शादी ब्याह में देखते दूल्हे भी रखते हैं, लेकिन जो दाढ़ी बनाना चाहते हैं, कहीं जाना ऑफिस जाना है, एक नियम भी होता है कहीं कि भाई दाढ़ी बना के आना, सेब बना के आना, तो क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद दाढ़ी बना सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेशन वाले दिन अपना सर धोना और दाढ़ी बनाने का कार्यक्रम आप कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम 2-3-4 दिन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी आप अगर चाहें तो हर समय आप शेव कर सकते हैं, आप अपनी दाढ़ी बना सकते हैं। आंखों को बंद, मतलब एक आंख अपनी बंद कर लीजिए और अपना, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से या थोड़ा सा ध्यान से करिएगा ताकि आंख में एकदम छींटे या पानी या साबुन ना जाए। जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो हम आंखों में मेकअप या लेडीज जो है आईब्रो बनाने की चिंता
1: है। जैसे कि शादी में जाते हैं तो सब लोग मेकअप तो करते हैं, महिलाएं भी अक्सर करती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो भी, उनकी मान लो आंख बनी है, दोनों की बात बताइए कि मेकअप कर सकते हैं, आंखों में काजल लगा सकते हैं, ये जरूर या दवाई पड़ सकती है जी?
0: हाँ, तो आंख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आप किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ आपको एक महीने के लिए नहीं लगानी है, जैसे कि आईलाइनर, काजल, मस्कारा, कुमकुम, चंदन, सुरमा, ये सब चीज़ें आँख में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है आँख के अंदर, है ना। तो आपको अगर कुछ भी करना है, लेकिन हाँ ये है, कुछ कुछ फीमेल्स आती हैं, वो महिलाएं कहती हैं कि हमें आईब्रो बनवानी है, थ्रेडिंग करवानी है, हाँ तो आप थ्रेडिंग ज़रूर करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आँख में कोई केमिकल ना जाए, लेकिन आँख में मेकअप बिल्कुल नहीं करना है, आँख में किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं जाएगा।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि मेकअप के बारे में बताई, तो डॉक्टर साहब क्या भारी वजन उठा सकते हैं महिलाओं को? कभी रसोई में आटे का पीपा उठाना पड़ता है, मसाला उठाना पड़ता है ऊंचा करके कैसे भी, तो क्या वो वजन उठा सकती हैं?
0: झुक कर उठाने में कोई परहेजी नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हम सामान उठा रहे हैं वो 5 किलो से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये परहेज मात्र 1 हफ्ते के लिए है, 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। भारी वजन के लिए भी मैं यही कहूंगी कि भारी वजन का ध्यान रखें, आपको अगर जैसे कपड़े की बाल्टी होती है वो उठाना है, या पानी की बाल्टी है वो उठाना है, पीपा उठाना है, तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन वो बहुत, मतलब 5 किलो से ज़्यादा उसका वजन ना हो। झुक कर काम करना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, और क्या कहते हैं बाकी, और पोछा लगाना है, या कोई भी ऐसे काम है, तो आप ये सारे अपने काम कर सकते हैं, इनमें कोई परहेजी नहीं है।
1: सही कहा आपने, तो परिवार में अगर बेटी हैं, बहुएं हैं, वो काम कर सकते हैं, अपने आप स्वयं ना काम करें। और खासतौर पे मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा श्रोताओं से कि जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, अपनी मम्मी को काम ना करने दें उन दिनों, बिल्कुल, और उनकी सेवा करें।
0: बिल्कुल, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, उसी से हमारा परिवार जुड़ा रहता है, और उसी से ही हमारे परिवार की में खुशियां रहती हैं।
1: अब जैसे पूजा अर्चना करते हैं, है ना, नमाज भी पढ़ते हैं लोग, तो क्या झुककर नमाज पढ़ सकते हैं, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: हाँ, मैं इसके लिए, फिर से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं सबसे यही कहूंगी कि क्या कहते हैं, जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो आप दीपक जरूर जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगरबत्ती का प्रयोग थोड़ा सा कम करें ताकि धुआं जो है वो हमारी आंख में ना जाए, या फिर अगरबत्ती जलानी भी है तो आप बिल्कुल अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन पूजा के आखिर में फिर अगरबत्ती जला लीजिए ताकि उसका धुआं हमारी आंख में ना हो और आप जलाकर मंदिर से बाहर निकल जाए। इसी तरीके से जब आप नमाज कर रहे हैं तो समस्या आती है झुकने की और वजू की, है ना, तो नमाज करते समय आप झुक तो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, वजू करते समय आपके पानी जो है वो आंख में नहीं जाना चाहिए, आप सूखा कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब पहले तो टीवी होते थे, बहुत दूर होते थे, और लोग के बड़े घर भी बड़े हुआ करते थे, तो लोग टीवी बहुत दूर से देखते, अब तो LED का जमाना आ गया है, तो क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन का व्यक्ति या महिला टीवी देख सकती है क्या?
0: हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया रविंदर जी, इस बात के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कई लोग जो हैं वो आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और हमने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो मैं इन सब श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन जब हमने किया है तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो हैं आपको अंधेरे कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है, हमने आपकी आंख बहुत ही अच्छी बना दी है और आंख को और बढ़िया बेहतर कर दिया है ताकि वो और काम करे
1: जी।
0: हमने आंख इसलिए नहीं बनाई है कि आप काम ना करें या देखें ना, हमने

0: आंख इसलिए बनवाई है आपकी ताकि आप जो है खूब दूर तक देखें और आंख अपने पूरी सीमा तक काम कर पाए। तो आप जो हैं वो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है अंधेरे कमरे में रहने की। आप टीवी देखिए, आप मोबाइल देखिए, आप सब काम करिए, है ना, लेकिन आपको कोई परहेज नहीं है, आप सब कर सकते हैं जब तक
1: अच्छा,
0: आपको आराम है। अगर आपको लग रहा है कि टीवी की लाइट, क्योंकि आजकल एलईडी, जैसे आपने कहा, एलईडी टीवी आने लगे, एचडी टीवी आने लगे हैं,
1: जी
0: ये एलईडी और एचडी टीवी के कई बारी रंग बहुत तेज होते हैं तो हमारी आंख में छुपते हैं, है ना, क्योंकि नई नई आंख बनी है, आंख को आदत नहीं है देखने की, है ना, आंख देख तो रही है लेकिन उसको आदत खत्म हो जाती है जब मोतियाबिंद होता है देखने की, तो कभी कभी लाइट चुभती है। अगर आपको लाइट चुभ रही है तो ना देखें, लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप आंखों का पूरा काम लें।
1: डॉक्टर कनुप्रिया जी, पहले एक जमाना था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे तो आंखों में कोई असर नहीं हुआ करता था। इस बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे श्रोताओं को, कितना अच्छा जमाना था ब्लैक एंड व्हाइट देखने में।
0: बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट का मजा ही कुछ और था। उसमें जो खूबसूरती थी वो कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट की खूबसूरती
1: जब
0: रंगों से फीकी पड़ जाती है।
1: कभी पुरानी फिल्में आ जाती हैं तो ब्लैक एंड
0: जी,
1: व्हाइट होती हैं, बहुत अच्छी लगती
0: बहुत ही अच्छी
1: हैं।
0: लगती है।
1: रक्षा, अंत में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं आप श्रोताओं से सबसे ये कहना चाहूंगी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन कराएं। ये दूरबीन वाला ऑपरेशन जो है, इसमें चीरा नहीं लग रहा है, टाका नहीं लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लग रहा है, आप उसी दिन अपने घर चले जा रहे हैं। इसमें एक एक दो दो महीने के जो पहले परहेज होते थे वो कुछ परहेज नहीं है। आप अपना 90% काम दूसरे दिन से कर सकते हैं, इसलिए आप अपने तीसरे दिन से आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, टहल सकते हैं और घर के भी सारे काम कर सकते हैं, खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं है। तो इसलिए दूरबीन वाला ऑपरेशन जो है वो बहुत बेहतर है चीरे वाले ऑपरेशन से। दूरबीन वाला ऑपरेशन कराएं, अपनी रोशनी को अच्छे से वापस पाएं और खूब अपना जिंदगी को स्वस्थ रखें।
1: फोकस नेत्रालय में जो सुविधाएं हैं वो हमारे श्रोताओं को कुछ बता दीजिए खास खास।
0: फोकस नेत्रालय में मोतियाबिंद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अपने रोहिलखंड मंडल में पहली ऐसी मशीन है जो कि आँख की बनावट की जांच करती है। हमारे पास हर तरीके के लेंस हैं। लेंस की शुरुआत आप जो है वो कम सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि हमें कौन सा लेंस पढ़वाएं, कि हम सस्ता वाला पढ़वाएं, हम महंगा वाला पढ़वाएं। तो मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि लेंस सस्ता हो या महंगा हो, लेंस महंगे लेंस में ज्यादा रोशनी नहीं होती, रोशनी सभी लेंस में बराबर होती है, लेकिन कौन सी आंख में कौन सा लेंस पढ़ना है, उचित लेंस क्या है, ये जानना जरूरी रहता है। अगर हम आंख में उचित लेंस डालेंगे तब रोशनी पूरी बनकर आएगी, बजाय कि महंगे लेंस डालने से ज्यादा रोशनी नहीं आएगी। ये नहीं होता है कि आप ज्यादा महंगा लेंस डलवा लेंगे तो आपकी आंख में ज्यादा रोशनी आएगी। तो इसलिए मैं ये कहूंगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोहिलखंड मंडल में एक ही इकलौती मशीन है, इस मशीन से पहले आंख की जांच कराएं। उस जांच में इस बात को समझें कि आपकी आंख में कौन सा लेंस उचित है। कई कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, आप जो सा डाल दीजिए, आपको जो सा भी लेंस डालना है। तो मैं कहूंगी क्यों ना समझें, आप समझिए पहले इस बात को। आप बाजार जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि आप टमाटर भी खरीदेंगे तो आप देखेंगे ना कि कोई ऐसा तो टमाटर हमारे थैले में नहीं आ गया जो सड़ तो नहीं गया। या आप कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कि कपड़े की क्वालिटी किस तरीके से है, छूकर देखते हैं कपड़ा। तो अपना लेंस भी आप खुद चुनेंगे, अपनी रोशनी भी आप आंख में खुद चुनिए। आप आइए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट कराइए, आप जानिए कि आपकी आंख के लिए क्या उचित है, और उसके बाद आप अपना लेंस और अपनी रोशनी खुद चुनिए। तो अपने अस्पताल में इस तरीके की मशीन है, ये आप जो हैं क्या कहते हैं जरूर टेस्ट कराएं, इस मशीन से अपने आंख के लिए उचित लेंस के बारे में समझें।
1: देखो जी मेरी आंखों में,
2: इधर आइए देखो तो जरा आपकी आंखों में क्या है।
1: मुझे तो साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, और ये तुम्हारा सुंदर मुखड़ा है ना, ये भी नहीं दिखाई देता है। देखो जरा मेरी आंख में क्या हुआ है।
2: अरे लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है।
1: मोतियाबिंद? अरे वाह,
2: अरे वाह, इसमें हंसने की क्या बात है।
1: फोकस नेत्रालय है ना,
2: तभी तो आपको हंसी आ रही है।
3: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा।

0: हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
1: डॉक्टर साहब, फोकस नेत्रालय सभी लोग जानते हैं और परिचित भी हैं, लेकिन कुछ जानना चाहेंगे हमारे श्रोता कि आयुष्मान है आपके यहाँ और क्या क्या सुविधा के अंतर्गत इलाज किया जाता है आंखों का।
2: फोकस में कैशलेस सर्विसेज हैं और इन कैशलेस सर्विसेज में आयुष्मान आता है, CAPF आता है, CGHS आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली स्कीम है ये भी आती है, और इसके अलावा TPA में जितने भी स्टार हेल्थ पॉलिसी है या क्या कहते हैं पैरामाउंट है, HDFC अर्गो है, मतलब ICICI लॉम्बार्ड है, मतलब जितने भी हेल्थ कार्ड होते हैं आपके ये सब ही वैलिड हैं, तो आप कैशलेस सर्जरी भी अपनी करा सकते हैं।
0: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली की तरफ से CARI बरेली में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, तो हमने भी फायदा उठाया और पहुंच गए माइक लेकर के, और हमने फिर डॉक्टर साहब से बातचीत की और जिन्होंने फायदा उठाया उनसे भी बातचीत की। आइए सुने। मैम, आपका नाम?
3: डॉक्टर अंशुला कालरा, डेंटल सर्जन
0: जी। आज ये CARI में जो कैंप लगा है, इसका उद्देश्य क्या था?
3: इस कैंप का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को हम जागरूक कर पाए कि दांतों से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत लापरवाही ना करें और जागरूक रहें अपने ट्रीटमेंट के लिए।
0: कितने लोग आए थे यहाँ दांत दिखाने के लिए?
3: 30-35 लोगों ने चेकअप कराया।
0: उनकी दांतों में आपने क्या पाया, कुछ बीमारी थी या स्वस्थ थे कैसे?
3: ज्यादातर लोगों में पायरिया की परेशानी मैंने देखी यहाँ पे, अदरवाइज डेंटल डीके भी था और कुछ लोगों में दांतों में दर्द था, मसूड़ों से खून आना या ब्रश करते हुए ब्लीडिंग होना।
0: ब्रश कैसे करना चाहिए ये हमारे श्रोताओं बता दीजिए।
3: ब्रश करने का तरीका होता है एक पर्टिकुलर, आगे के दांतों में कैसे करना है, पीछे कैसे करना है। नॉर्मली हम ब्रश को सीधा पकड़ के, हॉरिजॉन्टली पकड़ के बस स्क्रब कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जो मसूड़ों के पास वाला दांतों का इनेमल है वो खत्म हो जाता है, और इनेमल एक ऐसी चीज है जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसको इनेमल बोलते हैं। एक बार अगर इनेमल चला गया तो हम उसको दोबारा रीजनरेट नहीं होता, वापस नहीं आता, तो लोगों को सेंसिटिविटी होने लगती है। तो सबसे ज़्यादा हमारा पर्पज़ यह है कि सही तरीके से ब्रश करें, आगे के दांतों में अप एंड डाउन एंड पीछे सर्कुलर मूवमेंट देके ब्रश करना चाहिए ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। हाँ, चमक भी रहेगी, प्लस ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है क्योंकि उसके नीचे वाली लेयर जो डेंटिन होती है वो अगर एक्सपोज हो जाए तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खाना सब मुश्किल हो जाता है।
0: और आइए अब बात करते हैं CARI के निदेशक डॉक्टर जगवीर सिंह त्यागी जी से। त्यागी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: जो CARI में जो आज कैंप लगाया आपको का, इस बारे में थोड़ा बताइए कैसा क्या फायदा हुआ लोगों को?
5: क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल किसी भी संस्था में काफी काम करना पड़ता है और इसमें जो हमारे कर्मचारी है वो तनाव की स्थिति में रहते हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि उनका समय समय पर हेल्थ चेकअप करा जाए, तो इसी कड़ी में ही हमने आज एक यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उनसे के जो प्रबंधक या जो डॉक्टर उनसे निवेदन किया कि भाई आप लोग हमारे संस्थान में आके एक जो जनरल चेकअप वो कर लें, जो मुख्य रूप से आज जो है आंखों के बारे में, दांतों के बारे में, या जो जनरल चेकअप होता है BP शुगर वगैरह जो है
0: जी, जी, जी।
5: तो उसमें कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं और जो हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका जो आप चेकअप कर रहे हैं
0: जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आंखों के बारे में, दांत के बारे में? जी
5: देखो, सबसे पहले तो है कि आप अपना स्वयं ध्यान रखें
0: जी,
5: और उसमें खान पान, रहन पान या जागना उठना उस पर विशेष ध्यान रखें, और जो भी विशेषज्ञ हैं, कोशिश तो ये होती है यदि आप 50 से ज्यादा हो जाएं तो उसमें जरूरी बन जाता है जो विशेषज्ञ बोलते हैं कि समय पर चेकअप कराएं ताकि कोई गंभीर बीमारी या लक्षण आने से पहले ही आपको एक सूचना मिल पाए और उसका समय पर इलाज हो सके।
0: धन्यवाद सर। और अब आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए हमें अनुमति। श्रोताओं नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले सोमवार। टाटा बाय बाय। देखो जी मेरी आंखों में।
6: इधर आइए, देखो तो जरा आपकी आंखों में क्या है।
0: मुझे तो साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, और ये तुम्हारा सुंदर मुखड़ा है ना, ये भी नहीं दिखाई देता है। देखो जरा मेरी आंख में क्या हुआ है।
6: अरे लगता है आपकी

0: आंखों में मोतियाबिंद हो गया है।
1: मोतियाबिंद, अरे वाह।
0: अरे वाह, इसमें हंसने की क्या बात है?
1: फोकस नेत्रालय है ना,
0: तभी तो आपको हंसी आ रही है।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमसे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपको करना इतना है, जाना है आपको आकाशवाणी बरेली के फेसबुक पेज पर, और उस पेज पर आपको आपकी पसंद प्रोग्राम से संबंधित एक पोस्ट नजर आएगी, और उस पोस्ट पर कमेंट करना है आपको अपनी पसंद के फिल्म का नाम और गीत का नाम। हम आपको सुनवाएंगे वो गीत और शामिल करेंगे आपके कमेंट। ये कमेंट है हमारे पास सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह का। अगला कमेंट हमारे पास पहुंच रहा है मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा का। अगला कमेंट भेजने वाले हैं हमारे पास ये है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। शाहनूर अंसारी का कमेंट हमारे पास आया है। सराजुद्दीन अंसारी ने हमें कमेंट भेजा है। ये कमेंट है हमारे पास मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। तो आप सबको हम सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

आप हैं समय 100.4 एफएम के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद, और आपकी पसंद आप लोगों ने ही हमें भेजी हैं प्रोग्राम में और उन्हें हम शामिल कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में। हमारे पास ये पसंद भेजी है उड़ला जागीर से फजरुद्दीन अबरार और अफजाल ने। अगली जो फरमाइश हमारे पास आई है इसे भेजने वाले हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, और ये भेजा है हमें मोहम्मद अकरम अंसारी ने नगरिया कला बरेली से, सादुल सैद राजांश राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, जगदीश धाकड़, रंजूबाई, युवराज सिंह, शिवांगी का कमेंट हमारे पास आया है, और ये कमेंट भेजने वाले हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा और मयंक शर्मा।

समीर अंसारी का। अगला कमेंट हमें भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश राजपाल कश्यप, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर। ये कमेंट हमें भेजा है संजय धींगिया, नमन धींगिया और अपार धींगिया ने। मोहम्मद अकरम अंसारी नगरिया कला बरेली से हमें कमेंट भेजते हैं। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ का कमेंट है। अगला कमेंट हमें भेजा है, इसे भेजने वाले हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह। अगला कमेंट हमारे पास आया है गजानन नादरी मारोत राव पांचाल का। ये कमेंट हमें भेजने वाले हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, मिफ्रा चाहत और सादिया। अगला कमेंट हमारे पास आया है इश्तियाक अहमद इदरीसी का बहेड़ी से। ये कमेंट भेजने वाले हैं हमारे पास बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा दे रहे हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम हमको तुमसे प्यार है, स्वर उदित नारायण, अलका याग्निक का।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, और आपकी पसंद प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं आपकी पसंद। तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जाना है आकाशवाणी बरेली के फेसबुक पेज पर, और उस पेज पर आपको आज के आपकी पसंद प्रोग्राम से संबंधित एक पोस्ट नजर आएगी, और उस पोस्ट पर आपको कमेंट करना है अपनी पसंद की फिल्म का नाम और गीत का नाम, और हम उनको शामिल करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आपकी पसंद कार्यक्रम में हमारे पास ये जो कमेंट आया है, इसे भेजने वाले हैं इश्तियाक अहमद इदरीसी बहेड़ी से। अगला कमेंट आया है सुल्तान रजा, इकबाल, जीशान, अफजल, सादिक और इनके परिवार का। ये कमेंट हमें भेजा है, इसे भेजने वाले हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमारी, नियति कुमारी। और अगला कमेंट हम तक पहुंचा है धनौरी थेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान बाबू का। ये कमेंट भेजने वाले हैं कैलाश मिस्त्री, गोधरन गोर्धन धरा, फरसा राम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन, मोहल्ला हलवाइयान, शेरकुट बिजनौर से मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर का कमेंट है। अगला कमेंट हमें भेजा है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी, आबाद खान ने। ये कमेंट हमारे पास आया है, इसे भेजा है तौफीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी ने। मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम का कमेंट हमारे पास है बुद्धनगर खंडवा से, और ये कमेंट हमें भेजा है शंकरलाल जायसवाल, गणेश, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, तृप्ति और दुर्गेश्वरी ने। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करुणा मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान का कमेंट हमारे पास आया है। तो आप सबको सुनवाई

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, और आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके कमेंट हमें लगातार मिल रहे हैं। हमारे पास ये जो कमेंट आया है इसे भेजने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और विनेश कुमार और रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने हमारे पास कमेंट भेजा है चनहटी बरेली कैंट के पास से, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून का कमेंट है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार का कमेंट आया है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना ने कमेंट भेजा है, ये कमेंट हमें मिल रहा है। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, किशन, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू का ये कमेंट भेजने वाले हैं। इनका नाम है प्रहलाद सिंह वर्मा, बेमतेरा छत्तीसगढ़ से, मालती वर्मा, अंश और शिवी वर्मा, रामपुर लिसनर क्लब से, नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हमदाद, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का कमेंट हमें मिल रहा है। कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा गौड़ ने हमें कमेंट भेजा है। ये कमेंट भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। अगला कमेंट है कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लब दिवाकर, उमेंद्र कुमारी गोस्वामी और कल्लू भाई मिस्त्री का। मोहल्ला हलवाईयान शिरकोट बिजनौर से इकबाल फरीदी और सितारा बेगम कमेंट करते हैं। पूजा रेडियो श्रोता संघ से राजेश कुमार, यशोदाया, राजीव और संजीव का कमेंट हमारे पास आया है। ये कमेंट भेजने वाले हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद, वीणा और विविधा। वीएल ठाकर का कमेंट है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, इनके साथ हैं भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक। गंज डुंडवारा से हमारे पास कमेंट आ रहा है, इसे भेजने वाले हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमशुल कमर राही। गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, राधेश और सार्थक शर्मा का कमेंट है। राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा का कमेंट हमारे पास आया है। अशरफ खां छावनी बरेली से, नाज रेडियो क्लब बरेली से, निसार अहमद अंसारी, मजहबी निसार अंसारी, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी का कमेंट है हमारे पास। पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य कमेंट भेज रहे हैं, और ये कमेंट हमारे पास आया है नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी और अफजल मलिक का। तो आप सबके फरमाइश पर हम आपको सुनवाए देते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है फना, स्वर सोनू निगम और सुनिधि चौहान का है।

0: समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में हमारे पास एक कमेंट है बिजना मुरादाबाद से, राजवीर सिंह यादव, कुनाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया का। अगला कमेंट भेजने वाले हैं दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से, मसलम सफी, जबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी, आवाद खान। अगला कमेंट आया है मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम का, खंडवा

बैजोई से। ये कमेंट भेजने वाले हैं पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्ला अंसारी, आसमान राज अंसारी, शबनम बानू। बक्सर विहार से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज का कमेंट है। ये कमेंट हमारे पास भेजा है, इसे भेजने वाले हैं सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा। और अगला कमेंट है रामपुर लिसनर क्लब से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्स और हमजा का। पवन गौड़ ने हमें कमेंट भेजा, इनके साथ हैं सुयश, आशीष, तन्मय और अपूर्वा। अगला कमेंट हमारे पास आया है, इसे भेजने वाले हैं मिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना का कमेंट हमारे पास आया है। हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि एक ही बार कमेंट किया करें, क्योंकि ऐसे आपकी कमेंट शामिल करने में थोड़ी सी असुविधा रहती है। ये कमेंट हमें भेजने वाले हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, दिनेश चौहान, राम देवरा, बाबूराम जयपाल डांगरी से, और बंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा, मुनीष शर्मा का कमेंट हमारे पास है। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल का कमेंट आया है। ये कमेंट हमें भेज रहे हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। ये कमेंट गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलापति सोनी और जगदीश जौहरी का हमें स्क्रीन पर प्राप्त हो रहा है। शेरकोट बिजनौर से नदीम कलीम, अलीम अजीम और अदीम अब्दुल अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत का कमेंट हमारे पास है। ये कमेंट भेजने वाले हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से रामटेक यशोधरा, रामटेके श्राव्या रामटेके। और दिनकर रणजीत और नारायण का कमेंट है गेवराई महाराष्ट्र से। तो आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा दे रहे हैं हेलो ब्रादर फिल्म का गीत स्वर कुमार सानू और जसविंदर नरूला का।

आप हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी पसंद। और आपकी पसंद कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के गीत। अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो आपको करना बस इतना है, आपको जाना है आकाशवाणी बरेली के फेसबुक पेज पर, और उस फेसबुक पेज पर आपको आज के आपकी पसंद प्रोग्राम की एक पोस्ट नजर आएगी और उस पोस्ट पर आपको करना है कमेंट। और ये हमारे पास कमेंट आ चुका है, इसे भेजने वाले हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशारानी, संजना परी, कार्तिक चौधरी कुमारी, देविका, स्वाति और प्रज्ञा। अगला कमेंट है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का ये कमेंट हमें मिल रहा है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का अगला कमेंट आ रहा है। ये छत्तीसगढ़ से है और रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान ने इसे भेजा है। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना का लदावली जिला मुरादाबाद से कमेंट आया है। और ये कमेंट है सुभाष, विमल, इंदु, पार्वती और हिमांशु का। अगला कमेंट भेजने वाले हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत कौड़ और स्वीटी छावड़ा, और गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से खिल्लू परवेज, इमरान नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी का कमेंट है। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम का। ये कमेंट भेजने वाले हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा नामदेव। और अगला कमेंट आया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी का। शनि बाजार कस्बा उगहती बदायूं से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, पीर प्रियल और कायरव का कमेंट हमारे पास है। और ये कमेंट पहुंचा है रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। ये ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमें कमेंट भेज रहे हैं। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष और शौर्य और दिनेश का कमेंट हमारे पास है। तो आप सबके अनुरोध पर सिंदूर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, स्वर है लता मंगेशकर और सुरेश बाटकर का।

और ये हमारे पास कमेंट आया है, इसे भेजने वाले हैं माँ बमलेश्वरी रेडियो श्रोता संघ सकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप, नेहा देवी, देवेंद्र प्रताप और बाबा कुटीर रायगढ़ से, शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान का कमेंट हमें मिल रहा है। ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है अशोक, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु का, गंगानगर रामसिंहपुर राजस्थान से। ये कमेंट भेजने वाले हैं विनोद, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन, ये खोखरा वाली श्री गंगानगर से हमें कमेंट भेजते हैं। सफीदो सिटी हरियाणा से हमारे पास नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और खन्ना परिवार का कमेंट है। और अगला कमेंट हमारे पास है वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान, शिवशरण और सोनिका, संजयनगर इश्वाग लखनऊ से, कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से, जमुना प्रसाद, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य का कमेंट हमारे पास है। और ये कमेंट हमारे पास भेजने वाले हैं बेनी सिंह, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमबती, खनक, नकुल, नैंसी और सारांश। और मयंक और चेतन नाहटा का हमारे पास उज्जैन मध्य प्रदेश से कमेंट आ रहा है। जीवन लाल, निमिष, सतीश, मुकेश कुमार का कमेंट है। और ये कमेंट भेजने वाले हमारे पास हैं, इनका नाम है यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, मनवर, रोशनी और प्रियांशी। तो आप सबको हम सुनवा रहे हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत, स्वर कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का है।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 11:07 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है रसरंग सब रंग कार्यक्रम। सब रंग कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं सब रंग कार्यक्रम की शुरुआत इस भजन के साथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: क्या बात है, संतोष कुमार राव जी उमरिया मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। वैसे आज हम सुबह के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी पहुंचे थे, पता है आपको, हम लोगों ने वहां से एक वहां के सजीव दृश्य का व्याख्यान लिया था पंडित जी से। आप उमरिया से बोल रहे हो, उमरिया किधर पड़ता है जरा हमें बताएं।
0: मैडम ये कटनी जंक्शन और बिलासपुर जंक्शन को जोड़ने वाली जो रेल यात्रा है ये जाकर के इसी बीच में पड़ता है उमरिया जी।
1: अच्छा वाह, और वहाँ से आप आकाशवाणी लखनऊ सुनते हैं।
0: बिल्कुल, एफएम रेनबो पे जो आता है प्रसारण आकाशवाणी लखनऊ का बहुत ही संजीदा होता है और आपकी चहकती हुई आवाज हमें जब न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से सुनने को मिलती है तो बिल्कुल मन गदगद हो जाता है।
1: क्या बात है, मेरा मन इस समय गदगदा गया है, प्रफुल्लित हो चुका है आपकी बातें सुनकर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि एफएम रेनबो लखनऊ आप कितने सालों से सुन रहे हैं, कितने समय से सुन रहे हैं?
0: मैम इसका प्रसारण जब से चालू हुआ है तब से ही सुनते आ रहे हैं। जो दोपहर के कार्यक्रम आते हैं, मेल वेट्स कार्यक्रम होते हैं, वो भी हमें बहुत ही लाजवाब लगते हैं। जब आप मेलों की रफ्तार इतनी तेज गति से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें।
1: जी, जब इतनी सारी सुपर डुपर मतलब सुपर फास्ट एक्सप्रेस मेल आ ही जाते हैं तो फिर क्या करें, हमको भी अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। खैर क्या कहना चाहते हैं संतोष हमारे सभी श्रोताओं से जो आपको सुन रहे हैं इस समय?
0: जी, जीवन एक चलती हुई ट्रेन की तरह होती है, इसलिए जीवन का जो जो हमारा आत्मविश्वास है इसे लेकर के चलना चाहिए और जीवन को आनंदमय रूपीमय इस जीवन को यापन करना चाहिए। अपनों के साथ हो तो जिंदगी जीने का अलग उत्साह होता है। माँ का आशीर्वाद हो, पिता का ध्यान रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जीवन में यही प्रसन्नता आपको आनंदित कर देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच संतोष जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको।
1: और तो ये तो थे संतोष कुमार राव, उमरिया मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ईमेल पर बहुत सारे हमारे लिसनर्स प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके ईमेल कब पढ़े जाएंगे। अभी पढ़े जाएंगे, अभी बिल्कुल अभी जस्ट। देखिए मोनू जी का मेल हमें दिख रहा है, कहते हैं कि छोटी छोटी लापरवाही से जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है क्योंकि ये बड़ी घटनाओं, तनाव और अवसरों को खोने का कारण बन सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इनसे बचने के लिए जिम्मेदारी, सजगता और छोटी खुशियों को महत्व देना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास मेल है नफीस अंसारी जी का। अच्छा आपने तो जी आपका मेल मैंने पूरा पढ़ा था नफीस अंसारी जी, आपके मेल में क्या बात रह गई थी बताइए हमें। आपने जो संदेश दिया था वो अच्छा, देश को सफाई करना चाहिए, अपने घर के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, बस। इसके बाद जो आपने एक कम से कम 10 से 15 नामों की लिस्ट भेजी है ना, या 10 या 8 हो सकते हैं, मैं गिनूंगी नहीं, वो मैं पढ़ना उचित नहीं समझती हूँ। इससे हमारे बाकी श्रोताओं ने जो मेल भेजा है ना वो छूट जाएंगे, समय व्यर्थ होगा। और वही वही नाम जो खुद भी मेल कर रहे हैं, जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, वही वही नाम पढ़ने से क्या फायदा। ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये इस प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसे अपनी पब्लिसिटी का प्लेटफॉर्म मत बनाइए। ये आपका एफएम रेनबो है, आप लोग बहुत प्यारे श्रोता हैं, बहुत जिम्मेदार श्रोता हैं, अपनी अपनी बातें कहिए और बस अपने लिख दीजिए हमारे सभी दोस्त और परिवार, बस इसमें पूरा अगर किसी का नाम छूट भी गया होगा ना वो भी समाहित हो जाता है, अलग से सबके नाम मत लिखिए प्लीज। अशोक कुमार जी लिख रहे हैं, अशोक राज नमस्कार, और ये इनका संदेश है कि नशे में गाड़ी ना चलाएं और ना ही दूसरों को चलाने दें, सड़क पर आपकी जान की कीमत सिर्फ आपकी नहीं आपके परिवार की भी अनमोल है। और प्रोग्राम से इन्हें पसंद आ रहे हैं, ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा नजीम रायन जी का भी मेल है और ये दिल्ली इंद्रलोक से गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने, सिर्फ और कुछ नहीं लिखा है। वेरी गुड मॉर्निंग नजीम रायन जी आपको भी। लखीमपुर खीरी से एक मेल और है, वालेकुम सलाम। अच्छा ये मेरा नाम शाजी अंसारी है, महेवागंज लखीमपुर खीरी से, और इनका मैसेज है कि पेड़ पौधे लगाएं, उनको काटना नहीं चाहिए, और मैंने अपने बर्थडे पर भी 2 पेड़ लगाए थे, बहुत अच्छा किया था शाजिया। और कहती हैं कि आपसे जानना चाहती हूँ कि 11 दिन हो गए हैं, मैं कॉल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, अगर 11 दिन का ब्रेक हो गया है तो आप कर सकती हैं, बस ईमानदारी से, है ना। यहाँ पर अगर आप झूठ बोलेंगी तो हमारे जो श्रोता नियमित रूप से सुन रहे हैं ना उन सबको तो पता ही होगा कि जो है हमारी शाजिया ने कब लास्ट टाइम कॉल किया था और फिर कब कर रही हैं, तो मुझे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ पर बैठे आरजे का कोई नुकसान नहीं, इससे सिर्फ आपकी छवि खराब होगी। और अगर 11 दिन का ब्रेक हो चुका है तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, 1 हफ्ते का ब्रेक लेकर आप कभी भी कॉल कर सकती हैं। इसके बाद प्रमुख कुमार जी लुधियाना पंजाब से सुन रहे हैं, कहते हैं कि ये देख रहे हैं क्या लिखे हैं बताएं, हम बिजी हैं, सुन रहे हैं, ईमेल

इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण से।

कर पाएंगे, माफ कर दीजिएगा। अब भैया इतना तो कर दिया आपने, ईमेल है इतना लिख दिए हो, बस यही बहुत है हमारे लिए। देखिए इतना बिजी होने के बावजूद इतना लिख कर भेज रहे हैं, क्या बात है। इसी बात पर हम आपको एक बढ़िया वाला गाना सुना रहे हैं ना, क्रीस का गाना, क्रीस का सुना दे, क्रीस का गाना, चलिए सुनिए, इंजॉय कीजिए।

0: ले बेटा, गाना सुन लिया कि नहीं सुन लिया, है ना? अब हम फोन पर बात कर लेते हैं, ठीक है? हमारे कॉलर्स हैं, उनसे पहले बात करेंगे, उसके बाद ईमेल पढ़ेंगे, फिर गाना सुनवाएंगे, ओके? तो बस ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला 12 बजे तक. हेलो.
1: नमस्ते मैडम.
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ग्राम नारायणपुर पोस्ट छत्तीसगढ़ तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी.
0: बाराबंकी से. तो क्या कहना चाहते हैं अपना? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, सुनाई नहीं पड़ा. रिंकू जी, इतना छोटा सा नाम है. रिंकू ऐसे बोला करिए ताकि सबको सुनाई पड़ जाए ना. मतलब कब शुरू होता है कब खत्म होता है, ऐसे मेरा भी नाम है अंजू. धीरे से लोग बोल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है ना, इसीलिए हम पूरा बोलते हैं अंजू शुक्ला.
1: बढ़िया बात है.
0: हाँ, क्या कह रहे हैं?
1: 20 साल से आपको वेट कर रहे थे बात करने के लिए.
0: 20 साल से आप इंतजार कर रहे हैं?
1: जी, आपसे बात नहीं हुई थी.
0: हमसे नहीं बात हुई थी, बाकी सबसे हो गई थी.
1: नहीं, दो चार आरजे से बात हुई है.
0: अच्छा, डायरी में नोट किया होंगे नाम, किस किस से बात हुई है?
1: उत्कर्ष से हुई हुई.
0: अच्छा,
1: और सर्वेश्वर से बात हुई थी.
0: कब हुई थी?
1: 13 जुलाई को.
0: अच्छा, मतलब एक एक हफ्ते का गैप रख रहे हैं आप, है? 26 को बात हुई थी, उसके बाद आज 3 तारीख को बात कर रहे हैं.
1: 3 तारीख को बात हुई. मैडम जी, आपने जो कार्यक्रम आपने जो किया था मनोज तिवारी पे,
0: मनोज कुमार जी पे,
1: मनोज कुमार पर,
0: हम्म,
1: मोहम्मद रफी पर,
0: हम्म,
1: मैंने पूरे रात

0: 12 बजे से आपको पूरा कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात है, हम तो डर गए थे, हम तो डर गए थे, हमने कहा कि पता नहीं क्या कहने वाले हैं आप। चलिए बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बस इसीलिए देखिए, जब आप लोग शिद्दत से सुनते हैं ना, तो हमारी भी मेहनत सफल होती है, और अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपकी प्रस्तुति मुझे बहुत पसंद आती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एक बात और कहूंगा, एक बार कभी मोहम्मद अजीज के बारे में बात कीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद अजीज साहब पर भी प्रोग्राम किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा ना, हम नहीं करेंगे तो कोई और आरजे करेगा।
0: नहीं, आप ही करें।
1: अच्छा ठीक है, कोशिश की जाएगी। चलिए अब समय बहुत तेजी से भाग रहा है। रिंकू जी, ये तो व्यक्तिगत बातें हो गई, हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा एक मैसेज जल्दी से दीजिए, क्योंकि दूसरी लाइन पर भी कोई इंतजार कर रहा है।
0: शिव मंदिरों पर जाएं, तो किसी प्रकार का नशा सेवन करके ना जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और लोग जाते हैं शराब पी करके जाते हैं, खा के जाता है,
1: अरे ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
0: नहीं मैम जी, बहुत सारे मैंने देखा है ना।
1: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपकी तरफ से आया, थैंक यू सो मच रिंकू जी हमसे बात करने के लिए। जी थैंक यू,
0: बहुत लोग करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और आप पीए महादेवा घूम जाइए।
1: हम महादेवा के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन फिर जब भगवान बुलाएंगे तो फिर पहुंच जाएंगे, है ना, बस बाबा जी की मेहरबानी बनी रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी, नमस्कार। हमारे साथ दूसरी लाइन पर कौन है, देख लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते। हमको लगा आप कहीं चली गई फोन रख के, हैं कहाँ चली जाती हैं। आप सुन रहे, आपके आपकी तरफ नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, कहीं दाएं बाएं घूम जाइए, जल्दी से बाहर निकल जाइए दौड़ के। बाहर निकली लेकिन फिर भी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बताएं आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। आपकी तरफ नेटवर्क वीक है मुझे लगता है। हेलो, नमस्ते, जल्दी आगे बोलिए, नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रही हैं। सानिया लखीमपुर खीरी से, जल्दी से अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ नेटवर्क अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सानिया, क्या कहना चाहती है हमारे श्रोताओं से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सानिया, क्योंकि आपकी तरफ से आवाज थोड़ी सी खराब आ रही, नेटवर्क ठीक नहीं है, इसलिए आपसे बहुत लंबी बात नहीं कर पाएंगे। वैसे आपका मैसेज हमारे श्रोताओं तक पहुंच गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपना ख्याल रखें, और देखिए इधर क्या करूं मैं, क्या ख्याल रखूं। महेंद्र दीपन जी, इतने सारे ईमेल्स आ गए, महेंद्र दीपन जी से फिर से शुरुआत करते हैं। इन्होंने गाँव रूड़ जिला नागौर से हमें मेल किया है, नियमित रूप से हमें सुनते हैं, कहते हैं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं से एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। बरसात मौसम जहां हरियाली ठंडक और प्रकृति की सुंदरता लेकर आता है, वहीं कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। गंदा पानी, जलभराव, आसपास फैली गंदगी मच्छरों तथा कीटाणुओं के पनपने का कारण बनती है और बीमारियां बहुत सारी फैलती हैं, इसलिए स्वच्छता सबसे बड़ा बचाव है। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, अपने परिवार का और पूरे समाज का ख्याल रखिए, साफ सफाई रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू अंसारी जी कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, संदेश ये है कि इधर उधर कूड़ा कचरा न फेंके, कूड़ा डस्टबिन में ही डालें, और साथ ही साथ सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। क्या बात है, आप लोग यहाँ आ जाएंगे ना तो आरजे बन जाएंगे। अहमदपुर बाजार बाराबंकी से आपने मेल किया। वैसे आपको बताऊं ना, 2017 में जब नहीं, आज क्यों बताया, हम 20 अगस्त के लिए छोड़ते हैं ये सारी चीजें, जाने दीजिए। मतलब क्या बताऊं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग नहीं एक्साइटेड हैं 20 अगस्त के लिए। हाँ चलिए, मोनू जी आपका मैसेज तो मैं पढ़ चुकी हूँ, इन्होंने कुछ कविता लिख दी है। रिमझिम रिमझिम सावन आया, मनमोहक सा मौसम लाया, काले काले बादल छाए, मोर नाचते पंख फैलाए, पेड़ों पर हैं पेड़ हिंडोले, पड़े हिंडोले झूला झूले, सखियां मिलके कोयल मीठी तान सुनाती, धरती अपनी प्यास बुझाती, हरियाली की चादर ओढ़े, नदियां बहती बंधन तोड़े, कांधे पर कांवरले भोले, भक्त चल पड़े बम बम बोले। क्या बात है, देखिए अच्छा पढ़ा ना हमने, थैंक यू। संतोष चौरसिया जी हर हर महादेव, गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। रॉयल अमित यादव, प्यारी सी मॉर्निंग, प्यारी सी आरजे प्रोग्राम कर रही हैं, थैंक यू सो मच। और ऊपर से मेरा प्यारा सा रेडियो जिसपे हम अंजू मैम की आवाज सुन रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने आज हमारे लिए महफिल सजा दी हो। आई एम श्रेया यदुवंशी, गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटुआ बाराबंकी से। मैम सो अमेजिंग प्रोग्राम एंड सो स्वीट सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से आपके लिए प्यारा वाला हार्ट। और अब हम सुनते हैं एक बढ़िया वाला गाना। जी ये थोड़ा सा लंबा गाना बजा दूं है?

क्या कहते हैं, बड़े छोटे छोटे गाने अभी इससे पहले मैंने सुनवाए, इस गाने को सुनिए और उसके बाद वापस आएंगे तो जो ईमेल्स हमारे सामने दिख रहे हैं उनको हम शामिल करेंगे, अगर हो सका तो एक कॉल भी ले लेंगे। हाँ, क्या कहते हैं, ले लेंगे, चलिए।

भैया होगा क्या, 11:50 हो गए, 10 मिनट में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और क्या, उसके बाद शालिनी आ जाएंगी आपके साथ, है ना, आ ही चुकी हैं स्टूडियो में। तो भाई मेरे पास है सिर्फ 10 मिनट और इस 10 मिनट में पहले 5 मिनट हम अपने ईमेल्स पढ़ लेते हैं अपने श्रोताओं के और उसके बाद लास्ट का 5 मिनट का एक गाना बज जाएगा और हम टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। क्या कहते हैं, यही होने वाला है बस, और कुछ थोड़ी होगा। फिलहाल गाने बहुत अच्छे बजाने, देखिए प्रमुख कुमार जी अभी लिखे रहे हैं कि भैया टाइम नहीं, ईमेल ना कर पाई हैं, और देखा कूद के गए और फिर ईमेल भेज दें कि गाने आप बहुत अच्छे बजा रही है। देखो और कहते हैं टाइम नहीं, बताइए क्या किया जाए ऐसे लिसनर्स का, इतना प्यार ये लोग करते हैं एफएम रेनबो से फिर कि बिल्कुल कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेते हैं। राम जी का मेला है, रामू राम जी का मेला आया है और ये लिखते हैं महामाया की नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, ये हैं रामू राम जी। आप सभी को पहले सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं राम जी, और आपने पूरी टीम को, हमारी पूरी टीम को शुभकामनाएं भेजी हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया। आगे ये लिखते हैं कि अपनों और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, भीड़ में जाने से बचें और बच्चों को लेकर ना जाएं, कोशिश करें कि जब अगर बच्चों को ले जाते हैं तो उनका ख्याल भी रखें, है ना। छत्तीसगढ़ से आप हमें सुन रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज कुमार राज जी का भी मेल आ गया है रहुआ लखीमपुर खीरी से, और अंजू दीदी को जय भोले, अरे बम बम भोले। प्रथम सोमवार की आपको भी शुभकामनाएं, श्रावण मास बहुत पवित्र मास है, बस भोलेनाथ को मनाने के लिए जुट जाइए और खास तौर पर जिन्हें जिन्हें मनपसंद वर चाहिए, मनपसंद वधु चाहिए ना, उनके लिए बेस्ट मौका है समझ लीजिए। कार्यक्रम की प्रशंसा की है इन्होंने और लिखते हैं भोलेनाथ पर दो लाइन, भोले की बारात चली तो दुनिया भी झूम गई, शादी का जोड़ा पहनकर पार्वती भी मुस्कुरा गई। और संदेश के तौर पर कहना चाहते हैं कि पहले तो प्रोग्राम की तारीफ की है, बड़ा सुंदर भक्तिमय माहौल और संदेश भी दिल को छू रहा है। आगे ये लिखते हैं कि सभी कांवड़ यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी साइड से ही चले, रास्ते में चलते समय खान पान का विशेष ध्यान रखें, बीच बीच में आराम करते हुए चले, मंदिर परिसर में गंदगी ना फैलाएं, भीड़ भाड़ से बचें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, जय भोले। थैंक यू सो मच, ये हमारे पक्के वाले श्रोता है, आगे इन्होंने लिखा है आपका पक्का श्रोता। जावेद अख्तर जी, वेरी गुड आफ्टरनून, और आपका मेल है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से, और आप हमें लिख रहे हैं कि पानी पोखरों में तालाबों में जमा करें पानी को, आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को धन दौलत नहीं, पीने का साफ पानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और रॉयल अमित यादव का मेल है, अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है, अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से जीवन भर रिश्ते टिकेंगे। थैंक यू सो मच, सॉन्ग्स की तारीफ आपने लिखी है। बाराबंकी से आपका मेल, और रामू जी आपका मेल मैं पढ़ चुकी हूँ। वारिस अली जी लिख रहे हैं, न जाने कौन सी दौलत है हमारे आरजे के शब्दों में, जब बात करते हैं तो दिल ही खरीद लेते हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सहलेगा लेकिन ऊपर वाला उसका जवाब टेढ़े तरीके से देता है। बड़ी दमदार बात आपने कह दी है, बड़ी सही बात। तालिब अंसारी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बाराबंकी से लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि मैम जी बहुत लोग फर्जी आईडी बना के मेल करते हैं सिर्फ पढ़वाने के लिए। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत सारी और ऐसी बातें लिखी हैं जो हम आराम से इत्मीनान से पढ़ लेंगे। और इसके बाद है संजू देवी का मेल, ग्राम पहाड़पुर पोस्ट भिटौरा जिला सीतापुर से, गुड मॉर्निंग भेजा है, साथ ही साथ प्रोग्राम की तारीफ की, हमारी तारीफ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भोलेनाथ से दुआ है कि आपसे बात हो जाए। अच्छा, क्या बात है। और ख्याल रखने के लिए कहा है, बरसात का मौसम है, सब लोग अपना अपना ख्याल रखें। अरुण कुमार कुशवाहा जी गमोइया हरदोई से आपका मेल मैं सबसे पहले शामिल कर चुकी हूं, और लेकिन एक संदेश इन्होंने और भेजा है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए पढ़ देती हूं। बरसात में बिजली के उपकरण छूने से पहले सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, नमी के कारण उसमें करंट लगने का खतरा बना रहता है। और खासतौर पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब आप बाहर हों तो सड़क पर चल रहे हों, पानी भरा होता है ना अक्सर रोड पर, तो लोग साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, और साइड में क्या होता है, पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, तो उससे दूरी बनाना, ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत सावधान रहिए क्योंकि ये छोटी छोटी लापरवाही हादसों का कारण बनती है। गुलफशा सिद्दीकी, वेरी गुड मॉर्निंग, संडीला से हमें सुन रहे हैं, हमारी नियमित श्रोता है। मेरा संदेश ये है कि किसी के बारे में सोशल मीडिया पर या रेडियो पर कुछ भी गलत लिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे भाई आप क्या, आपको कोई हक नहीं है कि किसी पर आप कोई पर्सनल कमेंट करें, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, आप सबके मेल्स, मुझे लगता है मैंने सबके मेल शामिल कर लिए। संतोष चौरसिया जी रह गए थे, अच्छा नहीं, आपका भी पढ़ चुकी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी का मेल छूट गया हो, देखिए अजय कुमार सिंह कुमार जी अभी सो के जगह हैं 11:54 पे, है ना, अब मेल किया इन्होंने, कहते हैं कि आवाज़ में कुछ चेंजिंग है। नहीं, आवाज़ मेरी ऐसी मतलब कम ज़्यादा होती रहती है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिजी, इन्होंने भी लिख दिया बिजी रहने के कारण मेल नहीं कर सकते, कई दिन मेल हैं और कहा थे बिजी, यहीं ऐसे बिजी रहा भैया,

0: कि हमको सुनत भी रहा और मेलो करते रहा। चलिए मुलाकात होगी इसी चैनल पर किसी और दिन, लेकिन फिलहाल अंजू की ओर से सावन मास के पहले सोमवार की फिर से हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार। अगले कुछ घंटे आपको छोड़ जा रही हूँ मैं शालिनी के हवाले। क्यों शालिनी, संभाल लोगी?
1: बिल्कुल कोशिश करते हैं।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से संभालेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी जानकारियां भी शालिनी आपको आप तक पहुंचाएंगी अगले प्रोग्राम्स के जरिए, इंपॉर्टेंट जानकारियां, तो उसे जरूर सुनिएगा और लगातार बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ। अंजू की ओर से आज बस इतना ही, टेक केयर, नमस्कार।

0: 100.7 FM रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता रेनबो लखनऊ एट 2026।
1: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
0: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए FM रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है या FM रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
1: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
0: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
1: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, न एक शब्द कम न एक शब्द ज्यादा।
0: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
1: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
0: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
1: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
0: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
1: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं FMSEISHQ

0: sunil@gmail.com।
1: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।
2: नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से ही पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से कहा कि यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। गरीब, किसान, युवा, महिला, इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और परिणाम तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म विधायकी होती है। हर जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र की समस्या रख सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह ने पत्रकारों से कहा कि सरकार ने कम समय का सत्र बुलाया, जिसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से बचना चाहती है। प्रदेश में समस्याएं बहुत हैं, जिससे सरकार भाग रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह बेवजह से के मुद्दे बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कानून समस्त तरीके से हर पहलू पर काम कर रही है। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र पर ट्वीट कर भाजपा सरकार पर प्रश्न उठाए। मायावती ने कहा कि यह सत्र अति अल्पकालीन है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि यह सत्र देश व जनहित, जनकल्याण एवं ज्वलंत जनसमस्याओं के प्रति समर्पित होने के बजाय संकीर्ण दलगत राजनीति, खींचतान, आरोप प्रत्यारोप व हंगामा आदि की पूरी तरह से भेंट न चढ़ जाए। विधानसभा का इतना संक्षिप्त सत्र क्या अपना वास्तविक उद्देश्य हासिल कर पाएगा या फिर केवल औपचारिकता ही रह जाएगी। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने सारनाथ को मान्यता देकर धार्मिक पर्यटकों को तोहफा दिया है। मान्यता देने के प्रकरण 28 साल से विचाराधीन था। भगवान बुद्ध की स्थलीय सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से सारनाथ देश का 45वां और उत्तर प्रदेश का 4था विश्व धरोहर स्थल बन गया है। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में 25 जुलाई 2026 को यह घोषणा की गई। इससे पहले यूपी के ताजमहल, आगरा का किला व फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए उस भ्रामक वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि वायरल वीडियो पुराना है, जिसे भ्रामक संदर्भ के साथ साझा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा रविवार से प्रदेशव्यापी दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का शुभारंभ किया गया। यह विशेष अभियान 10 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

12:05 का वक्त। प्रोग्राम शत्रुपा की हो चुकी है शुरुआत और आज दिन है सोमवार। जी हाँ, सावन का पहला सोमवार भी है, जिसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ शत्रुपा में सोमवार के दिन हम बात करते हैं हेल्थ की। और अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो इस जो हमारा अगस्त का पहला सप्ताह होता है, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? जी हाँ, स्तनपान दिवस सप्ताह, जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। और जागरूकता क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात ही नहीं करनी है। जागरूकता इसीलिए कि आप सभी लोग जागरूक हो। और अगर हम माँ की बात करें तो भगवान का सबसे खास तोहफा होता है माँ। और माँ के दूध की बात करें तो जो सिर्फ भोजन नहीं है बल्कि बच्चे की पहली दवा, पहला टीका और पहला प्यार। तो बस आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कैसे बच्चे को जन्म से लेकर 6 महीने तक हम ख्याल रखें, जो बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है और बदलता भी है। शुरुआत कहते हैं कि जब कोई भी काम हम करते हैं, मकान बनवाते हैं, तो नींव मजबूत होनी चाहिए। उसी तरह से जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही उसकी हम इस तरह से देखभाल करें कि वो जब बड़ा हो तो कई सारे रोगों से लड़ने के लिए उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता हो, वो स्वस्थ रहे, चुस्त रहे और दुरुस्त रहे। तो बस इन सारी बातों के लिए हमारे साथ रहेंगी प्रोफेसर पूजा रमाकांत, जो कि प्रोफेसर हैं एंड्रोक्राइन सर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध कितना जरूरी है और माँ का पहला गाढ़ा दूध कितना जरूरी है, फिर भी न जाने क्यों हम बच्चों को और भी सारी चीजें देना शुरू कर देते हैं। शायद कहीं ना कहीं उसकी जागरूकता हमारे अंदर कम है। तो बस आज जो हम बातें बताने वाले हैं, उन्हें आपको गांठ बांध लेना है और उसी की तरह खुद काम करना है और लोगों को भी समझाना है। तो शुरुआत आज के प्रोग्राम की हम इस गाने से करते हैं और उसके बाद शुरू होगा हमारे सवाल जवाब का सिलसिला। तो बस सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ।

0: 12:13 और 8 सेकंड हो चले हैं और शुरू करते हैं हम प्रोफेसर पूजा रमाकांत मैम से बातचीत। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: थैंक यू। नमस्कार शालिनी जी, मेरा भी आपको बहुत ही हार्दिक स्वागत है और थैंक यू हमें बुलाने के लिए, और FM रेनबो के श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: मैम, जैसा कि सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम सभी लोग विश्व स्तनपान सप्ताह, जागरूकता सप्ताह मनाते हैं, और इस बार की थीम है कि जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें। तो ये जो स्तनपान दिवस है ये क्यों मनाते हैं, किस लिए, कोई खास वजह इसके पीछे, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं।
1: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं तो वो एक फिर से महत्व रखने के लिए सोसाइटी में मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को बार बार हम ये बात याद दिला सकें कि स्तनपान करना माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हम बार बार जिस बात को बोलते रहेंगे लोगों को बात याद रहती है, नहीं तो क्या होता है विद टाइम धीमे धीमे लोग भूल जाते हैं। और आजकल की सोसाइटी, स्पेशली जब लेडीज भी वर्किंग है, सब लोग वर्किंग है, टाइम का कमी है, तो कई बार स्तनपान कराना भूल जाते हैं या उसे कम कर देते हैं। तो जब कोई भी दिवस आता है तो उसकी बारे में जागरूकता बहुत बढ़ जाती है। तो WHO और यूनिसेफ ने ये प्रण लिया कि हम इस दिवस को भी सेलिब्रेट करें 1 अगस्त के हफ्ते में, 1 से 7 अगस्त, जिससे कि लोग इस बात को हर बार इम्पोर्टेंट समझते रहें और सोसाइटी भी समझे कि हमें भी हेल्प करना है। जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनको भी हमें हेल्प करना है, एक एटीट्यूड रखना है, हेल्पिंग एटीट्यूड, वो भी बार बार हम उस बात को समझाते रहे सबको। तो इसलिए ये मनाने का बहुत अच्छा फायदा है।
0: मैम, जब स्तनपान की बात की जाती है तो जो सबसे पहला प्रश्न हमारे सबके दिमाग में आता है ना, वो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जो कि बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोग इसे समझ भी चुके हैं, लेकिन अभी भी उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दूध बच्चे को नहीं पिलाते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर। तो उसके बारे में जरा बताएं।
2: तो बच्चे का स्तनपान कराना बहुत जरूरी होता है। माँ को जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर कहते हैं स्तनपान करा देना चाहिए, क्योंकि उस

0: में जो पीला गाढ़ा दूध होता है जिसे हम इंग्लिश में कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती हैं। उस दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, और वो बच्चे की सेहत के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसको जितना जल्दी दूध पिला सकें, पहला वाला जो पीला गाढ़ा दूध होता है वो जरूर पिलाएं, उससे बच्चा वंचित ना रहे। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी है।
1: मामा, ये माँ के दूध को सुपर फूड भी कहते हैं क्या? ये सच है?
2: आपने ये अच्छा सवाल पूछा शालिनी जी, क्योंकि ये सच है। ये सुपर फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये नेचुरल फूड है, और दूसरी बात ये है कि जो फॉर्मूला फूड है आपके पैकेट्स में मिल रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो मात्रा है, संतुलन है, वो बिल्कुल सही है, और ये बच्चे की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो जो मार्केट में दूध मिल रहा है उसकी तुलना में जो मदर का अपना स्तनपान का दूध है, वो ज्यादा इम्यूनिटी, ज्यादा प्रोटीन वाला है, और ज्यादा अच्छे से बच्चे को डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसे कोई उल्टी है या लैट्रिन कड़ी हो रही है, वो सब इश्यूज नहीं आते हैं। जब बच्चा छोटा सा है, ज्यादा चलता फिरता नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कहते हैं टट्टी कड़ी हो रही है, वो सब समस्याएं आने लगती हैं। तो अगर बच्चा ये दूध पी रहा है तो फिर उसे ये सब समस्याएं नहीं आती, तो इसलिए सुपर फूड इसको कहते हैं।
1: मैम, स्तनपान से बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास पर असर पड़ता है क्या? इसके बारे में भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार उनके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये तो माँ का दूध है, केवल बच्चे को पेट भर रहा है, छोटा है बच्चा, कुछ और उसको ऊपर से दिया नहीं जा सकता है, जब तक दांत नहीं निकल आते या समझदार नहीं हो जाता कैसे दे। तो ये सारे जो मिथ्या बातें हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे श्रोता हमारे।
2: हाँ, दोनों पे पड़ता है। बच्चे का दिमाग भी ज्यादा डेवलप होता है, ब्रेन डेवलपमेंट भी ज्यादा होता है अगर स्तनपान का दूध ले रहा है, और मेंटल भी, मानसिक रूप भी हो रहा है, क्योंकि इसमें कई इम्यूनिटीज होती हैं, एंटीबॉडीज जाती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो बच्चे को बार बार इन्फेक्शन, बुखार है, कहीं जरा सा भी कोई इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम लगना है, ये सब इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये सब इन्फेक्शन भी नहीं लगते बच्चे को।
1: मैम, जब आप इम्यूनिटी की बात आपने की ही दी है, कर दी है, तो आप जरा बताएं कि स्तनपान से ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वो कैसे?
2: ये वही चीजों की, जो प्रोटीन है वो ब्रेस्ट मिल्क में, और जो एंटीबॉडी ज्यादा जाती हैं, वो बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर देते हैं कि वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर तैयार रहता है, और मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन का भी डेवलपमेंट, वो भी ज्यादा अच्छा होता है, तो
1: जी
2: बच्चा स्वस्थ ज्यादा होता है। और क्योंकि मदर का दूध जो है वो नेचुरल फूड है, उसके लिए वो ज्यादा लेता है तो वो हेल्दी भी रहता है। उसको फॉर्मूला मिल्क देंगे तो उसको उसमें स्मेल आती है, उसको पसंद नहीं आता टेस्ट, तो वो क्योंकि वो उसके लिए नेचुरली बना नहीं है, और वो
1: जी
2: डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करते हैं जो हम
1: जी
2: बाहर से दे रहे हैं। तो वो मजबूरी का है कि अगर मदर किसी कारण से नहीं ब्रेस्ट फीड करा रही है तो एक सेकेंड ऑप्शन है, बट वो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि मदर का ही मिल्क बच्चा पिए। उसे कहते हैं बेस्ट वे, अपनी जिंदगी वो शुरुआत कर रहा है जब उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, उस वक्त अगर उसे वो सब चीजें नहीं मिली तो फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी वीक रह जाती है। बच्चा
1: जी
2: बड़ा हो जाएगा, बार बार उसे एलर्जी है, इन्फेक्शन होना है, खांसी जुकाम होना है, ये सब बाद में भी, एडल्ट हो जाएगा तब भी होता रहेगा।
1: जी तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हमने प्रोफेसर रमाकांत मैम से जानी हैं कि ये जो स्तनपान दिवस है क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, सप्ताह पूरा सेलिब्रेट किया जाता है, और माँ का पीला गाढ़ा दूध क्यों इम्पोर्टेंट है, माँ के दूध को सुपर फूड क्यों कहते हैं, और स्तनपान से बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और भी बातें हैं जाननी कि अगर माँ का दूध कम आ रहा है तो क्या करें, क्या कोई ऐसी दवाइयां भी हैं जिनको लेने से माँ का दूध बढ़ सकता है, बच्चे का प्रॉपर पेट भर सकता है, या माँ के दूध को पीने से बच्चे को उल्टी जैसी शिकायतें हो सकती हैं, अभी मैम ने जैसा कि उल्टी की बात करी थी, और क्या माँ के दूध से बच्चे को किसी तरह की समस्या हो सकती है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे लेकिन इस छोटे से गाने के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, डॉलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: बारह बजकर 25 मिनट और 35 सेकंड का वक्त, प्रोग्राम शत्रुपा में आज हम बात कर रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह की। जी हाँ, और जिसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर पूजा।

0: रमाकांत, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। अभी मैम से ने कई सारी चीज़ें जानी हैं, और अब ये जानना है कि मैम, क्या माँ का दूध कम अगर आ रहा है तो क्या किया जाए? क्या कोई ऐसी दवा या मेडिसिन या कोई ऐसा उपाय होता है जिससे माँ का दूध बढ़ सके और बच्चा पी सके?
1: माँ का दूध कम आ रहा है तो एक बार डॉक्टर से राय ले लें, कहीं ऐसा तो नहीं दूध का नली में कुछ सिकुड़न है या निपिल अंदर धंसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है महिलाओं के निपिल अंदर धंसे होते हैं तो वो दूध ठीक से निकल नहीं पा रहा है, तो वो एक बार डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट कर लें। दूसरा ये है कि किस पोजिशन में दूध पिला रहे हैं, माँ को वो भी सिखाया जाता है कि ऐसा वो गलत तरह से तो नहीं पिला रहे कि वो दूध निकल नहीं पा रहा है। तीसरी बात कि अगर लेडी कमजोर है, उसका खुद ही वजन कम है, तो फिर वो दूध भी कम बनेगा। तो बहुत लेडीज का प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे, तो उनका खुद ही हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो फिर वो खुद कमजोर हैं तो दूध भी नहीं बनेगा। तो इसलिए उनको अपनी डाइट का बहुत एक्स्ट्रा, ये शुरुआत होती है जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तब से उन्हें अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है कि उनका हेल्दी बेबी पेट में भी रहे और जब बाहर निकले तो भी वो स्तनपान करा सकें। तो उस कारण से, मतलब कुछ कुछ कारण होते हैं कि वो दूध कम बन रहा है, मोस्टली यही होते हैं। इसमें कोई घरेलू उपाय वही है कि अपना डाइट अच्छा रखें, हम अलग से दवा नहीं देते दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन यह है कि दूध रोकने का, किसी कारण से रोकना है तो उसकी दवा आती है कि हम दवा दे दें कि दूध बह रहा है वो रुक जाए किसी कारण से, जैसे बच्चा किसी का मर गया तो वो दूध नहीं पिला पा रहे, या लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो दूध नहीं पिला पा रही क्योंकि उसका कीमोथेरेपी चल रहा है और डिलीवरी हो गया है, बच्चा है, तो उन कुछ कुछ केसेस में, सर्जिकल केसेस में या मेडिसिन के केसेस में हम दवा देते हैं कि दूध रोक सके, पर दूध बढ़ाने का अलग से कोई दवा नहीं है, बस उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहे वही हेल्प करता है दूध बढ़ाने में।
0: मैम, जैसे आपने कहा था कि बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो उसे उल्टी, कब्ज ऐसी जैसी शिकायतें नहीं होती, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बच्चे को बचपन में, जैसे जब छोटा होता है दूध पीता है तो उल्टी हो जाती है, और कई बार उसको मोशन की, लैचिंग की, पॉटी की दिक्कत भी हो जाती है। तो क्या माँ का दूध, इस माँ के दूध को पीने से इस तरह की भी समस्याएं होती हैं?
1: बहुत रेयर केस में होता है कि बच्चे को मिल्क की एलर्जी हो, तो बच्चा मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता हो, तो उन केसेस में माँ बच्चे को उल्टी हो सकती है और माँ फिर ब्रेस्ट फीड ना कराए, बट बहुत रेयर होता है। मोस्टली ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नेचुरल फूड कहलाया जाता है, बच्चा आराम से डाइजेस्ट कर लेता है उसको, बट उल्टी क्यों हो रही है उसके फिर जांच करवानी चाहिए बच्चे की, किसी और कारण से तो नहीं हो रही, या कोई पोजिशन खराब तो नहीं है कि बच्चा तुरंत दूध पी के लेट गया उसके मारे उसका उल्टी हो रहा है, तो वो सब चीजों पर ध्यान देना होगा।
0: जी मैम, आपने पोजीशन की बात करी तो हमें याद आ गया कि जब भी बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसके बाद उसे पीठ पर थपथपाते हैं, और जब डकार आ जाए उसे तभी लिटाते हैं। और हाँ, इतना मुझे भी पता है कि बच्चे को कभी भी लेटे लेटे दूध नहीं पिलाना चाहिए, और कई बार ऐसा होता है दूध पिलाने की पोजिशन नहीं सही होती है, बच्चे का मुंह प्रॉपर नहीं खुल पा रहा है या नाक बंद है तो भी बच्चा उल्टी कर देता है, तो दूध पलट देता है, जिसे हम गलत समझने लगे लगते हैं, है ना? तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मैम, अगर किसी कारणों की वजह से, कोई ऐसा खास कारण है जो बताया नहीं जा सकता है और माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
1: मतलब बिल्कुल ही नहीं पिला पा रहे तो आप फॉर्मूला मिल्क फिर देंगे बच्चे को, बट वो एक सेकेंड ऑप्शन ही है, पहला ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट चॉइस नहीं है। पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है कि सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, और जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद रूमिंग इन बोलते हैं कि 24 घंटे माँ और बच्चे को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, तो माँ धीमे धीमे ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देती है, तो जैसे डिलीवरी हुआ है उसके कुछ चंद घंटों में ही शुरू कर देना चाहिए, तो उससे बॉन्डिंग भी बढ़ती है माँ बच्चे की, इमोशनल बॉन्डिंग भी, ग्रोथ भी अच्छी होती है, और माँ को स्तनपान के बारे में सब बताया भी जाता है। तो वो 6 महीना सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही होना चाहिए, 6 महीने के बाद अगले 6 महीने हम मिक्स करते रहते हैं कि धीमे धीमे डाल दिया आपने और चीजें पिलाना खाना को दिया, साथ में 50% ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रहा है, तो वैसे 1 साल तक पिलाना चाहिए, 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अगले 6 months मिक्स करके, फिर 1 साल के बाद लेडी छोड़ सकती है।
0: मैम, अच्छा, अक्सर देखा गया है कि कभी कभी बच्चा ही इंटरेस्ट नहीं लेता, मतलब छोटा जब होता है कई बार उसे माँ दूध पिलाती है, लोग कहते हैं दूध पिलाओ, अब दूध पिलाओ, और वो पीना ही नहीं चाहता है, मुंह में लगाता है और सोने लगते हैं या नहीं पीना चाहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे कि बच्चा इंटरेस्ट, रुचि नहीं दिखा रहा है दूध पीने में? अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो फिर क्या करें?

0: मतलब वो है बच्चे को आपको डिफरेंट पोजीशंस में ट्राई करना है कि बच्चा नहीं क्यों नहीं पी रहा है, कोई कारण तो नहीं, ऐसा तो है कि निपल अंदर धंसा है, बच्चे को निपल नहीं मिल पा रहा है, तो वो सब चीजों पे चेक करना है. और सफाई का भी ध्यान रखना है जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है उससे, तो वो सब चीजों का भी एक स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है.
1: तो जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं या जो नई नई माँ बनी हैं या माँ बनने वाली हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ध्यान दे, सुने, केवल माँ ही ना सुने, उनका परिवार, उनका पति, उनके बच्चे जो भी हैं, बड़े अगर हो चुके हैं, उनके परिवार वाले भी ये सारी बातें सुने, क्योंकि उनके लिए भी आगे अभी बातें हैं. क्योंकि बच्चे का ख्याल रखना केवल माँ के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है ना, पूरा परिवार उसका साथ देगा तो क्या बात है भाई. बच्चे की किलकारियां सभी को अच्छी लगती है ना, केवल एक माँ ही थोड़ी ना चाहती है. तो आपको थोड़ा सा काम भी करना है, थोड़ा सा पेन भी लेना है ना. अच्छा मैम, ये जिनके बच्चे बड़े हो गए और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे को केवल अपना ही दूध देना है, उन्होंने उसे बोतल वाला दूध देना शुरू कर दिया, बोतल बना के देने लगे, उनके लिए क्या खतरा हो सकता है?
0: मतलब उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो सकती है, क्योंकि ये ना ब्रेस्ट मिल्क जो है फर्स्ट वैक्सीन है, आप उस तरह से मान लीजिए. तो वैक्सीनेशन आपका हुआ है तो फिर आप काफी स्ट्रांग रहते हैं, उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं. अगर उसने बॉटल का मिल्क पिया है तो फिर फ्यूचर में उसको एलर्जीज हैं, ब्रीदिंग की अस्थमा, ये सब जो है इन्फेक्शन है लंग के, जरा सा खांसी जुकाम हुआ, इन्फेक्शन लग गया, तो इम्यूनिटी लो होती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे बच्चे, वो ग्रोथ डेवलपमेंट में हो सकता है हाइट कम हो जाए, तो वो है कि बहुत एपरेंट नहीं होता लेकिन डिफरेंस तो होता है. इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें.
1: आई ना बात समझ में? अभी तो इतनी ही समझी है आप लोगों ने, अभी और भी बातें समझना बाकी हैं. हाँ, हमारी जो वर्किंग लेडी हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम संभालें. कई बार वो बच्चे को जन्म देने के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसे जिसको जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं या कुछ उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें काम पर जाना पड़ता है. तो वो कैसे मैनेज करती हैं अपने बच्चे को कि कैसे दूध पिला सके, तो इन सारी चीजों के बारे में भी हमें अभी प्रोफेसर रमाकांत, पूजा रमाकांत मैम बताएंगी. लेकिन उससे पहले ये छोटा सा गाना आप तक.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 12:38 और 40 सेकंड का वक्त, और अब बारी है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की। जी हाँ, जिसका उत्तर प्रोफेसर पूजा रमाकांत मैम देने वाली हैं। जो वर्किंग लेडी हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, वो स्तनपान को कैसे मैनेज करें, कैसे अपने बच्चे को प्रॉपर फीड करा सकें।
1: ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आज के ज़माने में हर महिला को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो सपोर्ट सिस्टम पब्लिक का हो, और जहाँ पे वो जॉब करती हैं वहाँ पे हो, उन्हें पब्लिक प्लेस में वो ट्रैवल कर रही हैं तो भी हो, हर जगह ब्रेस्ट फीडिंग के रूम्स बने हो तो उस तरह से उन्हें हेल्प मिल सकता है। अगर वो जॉब कर रही हैं तो वो अपना ब्रेस्ट फीड बच्चे को साथ में लाती हैं तो बच्चे को वो फीड करा सकती हैं। वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी हैं, मॉल में गई हैं इसका सामान लेने के लिए, मार्केट में गई हैं, ब्रेस्ट फीडिंग रूम अगर बना है, साफ सुथरे हैं, तो वो आराम से करा सकती है, उन्हें कोई झिझक नहीं होगा, तो वो अपना सब काम भी कर पाएंगी, ब्रेस्ट फीडिंग भी साथ में करा पाएंगी। दूसरा एक और तरीका होता है कि वो ब्रेस्ट मिल्क निकाल के अपना फ्रिज में रख सकती हैं। तो ये कहते हैं रूल ऑफ थ्री, 3-3-3, 3 घंटा अगर हम बाहर रखते हैं, ऐसे ही दूध रखते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो 3 घंटे तक आप दूध प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसे ही फिर 3 घंटे तक बच्चे को पिला सकते हैं। तो वो अपना चली भी जाएं तो वो बॉटल में जो दूध निकाला है एक्सप्रेस करके, वो दूध बच्चे को पिला सकते हैं। 3 घंटा रूम टेम्परेचर पे, 3 दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हैं, 3 महीने तक आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो लेडी मिल्क एक्सप्रेस करके भी, मिल्क स्टोर करके भी बच्चे को पिला सकते हैं, दूसरा ये भी तरीका है। तो लेडीज को पता नहीं होता है ये बात, तो उन्हें लगता है हम जॉब पे जा रहे हैं वो फिर नहीं पिला पा रहे हैं, तो वो दूध निकाल के फ्रिज में रख के चले जाएं, तो वो 3 दिन तक है तो वो उस दिन का तो हो ही गया उनका, कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो भी वो दूध बच्चे को मिला हुआ है जितना निकल सकता है। तो ये काम वो एक्सप्रेशन मिल्क का ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स में भी कर सके, भिजवा सकते हैं घर, ये भी कर सकते हैं।
0: तो आप लोगों ने जाना ना 3-3-3 का रूल, यानी कि जो आपने अपना मिल्क निकाल के रखा है 3 घंटे तक ऐसे ही रूम टेम्परेचर में रख कर बच्चे को दिया जा सकता है, और नहीं तो 3 घंटे तक आप उसे उसमें स्टोर कर सकती हैं फ्रिज में, नहीं फिर भी आपको बाहर जाना है तो 3 दिन के लिए फ्रीजर में कर स्टोर करना है। लेकिन हाँ, जो भी आपने फ्रिज में रखा है या फ्रीजर में रखा है, जब आप वो मिल्क निकालती हैं तो ऐसा नहीं कि आपको उसे बॉयल करना है या ऐसे देना है। जब आप उसे निकाल कर बाहर रखेंगे, जब दूध नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब उसके बाद आपको एज इट इज बच्चे को दे देना है। अच्छा, अब आगे हम जानेंगे, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। तो स्तनपान के दौरान एक माँ का जो आहार है, खान पान है, वो कैसा होना चाहिए, उस पर क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी पूजा रमाकांत मैम बता रही हैं।
1: आपने ये अच्छा सवाल पूछा शालिनी जी, क्योंकि माँ के लिए जरूरी ये बात समझना है कि उसका दूध भी निकल रहा है तो उसके शरीर से कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो माँ को अपने खाने में ऐसे पदार्थ खाने हैं जिसमें कैल्शियम हो, जैसे दूध के बनी हुई सब चीजें हैं, खुद भी माँ ले दूध, दही, मट्ठा, चीज, किसी भी फॉर्म में पनीर है, जिस भी फॉर्म में दूध ले, एक्स्ट्रा

0: दूध लें, ज्यादा लें जरूरत से ज्यादा, फिर पालक है, जो हरी सब्जियां हैं वो सब ज्यादा खाएं जिसमें कि कैल्शियम ज्यादा है, तो वो अपना डाइट भी ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, अंकुरित चने हैं, ये सब चीजें ज्यादा खाएं जिससे कि वो शरीर में मजबूत रहें, तभी दूध भी अच्छा बनेगा और जो दूध लॉस हो रहा है वो उनका रिप्लेस भी होता जाएगा अच्छे डाइट से।
1: ये तो रही खान पान की बात। मामा, अगर परहेज की बात की जाए तो किन बातों का परहेज करना है, यानी कि यदि माँ बीमार हो गई है या वो कोई किसी प्रकार की दवा ले रही है, क्या उस समय वो बच्चे को स्तनपान ना कराए, और अगर कराए तो कब कराए, इसके बारे में भी जरा बताएं।
0: माँ को बुखार है या कोई ऐसी दवा नहीं खा रही है जो कि बच्चे को नुकसान कर सकती है तो करा सकती है, लेकिन जैसे माँ को अगर टीबी है या माँ को ब्रेस्ट कैंसर है, कोई वैसे दवा है खाना पड़ रहा है जो बच्चे को नुकसान कर सकती है, या कोई ऐसी एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं इन्फेक्शन में जो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, तो फिर नहीं कराए। कुछ दवाएं हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं लेनी चाहिए, तो वो डॉक्टर से एक बार संपर्क करके कि बाई चांस बुखार है तो कोई बुखार की दवा खा रही है, पैरास्टामोल खा रही है, तो एक बार राय ले लें कि ये नुकसान तो नहीं करेगी, क्योंकि जो भी दवा वो खाएंगी वो दूध से नली से निकल के बच्चे में जाएगा, तो कुछ दवाएं नुकसान करती हैं तो फिर उसको मना किया जाता है कि अगर ये दवा आप खा रहे हैं तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराइए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ऐसे ही कोई दवा अपने आप नहीं लेना है, डॉक्टर को बताना है कि हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, जिससे कि डॉक्टर डिसाइड कर ले कौन सी दवा देना है कौन सी नहीं देना है।
1: मैम, कई बार देखा गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके 1 महीने के या तो उसके तुरंत बाद, जो माँ के स्तन में मिल्क बनता है, दूध बनता है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, बच्चा प्रॉपर पी नहीं पाता है, या माँ को पता नहीं होता है कि बच्चा पूरी तरह से दूध हमारा पी पा रहा है, और जो दूध है वो माँ के स्तन में ही रह जाता है, तो इससे भी क्या कुछ कोई खतरा हो सकता है?
0: आपने ये अच्छा सवाल पूछा शालिनी जी, क्योंकि इससे बस खतरा ही होता है कि दूध इकट्ठा होता है तो वो अंदर इन्फेक्शन कर सकता है, तो इसको हम ब्रेस्ट एप्सेस बोलते हैं। बहुत कॉमन सी बीमारी है, स्पेशली पहली प्रेगनेंसी में जो लेडी को नहीं पता होता है, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि हमें दर्द हो रहा है जब बच्चा दूध पी रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है शुरुआत में, तो वो पिलाना छोड़ देती है, तो छोड़ देंगी तो दूध तो बनता रहेगा, वो बन के अंदर इन्फेक्शन कर जाएगा, तो कई बार एप्सेस होता है तो वो पक जाता है, ऐसे मवाद बन गया उस टाइप से हो गया, तो फिर वो हमारे पास आती है, बुखार आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, खाल लाल हो गई, तो हम देखते हैं कि अंदर दूध भरा हुआ है, तो हमको फिर वो सुई से दूध निकालना पड़ता है, उनका एस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है, और अगर खाल खराब हो गई, खाल भी फट गई, तो फिर हमें ऑपरेशन करके सफाई करनी पड़ती है, तो वो चीज ध्यान रखना है कि दूध इकट्ठा ना हो, या तो वो दूध निकालें एक्सप्रेस करें या बच्चा दूध पिए, और दूध नहीं पिला पा रही है किसी कारण से या एक्सप्रेस नहीं कर रही है तो दूध इकट्ठा ना हो, फिर वो डॉक्टर से संपर्क करें जिससे कि हम वो दवा लिखें कि दूध रुके, दूध बनने की प्रतिक्रिया को हम रोकें वो दवा से, तो वो चीज है कि दूध फिर इकट्ठा नहीं होगा, एप्सेस बन सकता है जिसे इन्फेक्शन बोलते हैं, दूसरा दूध आपस में इकट्ठा होके जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वैसे इकट्ठा होके राउंड सा हो जाता है, तो उसको गैलेक्टोसील बोलते हैं, तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा जैसे लगेगा बॉल की तरह, उन्हें गांठ महसूस होगी, तो फिर वो दूध की ही गांठ होती है, दूध इकट्ठा होके जम जाता है, तो वो होता सादा है क्योंकि मिल्क ही है, लेकिन फिर वो हमें निकालना पड़ता है।
1: मैम, जैसे कि आपने कहा कि गांठ बन जाती है, और जब स्तन में गांठ पड़ जाती है तो सभी लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि अगर स्तन में कोई गांठ है तो वह आगे चलकर कैंसर बन सकती है। इसके बारे में भी जरा हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि वो परेशान ना हो।
0: इसमें ये गैलेक्टोसील है या ब्रेस्ट एप्सेस है, ये खुद में नहीं कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये है कि उसका कोई अगर कैंसर का गांठ डेवलप हो गया ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ही, तो वो चेक कराना जरूरी है कि वो गांठ कौन सा गांठ है, तो वो है एफएनएसी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, हम फिर जांच करके कंफर्म करेंगे कि वो सादा गांठ है या कैंसर का गांठ है, और फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं वो भी सादा गांठ होता है, वो भी ब्रेस्ट
1: जी
0: फीडिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए कोई भी गांठ बन रहा है तो वो एक बार चेक करा के चेक कर लें कि कौन सा गांठ है, उसके हिसाब से वो है, लेकिन एज सच गैलेक्टोसील है या फाइब्रोडिनोमा है या एप्सेस है, खुद कैंसर में फ्यूचर में परिवर्तन नहीं होता है, वो
1: जी
0: बस शॉर्ट टर्म उसी वक्त परेशान करते हैं जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, लेकिन भविष्य में नहीं होता है।
1: तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, अगर स्तन में गांठ हो गई है जिस दौरान आप स्तनपान करा रहे हैं तो चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन हाँ उसे ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना है, कुशल चिकित्सक से आपको सलाह लेनी है। मैम, समाज में स्तनपान को लेके तमाम सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों के बारे में बताएं और उनको दूर कैसे करें इसके बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताएं।

वो बहुत से मेंथ है, कई बार लेडीज को लगता है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो हमारे ब्रेस्ट ढीले पड़ जाएंगे, लटक जाएंगे और हमारा कैल्शियम लॉस हो जाएगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगी, तो उस तरह से ये सब मिथ है। और उनको लगता है जब ऑल्टरनेटिव है मार्केट में तो हम क्यों नहीं वो मिल्क देते हैं। फॉर्मूला मिल्क में लिखा होता है इतना प्रोटीन, इतना कैल्शियम, इतना कार्बोहाइड्रेट, सब चीजें लिखी है। उनको लगता है ये सब चीजें में भी तो ताकत है ही, तो हम ये दे दें बच्चे को। तो वो अपना जॉब जल्दी ज्वाइन कर लेती हैं, 6 महीने के पहले ही ज्वाइन कर लेती हैं, तो वो नहीं करती। तो ये मिथ है कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क और वो बिल्कुल बराबर है, बराबर नहीं है, ये फैक्ट है। ये नेचुरल फूड है, वो एक आर्टिफिशियल फूड है जो मार्केट में है, वो डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। तो ये बात लेडीज को समझना है कि ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए तो अच्छा है ही, उनको भी कैंसर से बचाता है, ब्रेस्ट कैंसर से।

0: बच्चे को, तो वो अपना जॉब जल्दी ज्वाइन कर लेती हैं, 6 महीने के पहले ही ज्वाइन कर लेती हैं, तो वो नहीं करती। तो ये मिथ है कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क का वो बिल्कुल बराबर है, बराबर नहीं है, ये फैक्ट है। ये नेचुरल फूड है, वो एक आर्टिफिशियल फूड है जो मार्केट में है, वो डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। तो ये बात लेडीज को समझना है कि ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए तो अच्छा है ही, उनको भी कैंसर से बचाता है, ब्रेस्ट कैंसर से होती हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को होने दें और ये अच्छा है दोनों के लिए।
1: बहुत अच्छे से मैम ने ये बात को
0: हैं उन लोगों को ये इंश्योर करना है कि लेडी को एक सेफ एटमॉस्फेयर मिले, कंफर्टेबल कमरा मिले, कि वो बच्चे को जब चाहे जहां चाहे ब्रेस्ट फीड करा सके, और साफ सुथरा हो, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है बहुत इजीली, मदर को इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, उन्हीं दूध की नली खुली हुई है, उन्हीं से इन्फेक्शन अंदर चला गया, तो वो सब ध्यान रखना है। महिला को बार बार ब्रेस्ट फीड कराते वक्त हाथ धोने हैं, निपल को साफ करना है, तो वो सब सुविधाएं उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक घर में एक या दो कमरे हैं तो उसमें चार लोग बैठे हुए हैं, अब चार लोग बैठे हैं वो लेडी कैसे ब्रेस्ट फीड कराए, वो दूसरे कमरे में कोई और बैठा हुआ है, तो वो सब मेल मेंबर्स को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, एक्स्ट्रा केयरिंग होना है, कि हम ध्यान रखें कि अगर बच्चा रो रहा है, भूख लगी है, उसको दूध पिलाना है, तो महिला को एक सेफ एनवायरमेंट मिले, जगह मिले कि वो ये काम ब्रेस्ट फीड करा पाए। तो यही सेम चीज अगर महिला ट्रैवल कर रही है तो पब्लिक प्लेस पे भी सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए कि उन्हें ये प्लेस मिले कि वो कर पाए। अब आप देखते होंगे बहुत से रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हमारा मेडिकल कॉलेज में ही ओपीडीज में आप कमरे बन गए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पॉड्स भी बोलते हैं उनको, पीडियाट्रिक्स विभाग है, क्वीन मैरी है, पीडियाट्रिक्स में जब बच्चे दिखाने आती हैं महिलाएं अपने बच्चों को, बीमारी है कोई है तो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रेस्ट फीड कराना है, वेटिंग टाइम में रूम्स बने हैं, तो अब जाके इतनी जागरूकता हुई है कि गवर्नमेंट ने सब बनाया है, तो ये सब चीजें हेल्प करती है कि लेडी अपने बच्चे के साथ में बाहर है, क्वीन मैरी है, पीडियाट्रिक्स में जब बच्चे दिखाने आती है महिलाएं अपने बच्चों को, बीमारी है कोई है तो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रेस्ट फीड कराना है, वेटिंग टाइम में रूम्स बने हैं, तो अब जाके इतनी जागरूकता हुई है कि गवर्नमेंट ने सब बनाया है, तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं कि लेडी अपने बच्चे के साथ में बाहर निकल सके। तो लेकिन घर पे भी ये सब एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि अगर वो दिन में थकी है, सो रही है, तो हमें वो भी हेल्प करना है कि उसको डिस्टर्ब ना हो, हम उस चीज की रिस्पेक्ट करें कि भाई वो सो रही है, क्योंकि वो रात भर नहीं सो पा रही है, बच्चे को हर 1 घंटे पर 2 घंटे पर दूध पिला रही है, ये क्या है ना, घड़ी की तरह नहीं है बच्चे की हैबिट की हर 4 घंटे पर बच्चा दूध पिएगा, जब उसे भूख लग जाएगी वो उठ जाएगा, तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो लेडी का अपना शेड्यूल भी फिक्स नहीं हो पाता है, तो ये लेडी फिर उसमें परेशान हो जाती है, मेंटली परेशान हो जाती है अगर उन्हें हम सपोर्ट सिस्टम घर पे नहीं देंगे, तो ये फैमिली मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हेल्प करें उस दौरान उनकी।
1: तो दोस्तों समझ में आया ना कि माँ के अलावा बाकी लोगों की क्या जिम्मेदारी है। जैसा कि मैम ने बताया कि स्तनपान के लिए जब पहली बार माँ बनते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें जागरूक किया जाता है, तो इसमें एक डॉक्टर का, एक नर्स का, या जो मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग होती हैं, आशा बहुएं हैं, नम दीदी हैं, सभी लोगों का क्या रोल होता है, वो कैसे जागरूक करते हैं, इनको बताते हैं, ये मैम बताने वाली हैं।
0: हाँ, वो डॉक्टर्स भी बताते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी बताती हैं, फिर जो नर्सेस होती हैं वार्ड में जब डिलीवरी हुआ है वो भी बताती हैं, तो जैसे आशा वर्कर्स हैं गांव में वो लोग भी बताते हैं, समझाते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या केयर करना है, किन पोजीशंस में करना है, कब करना है, कितना फ्रीक्वेंटली करना है, क्या ध्यान रखना है, सफाई कैसे रखें, हर चीज का वो सारा सिखाया जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि बच्चा हुआ हम मान लें कि लेडी को पता है, किसी को भी नहीं पता होता है, हर किसी के लिए वो पहली बार होता है, तो वो हर कोई समझता है, सीखता है, जब आप सीख जाते हो तब आप करने लगते हो सही तरीके से, नहीं सिखाएगा कोई तो फिर आप गलत तरीके से करोगे तो फिर लेडी भी परेशान हो जाती है, वो गलत तरीके से करेंगी दूध होगा तो दर्द उनका बढ़ जाएगा, तो वो भी उनको परेशान करेगा, तो ये डिलीवरी के टाइम पे स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट सिखाती हैं, और ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि लेडी सीख सके सही तरीके से, तो वो हॉस्पिटल लेवल पे सिखाया जाता है।
1: मैम जैसा आपने बताया कि इस क्षेत्र में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, और आपने बताए भी क्या क्या हर जगह अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रूम बना दिए गए हैं, जगह प्रोवाइड की गई है, इसके अलावा और क्या चीजें हैं?
0: हाँ, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इस पे कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ओपीडीज में भी हो रहा है, आप लोग रेडियो के माध्यम से जनता को बता रहे हैं, तो उस तरह से सरकार बहुत से करती है, न्यूज़पेपर्स पे आएंगे लोग इसके बारे में बात करेंगे, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग अपना सवाल रखते हैं, मत रखते हैं, तो हम समझते हैं कि भाई उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको हल किया जाए, तो गवर्नमेंट बहुत से काम कर रही है, कि सरकार को रियलाइज हुआ कि लोग धीमे धीमे ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है हम तुरंत जॉब

0: ज्वाइन कर लें, एक महीने के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो जॉब तो हमेशा ही चलता है, काम तो कभी खत्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है। बट आपने एक महीने बाद ज्वाइन कर लिया तो बच्चे का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो चला गया, तो 6 महीना तो हमें देना ही है। पहले सिर्फ 3 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता था, तो सरकार ने चेंज करके उसको 6 महीना किया, क्योंकि 6 महीना तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। और कई बार लेडीज 6 महीने बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाती, क्योंकि लगता है बच्चा बहुत छोटा है अभी, तो वो 1 साल 2 साल का ब्रेक लेती हैं। तो उस ब्रेक को भी सरकार अब एनकरेज कर रही है, वो डिस्करेज नहीं कर रही। नहीं तो लोग पहले बोलते थे आपने जॉब छोड़ दिया 1-2 साल, आपका ब्रेक हो गया, आपको नेक्स्ट जॉब नहीं मिलेगा। तो अब लेकिन गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, कोई बोलता है कि हमने 2 साल ब्रेक लिया ब्रेस्ट फीडिंग का, तो फिर वो उसको डिस्करेज नहीं करते, वो उसको रिस्पेक्टफुली मानते हैं, उसको नेक्स्ट जॉब फिर से मिल जाता है। और ऐसी सरकार ने पैटर्निटी लीव मेल्स के लिए, फादर्स के लिए भी बनाई है, तो फादर्स भी 2 हफ्ते का लीव ले सकते हैं जब बच्चा हुआ है। तो अब वो भी एनकरेज कर रही है कि सिर्फ मदर का ही काम नहीं है बच्चे को बड़ा करना, फादर का भी उतना ही रोल है। तो आप सोचिए बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना अच्छा होगा और बॉन्ड कितना अच्छा होगा पेरेंट के साथ में। वो चीज को भी सरकार अब समझ रही है और उसको एम्फेसाइज कर रही है कि यंग मदर्स को हमें हेल्प करना है।
1: वैसे क्या कहा गया है कि जब सबका साथ होता है तो काम आसान हो जाता है। और 12:54:19 हो चले हैं मैम, और बस अब इस प्रोग्राम को करना होगा वाइंड अप। लेकिन इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले जो हमारी नई माताएं बनी हैं या बनने वाली हैं या जो प्लान कर रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी?
0: जो अभी अभी बनने वाली हैं वो अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये जो उनका फूड है, न्यूट्रिशन है, वही आगे चल के कैरी ऑन होगा। उनका मिल्क का कितना अच्छा क्वालिटी बनेगा वो उस पर डिपेंडेंट है। और जो बन गई हैं वो स्पेशली ध्यान रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें, और ब्रेस्ट फीडिंग का सफाई का ध्यान रखें कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, एब्सेस ना बने, और अपने स्तन को भी देखते रहें, कोई गांठ का रूप ना बने, खाल खराब ना हो, दर्द अधिक से ज्यादा ना हो, वो सब उन्हें भी ध्यान रखना है। तो अपनी हेल्थ भी ध्यान रखनी है, बच्चे का भी हेल्थ का ध्यान रखना है, और स्पेशली कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम लॉस हो रहा है उनके ब्लड से, मिल्क से, और साथ में एक्सप्रेस करना भी वो सीखें कि जिससे कि वो दूध बच्चे के लिए यूज हो पाए, उसको सेव रख पी पाए।
1: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें बहुत ही सरल शब्दों के साथ आपने हमें बताई, और हमारे श्रोता इन सारी बातों को गांठ बांध लेंगे। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू श्रोताओं, उम्मीद है आपको इससे मैसेज से फायदा हुआ होगा, धन्यवाद।
1: और दोस्तों इसी के साथ तो शालिनी बस इतना ही कहेगी, जो भ्रांतियां थी, जो आपके अंदर की मिद बाताएं बहुत सारी बातें थी, खासकर जो दादी नानी लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं भैया देखो ये पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं पिलाना है, तो समय बदल गया है, आपका जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है, तब पता नहीं था ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये पहली दवा है बच्चे के लिए, पहला टीका माना जाता है, तो ये जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो सबसे बड़ी है दादी और नानी की, कि जैसे ही बच्चा जन्म ले माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के पेट तक जाए। और आप ये मत सोचिए वो बहुत ज्यादा निकलेगा, जितना भी निकल रहा है उतना बच्चे के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। तो बस इसके अलावा माँ को, पिता को, बहन को, भाई को, और भी जो परिवार के लोग होते हैं, नंद हैं, सास हैं, जिठानी हैं, देवरानी, सबको मिलकर जब बच्चा एक परिवार में आता है ना, उसकी किलकारियां सबके कानों तक जाती हैं और सबका दिल खुश होता है, उसी तरह से उसका ख्याल भी रखना है। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ और होगी बात। अब ये गाना आप सबके लिए।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से कहा कि यह सत्र हमारे लिए
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और लीजिए सुनिए अब कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में हमारे पास खत आया है जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का। अगला खत भेजने वाले हैं सुंदरखेड़ा राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश। ये खत हमें भेजा है आदर्श नगर मलोट कैंप से सतीश मेघलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मेघलानी ने। अगला खत है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का। और ये खत हमारे पास है पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम, महरुम निशा, उड़ला जागीर से फजरुद्दीन, अबरार अफजाल और राम प्रसाद शर्मा। आप सबको हम सुनवा रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत। स्वर लता मंगेशकर का है। गीत को लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा ने।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम, यह है 100.4 FM। कार्यक्रम में यह खत हमें भेजा है राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा शर्मा, रीता, विनोद, वंश, अनंत और कनिष्का ने। ये छाबनी अशरफ खां होली चौक के पास बरेली से हमें खत भेजते हैं। अगला खत हमारे पास आया है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का। अगला खत हमें भेजा है हरौदा से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। ये खत भेजा है हमें कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय का खत है। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय गीत सुनना चाहते हैं। अगला खत हमें भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय धिंगिया, नमन धिंगिया और अपार धिंगिया ने। आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का गीत, स्वर मुकेश और लता मंगेशकर का।

पाटिल, रजदीर, राजदीप, राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने ये खत भेजा है हमें कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से। प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय का खत है शेरपुर कला गाजीपुर से। अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय गीत सुनना चाहते हैं। अगला खत हमें भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने। आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का गीत, स्वर मुकेश और लता मंगेशकर का।

आप हैं 100.4 FM के साथ और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत का। अनुरोध गीत कार्यक्रम में एक खत आया है हमारे पास मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद शाह मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ और शादाब खत्री का। ये खत भेजने वाले हैं मसरूफ खान सरफराज खान विकास सक्सेना करमवीर रावत प्रवीण रावत अनिल सागर और भरत यादव और दीपक। महादेव घाट अमलेश्वर से ये खत आया है रोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश सूरज सुजाता ज्योति रियांश और गुड़िया का। अगला खत हमें भेजा है गढ़िया बरेली से कैसर शमसी अजीम शमसी सलीम शमसी नवेद शमसी और रजिया शमसी ने। ये खत भेजने वाले हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमल अनेजा। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट विजनौर से खत आया है मोहम्मद वक्कार फरीदी इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी और हिना कौसर का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने गीत सुनना चाहा है। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के।

से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान और इल्मा खान का। ये खत छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेगी से भेजा है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। अगला खत हमारे पास आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। तो ये खत हमें भेजा है सरगुजा मैनपाट से सोनिया, सोनम, रेशम, अदिबा थापा ने। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन का खत है। और बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन लोन, सरफुद्दीन और कुमारी वली और कुमारी डब्बू का खत है। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्ला आसमा बेलदार ने खत भेजा है। ये खत हमारे पास है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम और रिफाकत हुसैन का। प्रेम कमल वार्षणेय, सुशीला, प्रभात, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेदिरचा और ऐश्वर्या का खत आया है वजीरगंज जिला बदायूं से। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवाई देते हैं मेहरबान फिल्म का गीत, स्वर अनुराधा पौडवाल का है।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। और कार्यक्रम में ये ख़त हमारे पास है। इस ख़त को भेजने वाले हैं कुमार, रेडियो क्लब, सिद्धार्थ नगर रोड नंबर 6 से, इज्जत नगर बरेली से, राजेश श्रीवास्तव, गोलू, मोनिका, अनुराग और राजेश, बिलराम गेट, कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुन्निशा बेगम, अक्रम सैफी, आबाद खान ने ये ख़त हमें भेजा है। ये ख़त भेजने वाले हैं कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश मौर्य, क्रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, एरोही, खुशबू और स्वाति मौर्य।

अगला खत है हमारे पास सारिमपुर बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, फातमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी का और इंदिरा बिहार दिल्ली से बेबी अंसारी ने हमें ख़त भेजा है। तो आप सबको हम सुनवा दे रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब है।

अनुरोध गीत कार्यक्रम। अगला खत है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां का, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। यह खत है गढ़िया बरेली से केशर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी, रजिया शमसी का। और ये खत हमें भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका, अनिष्का और तन्मय ने। ये खत हम तक पहुंचा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नाजमा बेगम और रेहान का। ये खत भेजने वाले हैं पीर बहोड़ा से आजाद खान दिल।

अनुरोध गीत कार्यक्रम। अगला खत है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां का, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। यह खत है गढ़िया बरेली से केशर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी, रजिया शमसी का। और ये खत हमें भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका, अनिष्का और तन्मय ने। ये खत हम तक पहुंचा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नाजमा बेगम और रेहान का। ये खत भेजने वाले हैं पीर बहोड़ा से आजाद खान दिल।

अनुरोध गीत कार्यक्रम में यह खत है हमारे पास, इसे भेजने वाले हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, शुभचंद, बिट्टा बजाज, साहिल। ये खत है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का। आपने सुनना चाहा है तलत महमूद और लता मंगेशकर के स्वर में प्यार की प्यास फिल्म का गीत।

ये खत है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का। आपने सुनना चाहा है तलत महमूद और लता मंगेशकर के स्वर में प्यार की प्यास फिल्म का गीत।

कार्यक्रम अनुरोध गीत में यह खत हमारे पास आया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का। यह खत दूसरा भेजा है वारिस अली खान, शहनाज खान और सलीम अहमद ने ऐशबाग लखनऊ से। तो आप लोगों को हम सुनवा रहे हैं दिल दे के देखो फिल्म का गीत, स्वर मोहम्मद रफ़ी और साथियों का।

और कार्यक्रम में ये खत हमारे पास है अंशु चुग, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लब और राधे ढींगिया का। अगला खत है भटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित का। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा दे रहे हैं ये प्यारा सा गीत। स्वर है लता मंगेशकर और साथियों का।

और कार्यक्रम में ये खत हमारे पास है अंशु चुग, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लब और राधे ढींगिया का। अगला खत है भटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित का। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा दे रहे हैं ये प्यारा सा गीत। स्वर है लता मंगेशकर और साथियों का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे करक्यूम अनुरोध गीत श्रृंगार चक्र पाठक के साथ, और इस समय अब अपराह्न के 2 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको करक्यूम रसरंग, और सुनवाते हैं आपको ये भजन।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और सुनवाते हैं आपको अब ये गीत। एल्बम का नाम है वादा, स्वर है साधना सरगम का।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि अब हमारे दो कार्यक्रम जो मुख्य हैं, जैसे कि मनभावन और लगेथिरी, अब इन कार्यक्रम को आप पत्रों के अलावा सीधे आप अपना संदेश या अपने लगेथिरी के जो गाने हैं, वो गाने क्यों पसंद हैं आपको, एक मैसेज टाइप कीजिए

बता दें कि अब हमारे दो कार्यक्रम जो मुख्य हैं, जैसे कि मन भावन और लगी, अब इन कार्यक्रम को आप पत्रों के अलावा सीधे आप अपना संदेश या अपने लगी के जो गाने हैं, वो गाने क्यों पसंद है आपको, एक मैसेज टाइप कीजिए और सीधे भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि आकाशवाणी वैली का व्हाट्सएप नंबर है, 9457395859 पर। और मनभावन के लिए अगर आपको भेजना है तो आप लिखिए मनभावन और कोई अच्छा संदेश, कोई अच्छी कहानी, कोई प्रेरणा, कोई ऐसी संदेश जो समाज को प्रेरित करे, वो लिख के भेज दीजिए और उसके जैसा गीत, उसी कमेंट्स के या उसी जो जो आपका संदेश है उसके जैसा ही कोई गीत चुन के लिख दीजिए और डाल दीजिए मन भावन, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457395859 पर भेज दें। ये कार्यक्रमों का समय है, जो कार्यक्रम लगे थे वो हर शुक्रवार शाम 5:30 से शाम 5:45 तक आप सुनते हैं, और कार्यक्रम मनभावन का हर रविवार शाम 5:30 से 5:45 तक ये कार्यक्रम रहता है। तो आप अब पत्र न डालकर आप सीधे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने लगते के गीत और कार्यक्रम मनभावन में सीधे आप जुड़िए। नंबर है 9457395859 पर। तो ये नंबर आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमारे कार्यक्रम से जुड़िए इसके माध्यम से।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। हम आपको याद दिलवा दें श्रोताओं, अब कार्यक्रम लकी थ्री और मनभावन आपका पत्र मिला, ये कार्यक्रम सीधे तौर पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457395859 पर, इनमें जो भी प्रतिक्रियाएं आपकी हैं आप इनसे जुड़ेंगे तो आप सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने चिट्ठी पत्री सीधे तौर पर आप भेज सकते हैं। और कार्यक्रम लगे तरीके जो समय है और जो दिन है वो शुक्रवार शाम 5:30 से, और जो कार्यक्रम मनभावन है उसका समय है हर रविवार शाम 5:30 से। तो आप अपने कार्यक्रम मनभावन के लिए शब्दावली लिखकर भेज सकते हैं हमें, और जो कार्यक्रम लगी थ्री उसके लिए गीत हमें लिख के भेज सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457395859 पर। जी हाँ, नंबर लिख लें भाई, 9457395859 पर, और इसे नंबर को सेव कर लें, AIR व्हाट्सएप नंबर बरेली है ना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये भोजपुरी लोकगीत, स्वर था शारदा सिन्हा का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। अपराह्न के 2:30 होने को है। अब हम आपको जोड़ रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एस डी बर्मन का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: 了呀！啊啊啊！
1: 嗨！一个आवाज जो आप सभी के ज़हन में ताज़ा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहरा।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

0: तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में,
0: जी
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
0: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही है, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना?
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज अशिक्षित हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं,
1: हाँ,
0: और इस दूध में जो जैसा आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
1: हाँ
0: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, एक नवजात शिशु के लिए।
1: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
0: हम बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
1: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है, उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है। और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद भी होता है और पतला होता है। और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए, यानी उसके विकास के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें होती हैं।
0: बिल्कुल। और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता है,
1: हाँ,
0: उसको कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है,
1: बिल्कुल।
0: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो
1: हाँ,
0: जाते हैं,
1: बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं वो।
0: जी। और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी हैं और उनके पास परिवार को उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
1: तो चलिए अब गीत सुन लेते हैं।

0: इतने बड़े जहां मैं तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है,
0: हाँ
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, ये सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा,
1: जी
0: और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे
0: हाँ
1: सोच
0: बिल्कुल
1: जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है, और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए

0: कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीज़ों की जब कमियाँ आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित कर हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव

0: किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
2: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
3: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
4: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
3: अब हम उसे कटवा लेना,
4: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
2: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
4: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
2: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
3: इस बुढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है, चलो तो मेरे साथ देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
4: जी,
3: ये क्या बात है?
4: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
3: पर हम तो इसे कटवाए बिना ना मानेंगे।
4: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा ले, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने ना दूंगा।
3: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।

0: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
1: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेट बच गया।
2: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
3: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
2: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
0: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
3: क्या बात है मनोहर सिंह?
2: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
3: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
0: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
2: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
1: चाचा मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
3: क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ लाओ रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं, अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
2: ठाकुर साहब इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
3: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
0: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
1: ठाकुर साहब ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
0: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
4: ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
0: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है, इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था, वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
2: तेजा बेटा इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं, मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं, तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और

0: उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। ये बेचारे हैं क्या चीज?
1: अशिक्षित कार हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
2: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है। तो इनका इंतज़ार आज पूरा हो गया।
3: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज़, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल?
2: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है, कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
3: बिल्कुल।
2: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीज़ों को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय
3: है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन, क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
2: और
4: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। लीजिए अब प्रस्तुत कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
0: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
0: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी

0: इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
1: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
0: जी,
1: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
0: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
1: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं की बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
0: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
1: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
0: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा
0: जी। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ, मेरी...

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

0: देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
3: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
0: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
3: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
2: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे पिसन।
3: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
0: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
3: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
0: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
3: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
0: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती

0: तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग ना होता।
1: अपनी सत्यनिष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
0: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
2: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
2: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
2: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
0: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षर।

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई।

0: 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।
1: कहते हैं अलविदा हम अब इस

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है, परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: आपका नाम?
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम NCERT। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। शाम के 4 बज चुके हैं और अब आप सभी को इंतजार होगा आप सभी के चाहते कार्यक्रम, जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: इससे
1: शाम के 4 बज चुके
0: हमारे
1: हैं
0: लोग
1: और
0: जो
1: कार्यक्रम इनका
0: पहला
1: हाजिर हो गया। इसका
0: पीला
1: नाम है
0: गाना
1: आपकी
0: बजा रहा
1: बात
0: है
1: आकाशवाणी के
0: उसको
1: साथ, और आज
0: कॉलोसम भी
1: कार्यक्रम
0: बोलते
1: में
0: हैं।
1: हमारी और आपकी जो बातचीत है उसका विषय है, क्या बेटी की शादी में लाखों खर्च से बेहतर है उसके भविष्य के लिए निवेश करना। तो इस विषय पर देखते हैं सबसे पहले हमसे कौन जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे कौन से दोस्त बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी सर नमस्ते, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं। सर
1: कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हमारा विषय आपको मालूम है?
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो इस विषय पर क्या विचार है आपके?
2: मेरा विचार ये है कि बेटी के लिए लाखों खर्च करना वो ठीक नहीं रहेगा, मतलब बेटी के लिए भविष्य करना वो ठीक रहेगा। जैसे बैंड बाजा उसमें करोगे आप तो वो ना करें, सीधे जो है बेटी के खाते में पैसा डाल दें।
1: मतलब आपके अनुसार जो फिजूल खर्ची है शादी बारात में उसको ना करके अगर आप चाहें तो अपने बेटी के खाते में डाल दें पैसा, है ना? ठीक है, ये आपके विचार थे, धन्यवाद आपका। कहिए कार्यक्रम में गीत की बारी है तो कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
2: जी सर आज गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम
1: जी,
2: और गाने के बोल हैं दिल पर ये वाला सॉन्ग है
1: जी। बहुत ही अच्छा गीत आपने चुना है, धन्यवाद। हम भेज रहे हैं आपकी पसंद वाली गीत, एंजॉय कीजिए।
2: थैंक यू सो मच,
1: स्वागत।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि अब आप अपने कार्यक्रम लकी थ्री और मनोभावन के लिए सीधे हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9457395858 और 59 पर। आप अपने जो भी आपका गीत मनपसंद है या आपके जो विचार हैं, तो अपनी जो शब्दावली है वो लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457395

0: श्रोताओं, देखते हैं इस कार्यक्रम में अब हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से बोल रहा हूँ भाई।
0: जी बहुत शुक्रिया आपका नाम बताने के लिए हमारा। और कैसे सब परिवार में हैं आपके?
1: बहुत बढ़िया है परिवार में, क्योंकि हम लोग रेडियो सुनते हैं तो रेडियो पे आपकी आवाज जब आती है तो पता चल जाता है कि हमें किसकी आवाज है। और क्योंकि ज्यादातर आकाशवाणी बरेली को हम सुनते हैं तो आवाजों से हमारा बहुत अच्छा नाता हो गया है, और जिसकी भी आवाज होती है तो तुफान पहचान लेते हैं कि आवाज किसकी है।
0: हमारी जो आपकी बचत का जो विषय है वो मालूम है आपको? बताएं
1: जी, बता दीजिए।
0: आज का विषय है, क्या बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है उसके भविष्य के लिए निवेश करना या जमा करना? क्या विचार है आपके इस विषय पर?
1: बहुत बढ़िया विचार है, क्योंकि आज के जमाने में सर शादियां बहुत महंगी हो गई हैं,
0: जी।
1: और जिनके पास बहुत सारा रुपया है, बहुत सारा पैसा है, वो तो बहुत धूमधाम से शादी भी कर देते हैं, बहुत सारा खर्च कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनकी बेटियां बेचारी घरों में बैठी हुई है, इसलिए उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है। तो बेहतर तो यही है कि उनकी शादियां एक लिमिट में कर दी जाए, और जितना पैसा फजूल खर्ची में जा रहा है, जो हम बहुत सारा दान दहेज दे रहे हैं उसको ना दे कर सके, उसके भविष्य के लिए एक ऐसी करा दी जाए, और ताकि मतलब आने वाले वक्त में उनके लिए वो पैसा काम आए और वो कहीं भी अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, अपना काम में ले सकते हैं। क्योंकि हम फजूल खर्ची करते हैं तो वो हमारा बेकार में ही चला जाता है, और तो हमारा पैसा भी खराब हो जाता है, और उससे हमें कुछ हासिल भी नहीं होता है। ये जरूर हो जाता है कि थोड़ी सी मतलब वाहवाही हो जाती है, लेकिन वाहवाही से काम नहीं चलता है। जहाँ पैसे का काम होता है वहाँ पैसे से ही काम चलेगा सर।
0: बहुत अच्छे विचार रहे आपके कार्यक्रम में। अब गीत की बारी है, तो कहिए गीत कौन सा हो जाए इस कार्यक्रम में आपके लिए?
1: सुनवा दीजिए आज, क्योंकि इस समय बारिश भी हो रही है और मैं समझता हूँ अब मौसम ठंडा है।
0: जी
1: गीत फिल्म आई थी जीना सिर्फ मेरे लिए, इसका एक गाना है, ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, ये भी सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर, ये गीत एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में स्वागत है। देखते हैं हमारे साथ आप कौन जुड़ चुकी हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी, मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी बोल रही हूँ।
0: कार्यक्रम में आपकी और हमारी जो बातचीत है उसका विषय क्या है मालूम है आपको? तो क्या विचार रहेंगे आपके इस विषय पर?
1: जी, हमारे विचार तो यही रहेंगे सर, जैसे लड़कियों की शादी करते हैं तो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो जैसे इतना नहीं करें, जरूरत के हिसाब से जैसे खर्च करें और बाकी पैसा जैसे जमा कर दें, जो बाद में मतलब जरूरत पड़े तो लड़की को ही दे दें, उसके खाते में डाल दें, अपने लड़कों को जरूरत पड़ रही है उसे दे दें। जैसे बेफजूल खर्चा बहुत सारा करते हैं लोग, वो नहीं करना चाहिए, जो जरूरत से चीज है वो ही देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के जमाने में शादियां बहुत महंगी हो ही रही हैं, तो ऐसे में
1: और फिर खाना भी बहुत
0: महंगा हो गया है।
1: महंगा हो गया है और ज्यादा से ज्यादा बनवा लेते हैं, फिर वो बाद में फेंकते हैं, तो उतना ही बनवाएं जितने जैसे मेहमान आते हैं।
0: और खाने में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो उससे ही बचत होगी, तो जितना लिमिटेड लोग हों बेहतर है। बिल्कुल धन्यवाद आपका विचार हमने जाना। अब गीत की बारी है, तो कहिए कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवा दें आप?
1: जी सर, मैं सुनूंगी, फिल्म का नाम है एक रिश्ता और गाने के बोल हैं, तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है मेरा दिल, ये गाना मैं अपनी बहन तराना के साथ सुनूंगी।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत। एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, देखते हैं आप कौन साथी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
1: जी, कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को और सर जी आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं ग्राम गोपी खरी

0: जी कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत दूर से आप बात कर रहे हैं और आपको
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जो हमारी और आपकी जो बातचीत है उसका विषय मालूम है आपको?
1: जी सर।
0: विषय है क्या बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है उसके भविष्य के लिए निवेश करना, तो क्या विचार है आपके इस विषय पर?
1: जी इसके बारे में हमारे यही विचार है सर जी। विषय पहली बात तो विषय आपका बहुत अच्छा है
0: जी,
1: और इसके लिए मैं बरेली आकाशवाणी के बहुत धन्यवाद देता हूँ
0: जी।
1: इसके बारे में मेरे विचार यही रहेंगे कि बिजुल खर्ची से बेहतर है कि अपनी लड़की के लिए कुछ भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कुछ पूंजी निवेश कर देना अच्छा रहेगा
0: जी।
1: जी बिजुल खर्ची होती है उस पर काफी हद तक हमें कंट्रोल करना चाहिए।
0: यानी कि आप मानते हैं जो तू या फिजूल खर्ची होती है वो बेवजह है,
1: अकाउंट में जमा कर दिया जाए तो भविष्य में वो उसके काम आ सकते हैं, और फिजूल खर्ची पर तो लगाम लगाना ही चाहिए हर एक समाज को, हर एक शादी में।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने विचार दिया अपना इस विषय पर। कार्यक्रम में गीत की बारी है, गीत कौन सा हो जाए इस कार्यक्रम में आपके लिए?
1: सर जी मुझे सुना दीजिए, इसी उपलक्ष्य में एक गाना है, हाँ मैंने भी प्यार किया। गाने के बोल भी हमारे कुछ इसी तरीके से रहेंगे
0: जी। बताएं,
1: मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, कुछ इस तरीके के इस फिल्म के बोल।
0: बिल्कुल, तो सुनिए ये गीत दतिया मध्य प्रदेश में।
1: जी सर, आपने हमारा कॉल अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
0: स्वागत आपका हमेशा रहेगा।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में देखते हैं। आप कौन से साथी हमारे यहाँ से जुड़ चुके हैं? हेलो
1: हेलो
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे दोस्त इस कार्यक्रम में?
1: जी, मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहे हैं सर।
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपकी। हमारी आज की जो बातचीत है उसका विषय मालूम है आपको?
1: जी सर।
0: तो क्या विचार रहेंगे आपके उस विषय पर?
1: जी सर, मेरे विचार ये हैं कि बच्चियों की शादी में कम से कम पैसे खर्चा हो
0: जी
1: और उनके भविष्य के लिए पैसे का निवेश करना बहुत जरूरी है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए।
0: उनके बुरे वक्त के लिए।
1: जी जी बिल्कुल। और जहां तक तो होना चाहिए तो कम, जितने कम पैसे में हो जाए वही सही रहता सर।
0: सोच है, अपने अपने विचार हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कम खर्चे होंगे तो बेहतर है, और जो बची हुई राशि है वो अगर जमा कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा उनके भविष्य के लिए।
1: जी, उनके बच्चों के भविष्य के लिए ही काफी अच्छा रहेगा आने
0: जी
1: वाले कल में।
0: तो आसिफ जी, आपने अपने विचार दिए, धन्यवाद आपका। कहिए, इस कार्यक्रम में गीत हम सुनवाने जा रहे हैं, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: एक है सावन का सॉन्ग है
0: सावन का,
1: जी,
0: कौन सा?
1: सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। जी एक्चुअली सर, हम रहने वाले बाराबंकी जिले के हैं, उत्तर प्रदेश।
0: बहुत धन्यवाद आपका। और
1: न्यूज ऑन AIRF पे आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग कार्यक्रम सुनते रहिए, ये हमारी कामना है। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कार्यक्रम सुनते रहें, और हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत, एंजॉय कीजिए।

0: श्रोताओं, देखते कार्यक्रम में अब कौन से साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं हमारे श्रोता?
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। टेक चंद अग्रवाल बोल रहा हूँ सर, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: अग्रवाल जी, आपकी जो आवाज है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा बोल रहे हैं आप।
1: इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से।
0: जी शुक्रिया। और कार्यक्रम में जो हमारी और आपकी जो बातचीत का जो विषय है वो, उसके बारे में क्या विचार है आपके?
1: देखिए सर, मैं तो एक सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी।
1: और उसमें भी 6 साल ऊपर हो गए हैं। तो सर, मेरा अपना एक विचार है कि सर, आज का जो समय है वो सर क्या आय से ज्यादा हमारा खर्च हो गया है।
0: बिल्कुल
1: तो इन सब चीजों को देखते हुए सर, हमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा।
0: जरूर।
1: क्योंकि सर, हम अगर आज बच्चों के पीछे जो पैसा हम खर्च करते हैं, तो सर आज हम जो स्थिति देख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद भी जो है उन लोग को रोजगार हम नहीं दिलवा पा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो रोजगार जब नहीं मिल रहा है सर, तो जो पैसा हम शादी में या कहीं कोई कार्यक्रम में जो खर्च करते हैं, अगर उन्हीं पैसों को सर उन बच्चों में लगाया जाए
0: बिल्कुल
1: तो सर भविष्य उनका उज्जवल हो सकता है।
0: सही कहा आपने। आज के जमाने में महंगाई तो है ही, जितनी कमाई नहीं है उससे अधिक खर्चे हैं, है ना?
1: खर्चे हैं सर।
0: तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और
1: हम देख रहे हैं सर कि आज एक घर में आज अगर पांच पांच मोबाइल चला रहे हैं तो पांचों के व्यक्ति का रिचार्ज करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, पांच
1: एक
0: भाई हैं
1: मोबाइल
0: तो
1: से किसी का काम नहीं चलता।
0: जी बिल्कुल सही बात है आपने। अगर पांच भाई भी हैं तो पांच बाइक्स हैं, पांच कार्स
1: तो
0: हैं,
1: सर पांचों भाइयों के
0: पांच।
1: पास बाइक है सर, तो पांचों भाई पेट्रोल फूक रहे हैं। कोई साधन कोई एक व्यक्ति है घर का, या तो बड़ा बुजुर्ग कोई कर रहा है या कोई सीनियर व्यक्ति कर रहा है,
0: बिल्कुल
1: बाकी उसके कमाई पर पूरे लोग डिपेंड है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से जो रहते हैं कि मतलब सर बचत बहुत जरूरी है, और वो बचत का अगर सदुपयोग कर रहे हैं तो इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बच्चों को भविष्य को देखते हुए सर, ये जो चीजें हैं इस पे थोड़ा सा रोक लगना चाहिए। और ये सब चीजें सर हम ही आगे बढ़ के करेंगे, समाज नहीं आएगा या कहीं कुछ को नहीं आने वाला है। क्योंकि जिनके पास पैसा सर वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो मजबूर व्यक्ति रहते हैं वो दिखावे में चले जाते हैं।
0: तो बहुत अच्छे आपने विचार दिए। कार्यक्रम में अब गीत की बारी है।
1: सर मोहम्मद रफी साहब के गाना था रखवाला फिल्म का
0: जी, कौन सा?
1: दिल ने दिल से जाने क्या कहा।
0: ठीक है, तो अग्रवाल साहब हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक गीत, एंजॉय कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। अब तक हम सुन रहे थे आपको ये कॉल रिकॉर्ड्स। अब बहुत सारे साथी ने हमारे कमेंट्स किए हैं इस कार्यक्रम में, तो देखते हैं कौन कौन से साथी जिन्होंने हमें लिखा है इस विषय पर। आप हैं साथी हमारे ग्राम पोस्ट गोठा खंडुआ से राम बाबू मिश्रा व साथ में हैं कृष्णा देवी। आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार। बिल्कुल अति उत्तम विचार हैं आपके। आज का ये चलन हो गया है कि फिजूल खर्ची का एक पुरानी कहावत है कि उतने पैर पसारिए जितनी चादर होए, और शादी का रिश्ता भी बराबर का होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी करो बर्बाद ही होगे। जी बिल्कुल, आपका संदेश हमें मिल चुका है और धन्यवाद हमें कमेंट करने के लिए। आप हैं साथी हमारे हर हर

मटकली जिला बरेली से लिखने वाले हैं शाहरुख नूर अंसारी साहब। आप लिखते हैं कि मेरे ख्याल से बेटी की शादी हर माता पिता के जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन केवल दिखावे और सामाजिक दबाव में आकर लाखों रुपए खर्च करना हमेशा समझदारी नहीं होती है। यदि उसी धन का एक बड़ा हिस्सा बेटी की शिक्षा, करियर, घर, व्यवसाय या दीर्घकालिक निवेश में लगाया जाए तो वो उसके लिए भविष्य को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सकता है। बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। लिखते हैं आगे, आपकी सादगीपूर्ण विवाह और मजबूत आर्थिक आधार दोनों मिलकर बेटी को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने में हेल्प करते हैं। समाज की अपेक्षाओं से अधिक महत्वपूर्ण है बेटी का उज्जवल भविष्य, इसलिए शादी में अनावश्यक खर्च के बजाय सोच समझकर किया गया निवेश एक ऐसा उपहार है, इसका लाभ उसे ताउम्र की जीवन भर मिल सकता है। बहुत ही अच्छा लगा आपने शाहरुख अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें कमेंट करने के लिए। और ये लिख रहे हैं साथी हमारे कट्टा चांद खां पुराना शहर से, ये लिख रहे हैं कि शादी होती है तो इसलिए उनका मतलब ख्याल रखें और ये हमारा फर्ज है, इसलिए उनके फ्यूचर के बारे में भी हमें हमेशा सोचना चाहिए और उनका फ्यूचर स्ट्रांग करना चाहिए। आपका मतलब ये है कि बेटी आपने पढ़ाई है और लिखाई है, शादी से जब करते हैं तो जो खर्च है फिजूल उससे बचें और हमेशा उसका ख्याल रखें। सही बात है आपकी, निवेश करने में ज़्यादा फायदा रहेगा आपके हिसाब से। धन्यवाद आपका, हमें कमेंट किया आपने। और आप हैं जी के परमार साहब, लिख रहे हैं कि कहाँ से लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि गांधीनगर गुजरात से, कि बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करने के बजाय उस पैसे को उसके भविष्य के लिए निवेश करना एक बेहद समझदारी भरा और दूरदर्शी विचार है। वित्तीय विशेषज्ञों के और समाज के एक बड़े वर्ग के बीच इस विषय पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, या जहां शादी के दिखावे के बजाय बेटी की आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमें कमेंट करने के लिए। और आप हैं प्रवीण चौहान साहब, लिख रहे हैं कि बेटी को सुरक्षित भविष्य देना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, उसने शिक्षित बनाकर एक अच्छा भविष्य देना चाहिए। शादी में लाखों खर्चे करने से कहीं बेहतर है कि वित्त का सही निवेश करें, बचत करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बिटिया का उसके करियर में हेल्प करें। थैंक यू प्रवीण चौहान साहब। और आप हैं नरेंद्र नरवाड़े साहब, लिख रहे हैं कि बेटी की शादी में बेटी की सहमति हो तो फिजूल खर्चा करना सही नहीं है, वहीं पैसा बेटी के भविष्य के काम आए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। बेटी को एक जो सुकून मिलेगा उससे वो सदा खुश रहेगी। बहुत धन्यवाद नरेंद्र नरवाड़े साहब। आप हैं ये लिख रहे हैं कि मुकेश मौर्य लिख रहे हैं कि मेरी ये राय है कि लाखों रुपए शादी में खत्म करने की बजाय लड़की और लड़के के नाम में कर दिया जाए पैसा, ताकि उससे दहेज के नाम पर जो परेशान ना किया जाए और वो अपने बच्चों के भविष्य में लगा सके। और धन्यवाद आपका मुकेश मौर्य जी। आप हैं सुधाकर गायकवाड़ साहब, लिख रहे हैं कि बेटी की शादी में खर्च तो करना पड़ता ही है, बिना पैसे से शादी कैसे होगी, लेकिन दोनों परिवार आपस में मिलकर तय करें कि कम खर्च में शादी कैसे करें तो ये काफ़ी बेहतर अच्छा होगा। बहुत अच्छा लिखा आपने, सही बात है आपकी, अगर खर्च तो होता ही है लेकिन अगर आपस में तालमेल है तो ये खर्च जो है कम हो सकता है। थैंक यू। आप लिख रहे हैं कि न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर जी, धन्यवाद आपका। और ये हैं साथी हमारे विष्णु मिस्किन, उनका पूरा परिवार लिख रहा है, पता इनका है भवानी पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। आप लिख रहे हैं कि बेटी की शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन उसका उज्जवल भविष्य उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दिखावे पर खर्च करने के बजाय यदि धन का हिस्सा उसकी शिक्षा, कौशल, करियर या आर्थिक सुरक्षा के लिए निवेश किया जाए तो उसे जीवन भर आत्मविश्वास और संभल एक विश्वास देता है। शादी बनाए और मतलब कहना है कि इनका ये कि शादी में जो खर्चा है वो फिजूल ना करें और उसके बेहतर जीवन के लिए उसको उसका उसमें जो है निवेश कर दें। धन्यवाद आपका। और ये हैं साथी हमारे वारिस अली खान साहब, हम लिख रहे हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, कि आज के विषय में मुझे कहना है कि मेरी शादी जो शादी के बारे में, कि शादी जो है अपनी हैसियत के हिसाब से कभी खर्च ना करें। लोग आएंगे और खाकर चले जाएंगे और आप हो जाएंगे कर्जदार, ठीक है, इसलिए निवेश करें जिससे वो निवेश भविष्य में बेटी के काम आए। अर्थात आपका जो मतलब कहने का है वो ये है कि जो शादी में आप खर्चा करते हैं फिर वो ना करें, बल्कि उस पैसे का निवेश करते हैं जो बच्चे के लिए हमेशा ताउम्र काम आएगा। धन्यवाद आपका वारिस अली साहब। और ये हैं साथी हमारे
लिख रहे हैं आकाशवाणी।

बरेली के भाई बहनों को नमस्कार नमस्कार। बेटी शादी बिना मांग के की जाए, अपनी जितनी श्रद्धा हो उसके अनुसार, और वही खर्च करें। सभी लोग पैसे वाले नहीं होते हैं, कुछ लोग कर्जा लेकर बेटी का ब्याह करते हैं। तो मेरी राय है कि बिना मांग के, बिना जबरदस्ती के शादी की जाए वही बेहतर है। धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही बात है। शादी में खर्चा होता है और कर्ज ना किसी पे लदे, ये ऐसा विवाह करें, आपस में मिलजुल कर शादी करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप सभी ने इतने प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स दिए हैं, इतने अच्छे विचार दिए, सुझाव दिए हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम आपसे आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आपके ऐसे ही कमेंट्स आते रहेंगे। फिलहाल सुनवाने जा रहे हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आकाशवाणी के व्हाट्सएप नंबर पर 9457395859 पर सिर्फ लकी थ्री और मनभावन के ही पत्र या फरमाइश पत्र और अपने विचार भेजें। इसके अलावा इस नंबर पर कोई भी प्रतिक्रिया ना भेजें। यह फरमाइशी कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी फेसबुक पेज पर ही अपने कमेंट्स भेजें। जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली के व्हाट्सएप नंबर 9457395859 पर आप केवल लकी थ्री की कार्यक्रम की जो पसंद है या आपके जो मनभावन के कार्यक्रम हैं शब्द अपने आधारित, उस पर जो है वही कार्यक्रम इसमें भेजें आप, अन्यथा कोई भी फरमाइशी कार्यक्रम इस व्हाट्सएप नंबर पर ना भेजें।

0: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। लीजिए अब बता दें आपको हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित वारेली होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, आज शाम 5:05 सुरमैन करके मैं आपको भजन संध्या, इसमें आप आनंद लेंगे भजनों का। प्रोग्राम नारी संसार में आज शाम 5:30 पर चर्चा का विषय रहेगा स्तनपान सप्ताह और सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स, क्या हर सलाह सही होती है। साथ ही कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको वार्ता, विषय रहेगा घर का वातावरण एवं साफ सफाई, वार्ताकार होंगी सुनीता रानी। इसके अलावा ब्यूटी टिप्स भी, साथ ही ढेर सारा मनोरंजन तक आप तक पहुंचाएंगे। युवा कार्यक्रम में आज शाम 6 बजे आविदा लेकर आएंगी धूम धड़ाका। कार्यक्रम ग्रामजीत में आज शाम 6:30 पर चर्चा का

रहेगा गन्ना की फसल में सामयिक कार्य साथी शिक्षा का जीवन में महत्व, तो इस विषय पर अवधेश कुमार से की गई भेंट वार्ता हम सुन आप तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम अक्षय वट आज शाम 7 बजे से आप सुन सकते हैं। अनुरोध की कार्यक्रम आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम रहेगा आज शाम 7:31 पर। कल सुबह 8:15 पर कार्यक्रम नमस्ते बरेली हाजिर होंगे, जिसमें आप सुनेंगे बरेली की स्थानीय खबरें और मौसम, साथ ही साथ गीत संगीत लोकगीतों का आनंद ले पाएंगे आप कल सुबह 8:45 पर। प्रोग्राम आपकी पसंद कल सुबह 10 बजे से हम आप तक पहुंचाएंगे। सबरंग कार्यक्रम कल पूर्वाह्न 11:15 पर हम आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा कार्यक्रम झुमका गिरारे कल पूर्वाह्न 11:15 पर आप सुनेंगे नीतू त्रिपाठी के साथ। अनुरोध की कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे कल अपराह्न 1 बजे से। रसरंग कार्यक्रम का समय रहेगा कल अपराह्न 2 बजे से, इसमें आप सुनेंगे गजल, कव्वाली, लोकगीत और गीत। कार्यक्रम एनसीईआरटी कल शाम 3:30 पर हम आपको सुनवाएंगे। कल शाम 4 बजे समय रहेगा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। कार्यक्रम भजन संध्या कल शाम 5:05 पर आप तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम संसार में कल शाम 5:30 पर चर्चा का विषय रहेगा पहले 6 महीने केवल माँ का दूध। वार्ता भी आपको सुनवाएंगे, विषय रहेगा रिश्तों में भरोसा कायम रखें। वार्ताकार होंगी रूबी रानी। कार्यक्रम युवाणी में कल शाम 6 बजे नेहा सिंह लेकर आएंगी आपकी पसंद। कल शाम 6:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी में आज की बात होगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, साथ ही होगा हेलो किसान। इसके अलावा बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, नसीहत और लोकगीत भी आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम के माध्यम से। कल शाम 7 बजे कार्यक्रम ग्राम जगत में चर्चा होगी तंबाकू का सेवन ना करें, साथ ही वार्ता सुनिएगा, विषय रहेगा महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं। वार्ताकार होंगी श्रीमती अभिलाषा। इसके अलावा लोकगीत भी आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। और कार्यक्रम अनुरोध गीत कल शाम 7:31 पर हम आपको पहुंचाएंगे। तो श्रोताओं, ये जानकारी थी हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित हुआ रैली होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भजन संध्या।

श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय रहेगा वायरल फीवर शंकाएं एवं आधुनिक उपचार। जी हाँ, विषय रहेगा वायरल फीवर शंकाएं एवं आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग करके हम कल मंगलवार यानी कि 4 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे

वायरल फीवर, शंकाएं एवं आधुनिक उपचार, रिकॉर्डिंग करके हम कल मंगलवार यानी कि 4 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार फिर से, विषय रहेगा वायरल फीवर, शंकाएं एवं आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय हम आपको याद दिलवा दें, मंगलवार यानी कल दिनांक 4 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर है हमारा 0581251700। तो हमें कल शाम 4 बजे फोन कीजिएगा। स्टूडियो में रहेंगे बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक। विषय रहेगा वायरल फीवर, शंकाएं एवं आधुनिक उपचार। तो ये थी सूचना रेडियो हेल्पलाइन की। अब सुनवाते हैं आपको ये भजन स्वर है अंडर द पॉट वाल का।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भजन संध्या आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। सुनवाते हैं आपको ये भजन, सुर है अनुपम गुलवाड़ी और तृप्ति शाके का।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। सुनवाते हैं आपको ये भजन, स्वर है साधना सरगम का।
1: चाहे कोई भी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया और शाम के 5:30 होने को हैं और स्टूडियो में आ चुकी हैं प्रियंका श्रीवास्तव जी कार्यक्रम लेकर नारी संसार। तो बिल्कुल कहीं में जाइएगा, आप सुनवाते हैं कार्यक्रम आपको नारी संसार।

नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रोग्राम नारी संसार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं और सखियों सहेलियों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका, 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सखियों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार का दिन भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव जी की कृपा पाने और मनोकामनाएं पूरी करने और 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। सखियों, भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, दूध, सफ़ेद चंदन और मौसमी फल, गंगाजल, शहद अत्यंत प्रिय हैं। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर शिव मंदिर या अपने घर पर ही शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाता है और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी किया जाता है। सखियों, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उस तरह से पूजा करता है, उपवास रखता है। जो व्रत नहीं रख पाता है वो सिर्फ पूजा करता है, जल अभिषेक आदि भी कर सकता है। सखियों, सावन का पहला सोमवार भगवान शिव के प्रति भक्तों की आस्था और तपस्या का प्रतीक है, जिसे संकल्प दिवस भी माना जाता है। सखियों, इस महीने में कांवड़ का विशेष महत्व है। कांवड़ियों के लिए पहला सोमवार महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पूरे सावन धार्मिक ऊर्जा का संचार होता है और मन में सुख शांति की अनुभूति होती है। आइए हम भी शिव भक्ति में डूब जाते हैं और मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।

0: सखियों, जब कोई त्यौहार आता है तो हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, सजाते हैं घर को और फिर त्यौहार को मनाते हैं। जब हमारा घर साफ सुथरा होता है तब घर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी विषय पर आपको सुनवाते हैं ये वार्ता, घर का वातावरण एवं साफ सफाई। वार्ताकार हैं सुनीता रानी, आइए सुनते हैं।
1: घर में स्वच्छता का वातावरण रखना बहुत आवश्यक है। अगर हमारा घर साफ सुथरा रहेगा तो घर में मच्छर, मक्खी और हानिकारक कीटाणु नहीं पनपेंगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और साथ ही हमारा कार्य भी अच्छे से होगा। आप अपने घर में स्वच्छता रखने के लिए एक योजना बना सकते हैं, जिसके लिए कमरे दर कमरे की सफाई कर सकते हैं और इस योजना पर हमें रोज कार्य करने की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो उसकी आप सहायता से भी धूल को कमरे से हटा सकते हैं। अब जो मौसम है ऐसे में धूल ही ज्यादा

उसको हम गीला पोछा लगाकर भी साफ कर सकते हैं। घर और प्रत्येक दिन की स्वच्छता में विशेष रूप से हाथ धोना, रसोई की साफ सफाई, बाथरूम की स्वच्छता, कपड़े धोने की स्वच्छता और घर पर भोजन की स्वच्छता शामिल है। घर के बाहर नाली है, उसकी स्वच्छता को भी हमें बनाकर रखना होगा, नहीं तो नाली के माध्यम से मच्छरों के पनपने का खतरा बना रहता है। एक साफ और स्वच्छ घर दिखने में ही आकर्षक नहीं होता, ये एक स्वस्थ और आरामदायक जगह की नींव रखता है। अपने घर की साफ सफाई करना केवल एक काम नहीं है, ये अपनी सेहत और जीवन की गुणवत्ता में एक निवेश है। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से लेकर तनाव कम करने और मानसिक संतोष को बढ़ावा देने, घर की साफ सफाई कई तरह के लाभ मिलते हैं। एक साफ सुथरा घर और वातावरण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और गंदगी, तनाव व चिंता की भावना को जन्म देती है, जिससे आराम करना और तनाव मुक्त होना मुश्किल हो जाता है। घर की सफाई सुरक्षित रहने के माहौल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित रूप से फर्श की सफाई करना और फिसलन वाली जगहों जैसे खतरों को दूर करना और चोट लगने के नुकसान को कम करता है। अगर हम घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखेंगे तो हमें आवश्यक वस्तुएं भी आसानी से मिल जाती हैं। एक साथ साफ सुथरा और सुव्यवस्थित घर अपने उसमें रहने वाले लोगों के लिए गर्व और संतुष्टि का खजाना होता है। ये मेहमानों और आने जाने वालों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। साफ सुथरे आवास अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं, लेकिन स्वस्थ घरेलू वातावरण क्या होता है? एक स्वस्थ घर वह होता है जो कि सूखा, साफ और सुरक्षित हो। एक स्वस्थ घर कीटों के प्रभाव से और प्रदूषणों के संपर्क को कम करने में मदद करता है। कीटों के संक्रमण के लिए अनुचित उपचार स्वस्थ समस्याओं को बढ़ा सकता है। घर में ताजी हवा की आपूर्ति को बढ़ाने से सांस संबंधी स्वास्थ्य में सुधार होता है। खराब रखरखाव वाले घरों में नमी और कीटाणुओं का खतरा बना रहता है। घर में साफ सफाई का वातावरण रखने के लिए सबसे पहले कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ और सूखा रखने से घर के चारों ओर गंदगी कम होगी। घर में रखे पेड़ पौधों की नियमित रूप से सफाई करें और उनमें पानी दें, इससे आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा। घर में सफाई की शुरुआत अपने घर में लगे पंखों और खिड़की दरवाजों से करना चाहिए। खिड़की दरवाजों की धूल हटाना बहुत ही जरूरी है। घर की सफाई भी कई तरीकों से होती है, जैसे कि रोज की सफाई, सप्ताह में होने वाली सफाई, महीने दो महीने में होने वाली सफाई और इसके अलावा पूरे साल में होने वाली सफाई। घर में सफाई के अंतर्गत जैसे फर्श की सफाई, फर्नीचर की सफाई, पोछा लगाना, सजावट वाली वस्तुओं को पोंछना, घर में लगे टाइल्स को साफ करना, बाथरूम और टॉयलेट को अच्छे से और नियमित रूप से साफ रखना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा कीटाणु बाथरूम और टॉयलेट में ही पनपते हैं। घर के अंदर बनी नालियों की सफाई करके रोग मुक्त करना, क्योंकि गंदी नाली के कारण ही सबसे ज्यादा मच्छर पनपते हैं। उसके बाद साफ किए गए स्थानों को पुनः ठीक करना और सभी वस्तुओं को यथा स्थान पर लगाना। घर में रखी सभी अनुपयोगी वस्तुओं को हमें हटा देना चाहिए जो कि आपके घर को गंदा दिखने की जिम्मेदार हैं। सबसे पहले घर के अंदर उन चीजों की सफाई करें जो कि कम से कम कुछ हफ्तों तक साफ रहें। इसके बाद अलमारी और बेड को व्यवस्थित करें। घर में स्वच्छता का वातावरण रखना बहुत जरूरी है। घर में यदि हम साफ सफाई रखेंगे तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा और हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। घर के अंदर हमारे कपड़े जहाँ के तहाँ पड़े होते हैं, उनको भी सही तरीके से रखें। अलमारी के अंदर बिछाए हुए अखबारों को समय समय पर बदलते रहें। जो कपड़े हमारे काम के नहीं है उनको किसी को दान कर दें। अपने घर की सफाई जैसे रजाई, गद्दे, कंबल को धूप जरूर दिखाएं। उन्हें धूप में रखने से उनके अंदर पनपे कीटाणु मर जाएंगे। रसोई घर में साफ सफाई का अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे खाने वाले भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों को संक्रमण से बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी तरह से रसोई घर के बर्तनों को साफ करके ही इस्तेमाल करें। रसोई घर में लगे टाइल्स को साबुन से साफ करते रहें। सिंक में बर्तन

ना रहें जिससे गंदगी फैलती है। ऐसे में सिंक को भी साफ करते रहें। बर्तनों को धोने के लिए अच्छे कूचे का इस्तेमाल करें। कई बार हम लोग पन्नी से साफ करते हैं, ऐसा करने से बचें। घर में रखे फ्रिज को भी नियमित साफ करना जरूरी होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिजली का प्लग निकालकर सूखे कपड़े से साफ करें। बच्चों को किताबों कॉपी की रैक को भी समय समय पर साफ करते रहें। इसके अलावा आप तकिए पर्दे सोफा कवर चादरों और कपड़ों को धोकर और सुखाकर इस्तेमाल करें। इस तरह इन सब कार्यों का एक साथ न करके अलग अलग दिन सफाई की योजना बना के कार्य करना चाहिए। इस तरह से हम घर में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सफाई करके घर को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम अपने घर को नियमित रूप से सफाई करेंगे तो घर साफ रहेगा और हम भिया तरल सफाई साधनों का प्रयोग करके कॉकरोच बैक्टीरिया से सुरक्षा कर सकते हैं। बेड में ऐसी वस्तु न रखें जिससे उसका रोज इस्तेमाल हो। ऐसे में बार बार बेड खोलने और बंद करने से बेड भी जल्दी खराब होगा और उसमें गंदगी भी चली जाएगी। स्वच्छता सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। साफ सफाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्वच्छता से हमें जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। हमारे देश के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन में स्वच्छता भी बहुत जरूरत है। यदि हम रोजाना अपने घर को साफ रखेंगे, अपने शरीर को साफ रखेंगे, अपने दांतों की सफाई रखेंगे, नाखून सही समय से काटेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को भी शुरू से ही घर की साफ सफाई और स्वयं की साफ सफाई के प्रति बताते चलें। जागरूक करना घर में साफ सफाई के लिए घर के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य बनता है कि यदि हम घर और आसपास की सफाई रखेंगे तो हमारा जीवन खुशमय होगा।

0: सखियों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का अपना महत्व है। हर रिश्ता अपने आप में ज़रूरी है और हर रिश्ते की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जो सबसे बड़ा है दुनिया में, जिसकी बराबरी हम किसी और भी रिश्ते से नहीं कर सकते। वो रिश्ता है माँ का। जी हाँ, इसी विषय पर हम और भी बातें करेंगे। आपको मिलवाते हैं श्रीमती याचना जी से, जो एक आशा हैं। आइए इनसे बात करते हैं।
1: आपका नाम?
2: मेरा नाम याचना है, मैं आशा हूँ।
1: याचना जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। याचना जी, आप एक आशा वर्कर हैं, आपका क्या वर्क रहता है?
2: जी, हमारा फील्ड वर्क भी रहता है और जो सेशन होते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसे टीकाकरण भी कहते हैं,
1: अच्छा,
2: वहाँ भी हमारा काम रहता है। मान लीजिए किसी एरिया में कोई फैमिली ऐसी है जो बच्चे को टीका नहीं लगवाती है, तो उसको कन्वेंस करना पड़ता है, थोड़ा सा ये समझाना पड़ता है कि ये टीके क्यों जरूरी हैं,
1: जी,
2: बच्चे की ग्रोथ के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए,
1: जिससे भविष्य में कोई बीमारी ना हो। बहुत अच्छा वर्क है याचना जी आपका। याचना जी, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है स्तनपान सप्ताह। तो आप हमारी सखियों को बताइए कि शिशु के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है।
2: देखिए, ये जो शिशु होते हैं, ऐसे मान लीजिए जो जब ये माँ के गर्भ में होते हैं, तब तो ये इनको नाल, जो माँ के पेट में जो नाल होता है उसके द्वारा ये अपना आहार ग्रहण कर लेते हैं।
1: जी जी,
2: ऐसे मान लीजिए जब ये बाहर आ जाते हैं तो इनको उन चीजों की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए ग्रोथ के लिए, तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसको जो माँ का दूध होता है, 6 महीने तक ना बच्चे को पानी दिया जाता है
1: जी,
2: ना ही किसी और चीज की जरूरत होती है, उनके लिए माँ का दूध ही पर्याप्त होता है।
1: जी जी,
2: इससे माँ के दूध जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं
1: जी,
2: तो वो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो याचना जी, आप ये बताइए कि बच्चे के जन्म के कितनी देर बाद माँ का दूध पिलाना जरूरी होता है?
2: जन्म के तुरंत बाद हम माँ का दूध दे सकते हैं।
1: अच्छा, आप जैसे जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो तो चलो तुरंत पिला सकती है, जिसका सिजेरियन हुआ है तो वो तो उस वक्त उसकी ये कंडीशन नहीं होती है कि वो बच्चे को करवट लेके दूध पिला सके, तो वो किस तरह से मैनेज करेगी इस चीज के लिए?
2: जी, तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए सीजरेन भी है तो वो पिला सकती है बच्चे को दूध, वो नहीं पिला सकती तो हेल्प से बच्चे को माँ के ऊपर लिटा करके दूध पिलाया जा सकता है ना। लेकिन जो बच्चे अभी ऐसा होता है तो उसको, बच्चे को आप जैसे लिटाएंगे माँ के ऊपर तो बच्चा थोड़ा सा खुद कोशिश करेगा, थोड़ा प्रेस करके पिलाइए, लेकिन पहला पीला गाढ़ा दूध माँ का जरूर पिलाना चाहिए, जिसको हम खीस भी कह सकते हैं।
1: जी
2: हाँ, और देखो इस दूध को अगर माँ 6 महीने तक शिशु को पिलाती है तो इससे PPH वो भी नॉर्मल रहता है।
1: मतलब स्तनपान बच्चे के साथ साथ माँ के लिए भी बहुत फायदेमंद
2: के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और कुछ लोग सोचते हैं
1: कि अगर वो दूध पिलाएंगी तो उनका शरीर कमजोर हो जाएगा और वो मतलब देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी और उनका फिगर बेकार हो जाएगा, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी?
2: उनसे हम यही कहना चाहेंगे, ये स्तनपान बच्चे के साथ साथ माँ के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी,
2: ये ऐसे मान लीजिए इस माँ के दूध में कैल्शियम जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, और बच्चे को दूध पिलाने से पहले अगर माँ 1 गिलास दूध खुद पिए या रात को सोते टाइम 1 गिलास माँ को जरूर दूध लेना चाहिए। अगर हम बच्चे को ये चाहते हैं कि सारे प्रोटीन विटामिन बच्चे को मिले, तो बच्चे को ऊपर की

0: कोई चीज मत दीजिए, पानी भी मत दीजिए,
1: जी
0: केवल माँ का दूध ही उसके लिए सब कुछ है।
1: अमृत के समान
0: फिर मैं और बताना चाहूंगी सखियों को,
1: जी जी बताइए।
0: एक चीज आपने देखा होगा कॉमन है आजकल कि जैसे मान लीजिए फोन है,
1: जी
0: तो फोन तो आजकल तो हर किसी के हाथ में है,
1: सभी के पास है,
0: सभी के पास है, जो जॉब कर रही है वो भी, जो नहीं कर रही है, और आजकल काम भी है फोन का तो। लेकिन जब भी बच्चे को कोई भी महिला दूध पिलाने के लिए बैठती है तब उसको फोन नहीं चलाना है।
1: अच्छा
0: फर्क नहीं पड़ता। और बच्चे को जब भी दूध पिलाएं, कभी भी गुस्से में दूध ना पिलाएं।
1: अच्छा,
0: बच्चे को स्माइल करके प्यार से, बच्चे के हाथ मतलब सिर पे हाथ फिराएं प्यार से, तभी दूध पिलाएं। इससे बच्चे में ग्रोथ अच्छी होती है।
1: अच्छा
0: जी,
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई।
0: जी,
1: कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा माँ का मूड होगा वैसा ही असर
0: जी
1: बच्चे पर पड़ेगा, उसके
0: बच्चे
1: हेल्थ
0: पर
1: पे पड़ेगा।
0: पड़ेगा।
1: तो याचना जी, आप हमें ये बताइए कि बच्चे को जैसे डिब्बे वाला दूध भी दे देती हैं हमारी कुछ बहनें,
0: जी
1: और कुछ गाय बकरी का भी देती हैं, भैंस का भी दे देती हैं, तो ये कितना सही है? क्योंकि कुछ माँ ऐसी होती हैं जिसके दूध नहीं होता इतना कि बच्चे का पेट भर सके, तो उन्हें मजबूरी में देना पड़ता है, तो कितना सही है ये?
0: अगर किसी की ज्यादा मजबूरी है तो फिर तो देखो करना ही पड़ेगा। लेकिन अधिकतर ऐसा ही है कि बच्चा दूध अगर अपने मुंह से पिएगा जी, उतना ही ज्यादा दूध बनेगा।
1: सखियों को बताइए कि जो महिलाएं फीड कराती हैं बच्चे को, दूध पिलाती हैं, तो उनका खाना पीना किस तरह का होना चाहिए, क्या ऐसा खाएं वो?
0: जी, ऐसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि बच्चे को सारे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम ये सब कुछ मिले, तो इसके लिए माँ को संतुलित आहार लेना चाहिए।
1: जैसे क्या क्या?
0: जैसे हरी सब्जियाँ, दाल, चावल, रोटी, उन्हें सब कुछ खाना चाहिए। दूध, दही, इससे बच्चे को कैल्शियम भी मिलेगा, है ना? इन चीजों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो बच्चे को ये सारी चीजें भी मिलेंगी।

सखियों, आज हमने आपसे पूछा था सोशल मीडिया पर, जो हमारा सवाल था, भगवान शिव जी के गले में कौन सा नाग है और शिव जी का वाहन क्या है। इसका सही जवाब है बासुकी नाग, जो शिव जी अपने गले में धारण किए हुए हैं और उनका वाहन है नंदी जी। सही जवाब दिया है हमारे इन श्रोताओं ने। संजीव कुमार निकट झुमका चौराहा सीबीगंज बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी कपिल, बेदराम कैलाश, सुनील खुशबू, आरोही स्वातिबा, पूरा मौर्य परिवार पुराना शहर बरेली से, और प्रवीण चौहान, लाल मोहम्मद अंसारी और भवानी पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से, विष्णु टेलर, रितिका वाणी अरब, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर एमपी से मनकोबाई, निशा कुशवाहा, प्रियंका इशिका खुशी, निधि नारायण कुशवाहा, रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी और पूरा मिश्रा परिवार, और जमुना प्रसाद मौर्य और मुकेश कश्यप, और हमारे श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेल। आप सब श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, आपका धन्यवाद।

सखियों, अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। अपनी रेडियो दोस्त प्रियंका को दीजिए अनुमति। सखियों नमस्कार, हर हर महादेव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम युववाणी और आविदा आ चुके स्टूडियो में।

0: हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा लेकर आ चुकी हूँ आपको और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युवाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी बातें और सुनवाते हैं आपको कुछ खूबसूरत नगमे भी। और जैसा कि साथियों आपको पता है कि बारिश की बूंदों के साथ सावन अपने पूरे रंग में है, चारों तरफ हरियाली है, ठंडी हवाएं हैं और मिट्टी की सोंधी खुशबू मानो प्रकृति ने खुद को एक खूबसूरत रंग में रंग लिया हो। लेकिन साथियों सावन सिर्फ मौसम का नाम नहीं है बल्कि ये हमें प्रकृति के करीब आने का भी मौका देता है। इस मौसम में हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पानी को बेवजह बर्बाद ना करें और अपने आसपास साफ सफाई का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि जब हम प्रकृति का ख्याल रखते हैं, नेचर का ख्याल रखते हैं, तो नेचर भी हमें साफ हवा, हरियाली और खूबसूरत मौसम का तोहफा देती है। तो चलिए सावन एक छोटा सा संकल्प लें, एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं। इसी खूबसूरत सोच के साथ जुड़े रहिए अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन 100.4 FM आकाशवाणी के साथ और मैं हूं आपकी दोस्त आबिदा फातिमा। और आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो इस सुहाने मौसम का मजा और बढ़ा देगा। इंजॉय कीजिए।
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun!

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फ्रेंड्स, आप बने अपने दोस्त सेंट होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी। और आज का दिन हिंदी साहित्य के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं उस महान कवि को जिनकी कलम में राष्ट्र प्रेम था, जिनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति की झलक थी और जिनके शब्दों ने हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दी। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, सामाजिक चेतना, भारतीय संस्कृति और मानवीय भावनाओं का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में देशभक्ति, सामाजिक चेतना, भारतीय संस्कृति और मानवीय भावनाओं का खूबसूरत मेल तो देखने को मिलता है साथियों। उनकी और साथ ही साथ उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं भारत भारती और साकेत, इनका भी विशेष स्थान है। उनकी साहित्यिक यात्रा इतनी महत्वपूर्ण रही है कि साहित्य अकादमी ने 1986

में उनकी जन्म शती के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की। साथियों, मैथिली शरण की कविताओं ने लोगों के भीतर अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के प्रति प्रेम जगाया। तो आइए आज उनकी जयंती पर हम भी उनकी साहित्यिक विरासत को याद करें और हिंदी भाषा के प्रति अपने प्रेम को और मजबूत करें। फिलहाल साथियों, ये तो थी मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानकारी। और आइए, हमें याद है कि आपको मनोरंजन भी करवाना है साथ ही साथ, तो सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: वेलकम एक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। और आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और आइए साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज हम अपने एक युवा साथी से आपको रूबरू करवाते हैं और उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए इसी के संबंध में हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं AI फील्ड में अपना करियर कैसे बनाए।
1: हेलो फ्रेंड्स, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई रोबोट बनाने वाली फिल्मी चीज नहीं है। AI का मतलब होता है मशीन को इतना स्मार्ट बनाना कि वो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और सही डिसीजन ले सके। जब यूट्यूब आपको वीडियो सजेस्ट करता है, मोबाइल फेस पहचानता है, गूगल सही रास्ता बताता है या ChatGPT जवाब देता है, ये सब AI की वजह से होता है। AI आज फ्यूचर की नहीं प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में बैंकिंग, मेडिकल, एजुकेशन, फार्मिंग, डिफेंस, हर जगह AI का यूज बढ़ेगा। इसी वजह से AI में करियर का स्कोप बहुत बड़ा है। लेकिन AI कोई जादू नहीं है, ये स्किल और मेहनत से सीखने वाली फील्ड है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और नई चीजें सीखने का मन है तो AI आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग करियर बन सकता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि AI सिर्फ टॉपर या मैथ जीनियस के लिए है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर आपने 12th साइंस PCM से की है तो आपके लिए AI सीखना थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन अगर आपने कॉमर्स या आर्ट से 12th की है तब भी AI का रास्ता बंद नहीं होता। हाँ, मैथ से डर लगता है तो शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। AI में सबसे जरूरी चीज जीनियस होना नहीं बल्कि लॉजिक समझना और प्रैक्टिस करना है। अगर आप कंप्यूटर पर काम करने से डरते नहीं हो, रोज सीख सकते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो तो AI आपके लिए पॉसिबल है। AI में करियर बनाने के 3 मेन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है डिग्री के साथ AI सीखना, दूसरा रास्ता है बिना डिग्री सिर्फ स्किल से AI सीखना, और तीसरा रास्ता है डिग्री प्लस स्किल दोनों साथ लेकर चलना। डिग्री वाला रास्ता ट्रेडिशनल है जिसमें कॉलेज और एग्जाम्स होते हैं। स्किल वाला रास्ता फास्ट है जिसमें ऑनलाइन लर्निंग और प्रैक्टिस होती है। लेकिन सबसे सेफ रास्ता हाइब्रिड होता है जिसमें आप डिग्री भी करते हो और साथ साथ AI स्किल भी सीखते हो। आज कंप्यूटर सिर्फ डिग्री नहीं देखती, उन्हें काम करना आना चाहिए। इसलिए सही रास्ता वही है जिसमें आपकी नॉलेज भी बने और प्रैक्टिकल स्किल भी। आगे चलकर वही स्टूडेंट टिकते हैं जो दोनों को बैलेंस करते हैं। अगर आप कॉलेज लाइफ और डिग्री दोनों चाहते हो तो आप 12th के बाद BTech इन AI, BTech CSE विद AI, BSc AI या BCA जैसे कोर्स कर सकते हो। डिग्री का फायदा ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलती है और कई कंपनीज डिग्री मांगती भी है। कॉलेज में ज्यादातर थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल स्किल खुद से डेवलप करनी पड़ती है। अगर आप डिग्री के साथ पाइथन, मशीन लर्निंग और प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो तभी AI में अच्छा करियर बनता है। डिग्री को सपोर्ट समझो, सक्सेस की गारंटी नहीं। आज के टाइम में बहुत से स्टूडेंट्स बिना डिग्री भी AI में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे कम है या आप जल्दी स्किल सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन लर्निंग एक अच्छा ऑप्शन है। YouTube, फ्री कोर्सेज और प्रैक्टिस से आप पाइथन, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग सीख सकते हो। लेकिन ये रास्ता डिसिप्लिन मांगता है। यहाँ कोई टीचर रोज डांटने नहीं आएगा, खुद का टाइम टेबल, प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा। स्किल बेस्ड रास्ते में वही स्टूडेंट सफल होते हैं जो रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और जल्दी हार नहीं मानते। सर्टिफिकेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका काम और प्रोजेक्ट्स। AI सीखने के लिए आपको सब कुछ एक साथ नहीं सीखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग सीखो क्योंकि AI की बेस पाइथन है। फिर मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जैसे बेसिक कंसेप्ट समझो। उसके बाद मशीन लर्निंग के छोटे छोटे कंसेप्ट सीखो। जब ये क्लियर हो जाए तब AI टूल्स और मॉडल्स पर काम शुरू करो। सबसे जरूरी चीज है प्रोजेक्ट्स बनाना क्योंकि प्रोजेक्ट से ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो एडवांस AI खुद आसान लगने लगेगा। AI एक जॉब नहीं बल्कि पूरा करियर फील्ड है। AI सीखने के बाद आप AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो। AI में हर दिन कुछ नया आता है इसलिए लर्निंग कभी रुकती नहीं। जो स्टूडेंट्स खुद को अपडेट रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। रोज थोड़ा सीखो, रोज प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। जल्दी सक्सेस के चक्कर में गलत डिसीजन मत लो।

0: फ्यूचर उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो बदलते टाइम के साथ खुद को बदलते हैं। एआई कोई डरने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। डर तब लगता है जब हम सीखना छोड़ देते हैं। अगर आज आप 12th के बाद सही डायरेक्शन में मेहनत शुरू कर दोगे तो आने वाले कुछ साल आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। जय हिंद।
1: साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और एआई में करियर किस तरह से बनाया जाएगा ये आपको मालूम चला होगा। लेकिन हमें आपके मनोरंजन का भी ध्यान है, तो आइए इसी दिशा में भी आगे बढ़ जाते हैं और इस प्यारे से सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। सुनिएगा।

और साथियों, अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। और सवाल हमने आपसे पूछा है कि ब्रिटेन के नवनिर्मित प्रधानमंत्री कौन है, और इसका सही उत्तर है एंडी बर्नहम। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल हैं सुदर्शन शाह, भूपेंद्र सिंह, गंगा सिंह रावत, हीरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, एमडी यासीन अंजान, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, राजेश वर्मा और हमारे अन्य सभी साथी।

तो साथियों इसी के साथ आज के युववाणी में बस इतना ही। उम्मीद है आज की बातें आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक नई उम्मीद जरूर लाई होंगी। मैं हूं आपकी दोस्त आबिदा फातिमा और आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। फिर मिलेंगे एक नई बात, नई ऊर्जा और नए अंदाज के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के पीछे चलते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 6:30 और 9 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में सब भैया बहन को बहुत बहुत स्वागत है और आपके भैया राकेश शर्मा की सब भैया बहन के लिए राम राम। भैया बहनों, हम अपने कार्यक्रम में प्रयास करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें लेके आते हैं जिससे हमारे जो ग्रामीण भैया हैं उनको लाभ पहुँचे। तो आज हमारी चर्चा का विषय है गन्ना की फसल में सामयिक कार्य, कि इस समय कौन कौन से कार्य गन्ना की फसल में करे जा सकते हैं। तो देखो, वैसे तो हमारे किसान भैया सब जागरूक हैं और उनकी फसल कब का चाहती है जब बात की जानकारी रहती है, फिर भी हम अपने भैया से जा कहना चाहेंगे कि जिन भैया ने गन्ना की खेती करी है तो अगस्त के महीना की अगर हम बात करें तो इस महीना में सबसे पहलू काम का है कि बहुत से खेतन में पानी भर जाते। हमारी गन्ना की फसल पानी तो चाहती है, लेकिन ये तो पानी ना चाहती कि वहाँ हर समय भर हो रहा है। वैसे कहा हुआ है कि जो गन्ना की जड़ें होती हैं वे गल जाएंगी, पेड़ हमारो बेकार हो जाए, तो खेत में पानी भरो वो ना रहा है, बाकी निकासी की व्यवस्था करें। और इसके साथ ही साथ होता है, देखो जा टाइम पे गन्ना की जो हमारी फसल है वे काफ़ी तैयार हो जाती है, पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें जो भी खाद वगैरह हमारे किसान भैया लगाते हैं तो उसमें जो खरपतवार जम जाते हैं वे खरपतवार भी हमारी खाद को काफ़ी हिस्सा बेहजम कर जाते हैं। अब ऐसे में नराई तो वाम हो ना सकती है, तो कोई विशेषज्ञ की परामर्श लेकर जो खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई दवा को आप इस्तेमाल करें। इसके साथ ही साथ दूसरों काम का है मुख्य रूप से मट्टी चढ़ान को, जा महीना में जो गन्ना की कतारें हैं उन पर अच्छे तरीका से मट्टी चढ़ाई जाए, जिससे कहा हुए कि गन्ना के जो पौधा होंगे उनके लिए मजबूती मिलेगी। अगर तेज़ हवा चलेगी या बारिश होगी तो बाद में हमारे गन्ना के पेड़ जो हैं बिगड़ेंगे ना। तो जा बात को हमारे भैया लोग ध्यान रखें। और अगर बात करें यूरिया वगैरह लगाने की, तो नाइट्रोजन की मात्रा को प्रयोग हमारे किसान भैया या यूरिया को छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रयोग तब ही कराएं जब खेत में नमी हो। इसके अलावा अगर पत्ते पे पीलोपन दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि हमारे जो गन्ना की फसल है जामें जिंक लगाने की ज़रूरत है और आप जिंक को प्रयोग करें। तो ये बातें हैं, इनको अगर हमारे किसान भैया ध्यान रखेंगे तो वैसे कहा हुई है कि उनकी जो फसल है वह खराब ना होगी और ठीक ठाक मुनाफा हुई है। इसके साथ ही साथ देखो भैया लोगों, हम अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई वार्ता या भेंट वार्ता सुनवाते हैं, तो आज हम एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं जिसको विषय है शिक्षा का जीवन में महत्व, और जा विषय पे आपको जानकारी दे रहे हैं अवधेश कुमार। साथियों, आज हमारे पास हैं एक ऐसे भैया जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, चलो इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भैया जी, आपको क्या नाम है?
1: हमारा नाम अवधेश कुमार है।
0: आप कहाँ से आए हैं?
1: ग्राम सुकड़िया, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से आए।
0: अच्छा, आजकल आप क्या काम कर रहे हैं?
1: प्राइवेट अध्यापक।

0: अध्यापक हैं और एक स्कूल में शिक्षण कार्य कर रहे हैं।
1: भैया जी, आज हमारी आपकी बातचीत का विषय है शिक्षा का जीवन में महत्व। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है?
0: शिक्षा से जब ज्ञान आता है, मूल्यों में सुधार आता है, अगर हम एक रूप में समझें तो शिक्षा से एक तरीके सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें सभी प्रकार के विकास शामिल हैं।
1: देखने को ये मिलता है कि कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने केवल शिक्षा को नौकरी से जोड़ के रख रखा है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, हमारा जीवन यापन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये सोच उनकी कहाँ तक उचित है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी हो?
0: हम इस बात से सर पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य की जो मानसिकता होती है वो ही उसको कमज़ोर बनाती है, वो ही उसको शक्तिशाली बनाती है। अगर हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा शिक्षा को लेके, सर्वांगीण विकास होगा, हम सिर्फ ये नहीं मानते हैं शिक्षा केवल नौकरी के लिए, बल्कि शिक्षा एक तरीके से संपूर्ण योग है हमारे जीवन का, और हर प्रकार का जो विकास है वो शिक्षा में सन्निहित है, शामिल है।
1: हम कह सकते हैं कि व्यक्ति चाहे कोई भी कार्य करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, खेती का काम करे या पशुपालन का काम करे, बात करें शिक्षा की तो शिक्षा की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती ही पड़ती है।
0: जी सर,
1: अगर बात करें प्राचीन समय की शिक्षा और वर्तमान समय की शिक्षा में क्या अंतर देखने को मिलता है?
0: सर वर्तमान समय की शिक्षा में, प्राचीन समय की शिक्षा में बहुत बदलाव आए हैं। अब प्राचीन समय की जो शिक्षा थी, उस वक्त हमारे पास इतनी एक तरीके से विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी, नवाचार नहीं थे, संसाधन नहीं थे, और एक तरीके से हमारे अंदर जो एक डेवलपमेंट, जो एक थिंकिंग होना चाहिए, वो भी नहीं थी। लेकिन बदलते युग ने बहुत परिवर्तन किया है और शिक्षा में उन्नति हुई है। लोग उच्च स्तरों पे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मतलब जो है मेहनत कर रहे हैं और उस सीमाओं तक तो पहुंच भी रहे हैं।
1: अगर बात करें बालिका शिक्षा की तो पहले के समय में और आज के समय में बालिका शिक्षा में कुछ अंतर देखने को मिलता है?
0: बहुत बड़ा बदलाव आया है सर। पहले प्राचीन समय में, या आपसे 20 साल पहले, लोग अपने माता पिता अभिभावक पढ़ाई को लेके इतने सीरियस नहीं थे, संवेदनशील नहीं थे। हमने ये सुना है लोगों के मुंह कि पहले नौकरी लग भी जाती थी तो घर वापस बुला लेते थे, बोले क्या करोगे, ज़मीन है तो आराम से यहाँ कमाओ। लेकिन वो उनकी सोच जो है थी, लेकिन अब उन्होंने जीवन को बहुत बारीकी से, गहराइयों से जीवन को जिया भी है, महसूस भी किया और देखा भी है, समाज को देखा है और देश को देखा है। तो अब उन अपने आप से इतने प्रेरित हैं कि हर व्यक्ति अभिभावक शिक्षा को लेके बहुत सीरियस है, और अब कुछ भी करे, चाहे भले ही वो चटनी से खा ले, लेकिन अपने बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण करवाने में लगे हुए हैं, और बच्चे शिक्षा ग्रहण कर भी रहे हैं। और
1: आज के समय में हमारे भैया बहन बहुत जागरूक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है कि यदि किसी के एक बेटा और एक बेटी है, वो चाहते हैं कि हम अपने बेटे को अच्छे विद्यालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाएं, और वहीं बेटी को सोचते हैं कि थोड़ा बहुत यूं ही पढ़ा लें और घर पे बिठा लें। उनका ये नज़रिया कहाँ तक उचित है?
0: क्योंकि इस प्रकार की सोच नहीं रखना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि जब संतान है तो दोनों को एक तरीके से बराबर का दर्जा देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा दोनों को वरीयता बराबर देनी चाहिए। हमको बहुत बड़ा लाभ है, एक तरीके से समाज सुधरेगा, हमारा देश सुधरेगा, क्योंकि वो जो वंशागति है जो होती है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो गुण आते हैं, जब बेटी शिक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ी वैसे शिक्षित होगी, उसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे और गुणवत्ता होगी।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर बेटा पढ़ रहा है, जिसने जो भी शिक्षा प्राप्त करी है वो हमारे पास रहेगा, माँ बाप के पास में रहेगा। भले ही उसने अगर शिक्षा कम की है तो वो जो भी कार्य उसके माँ बाप कर रहे हैं वो करके अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन
0: कर
1: बात
0: लेंगे
1: करें बेटी की, बेटी को देखो दूसरे घर पे पहुंचना है, जब उसके वंश की वृद्धि होगी, संतान घर में आएंगी, तो बच्चे जो हैं ज़्यादातर माँ के साथ रहते हैं, माँ के सानिध्य में रहते हैं। यदि हमारी बेटी शिक्षित होगी, उसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित और संस्कारवान बनेगी।
0: जी
1: तो हम कह
0: सर,
1: सकते हैं कि बेटी की शिक्षा बेटों की तुलना में ज़्यादा ज़रूरी
0: ज्यादा
1: है
0: जरूरी है,
1: और
0: सही
1: ज़्यादा से
0: बात,
1: ज़्यादा शिक्षा देनी भी चाहिए।
0: देनी भी चाहिए।
1: अच्छा, कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं कि हमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद में किस क्षेत्र में जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये कहाँ तक तो उचित है?
0: कि शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हमारे जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित पहले से ही होना चाहिए, और उन लक्ष्यों के अनुसार अपने आप को जीवन अनुकूल बनाना चाहिए, उसका दृष्टिकोण को लेके अपने अंदर भावनाएं जागृत करना चाहिए, और उसी प्रकार की संगति, उसी प्रकार की किताबें, उसी प्रकार की थिंकिंग हमें रखनी चाहिए, ताकि हम सुगमता पूर्वक अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकें। वो शिक्षा ही किस काम की जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए, जब वो ही हम अचीव नहीं कर पाए तो।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी बात को देखते हुए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी,

0: उन्होंने कौशल विकास योजना लागू करी है
1: जी
0: कि
1: सर,
0: व्यक्ति अपनी शिक्षा के साथ साथ कोई ना कोई अपनी रुचि के अनुसार कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना कोई व्यवसाय, अपना कोई व्यापार शुरू कर सके। तो पहले भी यही होता था कि हमारे जो बड़े बूढ़े हमारे पिताजी वगैरह हुआ करते थे, जो भी काम किया करते थे, वो अपने बच्चों को भी वो काम सिखाने का प्रयास करते थे कि हमारे ना होने पर हमारे बच्चे वो कार्य को कर सकें। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था तो वो चाहता था हमारे बच्चे भी इस कला को सीख जाएं।
1: जी
0: कोई
1: सर,
0: फर्नीचर का काम कर रहा है, कोई चमड़े का काम कर रहा है, तो वह अपने बच्चों को वो ज्ञान, वो हुनर सिखाते थे।
1: जी
0: इन्हें नौकरी वगैरह नहीं मिली तो कम से कम अपना काम तो कर लेंगे।
1: जी सर,
0: वही नजरिया हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकर के चल रहे हैं कौशल विकास के माध्यम से। भैया जी, देखने को ये मिलता है कि बच्चे शिक्षा तो ग्रहण करते हैं,
1: जी सर,
0: लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, चरित्र का निर्माण,
1: जी
0: चरित्र का निर्माण कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे?
1: मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन एक होता है सेल्फ मोटिवेशन। बच्चे जो है अपने आप से प्रेरित होते हैं, अपने हृदय की गहराई जो कहते हैं ना, मैंने कहा सर बुद्धि और विवेक, तो
0: जी
1: बुद्धि तो सर हर किसी के पास है, लेकिन बुद्धि को परखने की जो क्षमता है वो एक विवेकशील पुरुष के अंदर होती है। जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है तो उसको उचित या अनुचित की पूर्ण रूप से पहचान होती है। तो सर ये चीज़ें तभी आएंगी जब हमारे अंदर अच्छे संस्कार होंगे और हम उन गहराइयों से शिक्षा को ग्रहण करेंगे।
0: पहले के समय में जो एक शिक्षा का मुख्य कार्य था, गुरु शिष्य परंपरा,
1: जी सर,
0: एक ऐसा संबंध, शिष्य के द्वारा गुरु के लिए विशेष सम्मान दिया जाता था। गुरु जो रास्ता दिखाते थे उस पर शिष्य चलते थे, अपना जीवन सफल करते थे। उस चीज में आज के समय में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जो शिष्टाचार बच्चों के मन में होना चाहिए, बच्चे गुरु को जिस प्रकार से अभिवादन करें, वो चीज कहीं ना कहीं कम होती जा रही
1: कम
0: है।
1: होती जा रही,
0: शिष्य की कमी है या गुरु शिक्षा देने में कहीं ना कहीं असफल हैं?
1: कहते हैं सर समय बड़ा बलवान है, और आज जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं जो हमें जो संसाधन की परिपूर्ति जो इतनी होना चाहिए उससे हमें ज़्यादा मिल रही है, तो हमारे अंदर बहुत प्रकार के जो विकार हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, मेहनत हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये बदलते युग का भी प्रभाव है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। जब व्यक्ति को सर संसाधन पूर्ण रूप से मिलेंगे तो मेहनत क्यों करेगा, सबसे प्राथमिकता ये है। बच्चों की, विद्यार्थियों की, लोगों की इस टेक्नोलॉजी ने मानसिकता को ग्रसित कर लिया है, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मतलब जो है इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहकर अपनत्व को समझना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं और इंसानियत की भावनाएं ये हृदय में मतलब हर समय रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होता
0: है। अवधेश कुमार भाई साहब, आपने शिक्षा का जीवन में महत्व इस विषय पे बहुत अच्छे ढंग से अपने विचार आकाशवाणी टीम के साथ साझा करें। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेलगों, अब आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे अवधेश कुमार भैया ने जानकारी दी कि जीवन में शिक्षा को का महत्व है। हमें उम्मीद है कि जो भी भैया जब बातचीत के लिए सुन रहे होंगे वे शिक्षा के महत्व को समझेंगे। वो बच्चा जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई से किसी प्रकार से बचने की कोशिश करते हैं वो भी शिक्षा के महत्व को समझेंगे और अपने जीवन में शिक्षा जरूर उतारेंगे। क्योंकि है का, बाकी सारे काम कमाई करने के लिए ज़िंदगी है, लेकिन अगर बात करें पढ़ाई की, एक निश्चित समय होता है, निश्चित उम्र होती है, उसके निकल जाने के बाद बच्चा लाख चाहे कि हम पढ़ाई कर लें लेकिन ना कर पाते। और इसके साथ साथ भैया है का कि हम क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में कोई ना कोई अपने ग्रामीण भैया के बीच में पहुँच कर उनसे बातचीत करते हैं। तो आज हमने बातचीत करी है, एक भैया हैं जीवन सिंह जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं, इनसे बातचीत जो करी है सुन बातें आपके लिए। साथियों, आज हमारे पास हैं एक ऐसे भैया जो कि जनसेवा केंद्र को संचालन करते हैं, चलो इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भैया आपको क्या नाम है?
2: मिस्टर जीवन सिंह।
0: जीवन सिंह भैया घर के जो गाँव में बैठे हुए हैं, जो कौन सा गाँव है?
2: ग्राम मुशरकपुर।
0: जो मुशरकपुर गाँव कौन से विकास खंड को है?
2: मजगमा।
0: और जिला?
2: बरेली।
0: अच्छा, हम बात करें, आप जनसेवा केंद्र चला रहे हैं, कितना समय हो आपको जनसेवा केंद्र चलाते हुए?
2: एक साल हो गई।
0: अच्छा, एक साल से आप ये कार्य कर रहे हैं
2: जी।
0: आज हमारी और आपकी बातचीत को विषय है ग्रामीण क्षेत्र में जनसेवा केंद्र की भूमिका। अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसेवा केंद्र के का काम है?
2: जनसेवा केंद्र के ये है, ऑनलाइन काम होता है सारा काम, और अगर आय जाति मूल्यवासी बनते हैं उससे और भी काम है।
0: अच्छा, हम देख रहे हैं आपकी दुकान में जो बैनर लगा हुआ है जहाँ पे लिखी है आय प्रमाण।

0: पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार की योजना के नाम लिखे हुए हैं, ये सारी सेवाएं आपके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं
1: जी।
0: अच्छा, अगर बात करें जन सेवा केंद्र जो हमारे ग्रामीण भैया हैं, पैसा निकालने के लिए उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं कि वो बैंक जाते, लाइन में खड़े होते, तब जाके कहीं पैसा निकाल पाते। जब से जगह जगह जन सेवा केंद्र खुले हैं तो हमारे बे भैयन के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिली है, जिन्हें थोड़ी बहुत धनराशि की आवश्यकता होती है और बैंक जान से बच जाते हैं। तो आपके यहाँ जो सुविधा उपलब्ध है, लोगों को पैसा निकालने होते तो आप पैसा निकाल सकते हैं?
1: जी जी, निकल जाता है।
0: किसी भी बैंक को पैसा निकल जाते हैं?
1: हाँ, हर बैंक का निकल जाता है।
0: कुछ इसकी लिमिट होती है कि व्यक्ति कितने पैसा निकाल सकते हैं?
1: बीसी सेंटर का है, जो सेंट्रल बैंक का खाता है वो हम निकालते हैं 30,000 रुपए, और जो अदर बैंक का खाता है उस पर 10,000 से ज्यादा नहीं निकलता एक दिन में।
0: अच्छा, यानी एक दिन में जो अन्य कोई बैंक है उसके 10,000 रुपए निकलते हैं?
1: जी जी जी।
0: और जिस बैंक के आप एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं उस बैंक के आप 30,000 रुपए एक दिन में निकाल सकते
1: देते हैं।
0: अच्छा, तो इसके लिए व्यक्ति के लिए कुछ का चीज लेके आने होते हैं आपके पास में?
1: पासबुक लेके आना चाहिए, पासबुक, उस पे आधार नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है, पासबुक छाप भी देते हैं।
0: अच्छा, यानी किसी को पैसा निकालनी है तो अपनो आधार कार्ड ले आवे और बैंक की किताब ले
1: आवे,
0: आप पैसा निकाल देंगे?
1: जी, और हम पासबुक प्रिंट करके देते हैं ताकि व्यक्ति को दिक्कत ना हो कि पैसे उनके घटे हैं बढ़े हैं।
0: अच्छा, जिस बैंक के आप एजेंट हैं उस बैंक की किताब आप छाप देते हैं?
1: जी जी।
0: कोई दूसरे बैंक की अगर किताब है वो भी आप छाप देते हैं?
1: नहीं नहीं, वो नहीं छपेगी, सिर्फ।
0: अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें, आपने लिख रखी है कि हमारे यहाँ आय प्रमाण पत्र की भी सुविधा है, अगर किसी व्यक्ति के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने है तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
1: आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो उस व्यक्ति का आधार कार्ड और एक फोटो लेके आना है, मोबाइल नंबर, तब वो ऑनलाइन होता है।
0: अच्छा, तो आप ऑनलाइन कर देंगे?
1: जी।
0: ऑनलाइन कर देने के बाद में कितने समय के बाद में उनके लिए आय प्रमाण पत्र बन जाएगी?
1: एक हफ्ता मान के चलो, 6 दिन में आ जाता है।
0: अच्छा, मतलब सारी ऑनलाइन प्रक्रिया है?
1: ऑनलाइन प्रक्रिया।
0: जब आप ऑनलाइन कर देंगे तो जो भी हमारे क्षेत्र से संबंधित अधिकारी हैं वो उस चीज पे अपनी रिपोर्ट लगावेंगे, तब जाके वो उसे अपडेट कर देंगे।
1: जी जी।
0: अच्छा, किसी व्यक्ति के लिए जैसे अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हैं तो बाकी का प्रक्रिया है?
1: मृत्यु प्रमाण पत्र है वो तो उसका तहसील से बनता है, उसका एफिडेविट वगैरह बनता है, यहाँ से कोई काम नहीं होता जनसेवा केंद्र से।
0: अच्छा, हम देख रहे हैं आपके यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का है?
1: जो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, अगर आदमी लेना चाहता है तो बाय चांस अगर व्यक्ति का अभी दुर्घटना वगैरह बहुत हो रही है, अगर मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उसको 2,00,000 रुपए मिल जाएंगे।
0: अच्छा, हम देख रहे हैं इसमें लिख रहे हैं कि 18 साल से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना को ले सकता है। तो जब योजना व्यक्ति अगर लेना चाहे रहो है तो जाके किस्त वगैरह किस प्रकार से कटती है?
1: साल के 236 रुपए पर साल कटते हैं।
0: अच्छा,
1: आदमी को हर बार जब साल उसकी पूरी हो जाती है तो उसे जाना पड़ता है कि ये बीमा चलाना चाहता है इंसान, नहीं चलाना चाहता।
0: अच्छा, ऐसा ना जिस मान लो हम एक बार मैनेजर साहब को बता दें कि जब योजना को हम लाभ लेना चाह रहे हैं, हमारी किस्त अपने आप कट जाओ करे, तो अपने आप किस्त कट जाए ऐसी व्यवस्था ना है?
1: ना, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं है, उसको एजेंट को दिखाना पड़ता है कि ये आदमी जिंदा है मर गया।
0: अच्छा अच्छा, दूसरी योजना जो हम लिखी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो योजना का है?
1: जो है ये 20 रुपए वाला बीमा है, साल के 20 रुपए कटते हैं, ज्यादा पैसे भी नहीं, आदमी हर कोई कराता है ये बीमा। इसमें बाई चांस दुर्घटना हो जाती, 2,00,000 का क्लेम हो जाए पत्नी सही आदमी सही, तो उसके औरत को मिलेगा पैसा।
0: सरकार के द्वारा ये बहुत उपयोगी योजनाएं लागू करी गई हैं, और इसमें लिख रहे हैं कि 18 साल से 70 साल तक को कोई भी व्यक्ति जहाँ योजना को लाभ ले सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना के द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो भी उसके नॉमिनी हैं उनके लिए 2,00,000 रुपया की धनराशि प्रदान करी जाती है। बहुत बढ़िया योजना है जीवन भैया। इसके साथ ही साथ जन सेवा केंद्र से हमारे ग्रामीण भैयन के लिए और का लाभ है?
1: और कस्टमर का जो भी काम होता है ऑनलाइन वगैरह, फोटो कॉपी है, सारा काम हम करते हैं।
0: अच्छा, जैसे फोटो कॉपी है, किसी को फोटो बनवानी है,
1: फोटो बनवाने हैं, आधार कार्ड वगैरह निकलवाने, खो जाता है बाई चांस, पैन कार्ड अच्छा। वगैरह है, बाकी सारे काम हमारे पास होते हैं।
0: अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति का आधार कार्ड खो गया है तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
1: उसकी ये प्रक्रिया है, उसके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा हो तो निकलेगा, और नहीं तो उस पर मोबाइल नंबर लगवाना जाना पड़ेगा तब निकलेगा।
0: तो जैसे अगर मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो आप के पास मोबाइल नंबर लग जाए?
1: मोबाइल नंबर का आधार का कोई हम काम नहीं करते हैं, आधार मात्र हम आधार निकालते हैं बस।
0: अच्छा, अगर नंबर लगा हुआ है तो आधार निकलेगा?
1: निकल जाएगा।
0: कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां जैसे हमारे जो राशन कार्ड है उनमें हो जाती है, कोई वोट बढ़वाने है या किसी को नाम कटवाने है, तो ऐसी सेवा अपने यहाँ उपलब्ध है?
1: हाँ, अगर यूनिट कटवाना है तो यूनिट कट जाता है, हम रसीद निकाल देते हैं, वो ऑनलाइन लेके जाएं, उनका यूनिट कट जाएगा।
0: अच्छा, और अगर कोई यूनिट बढ़वाने हैं तो?
1: तो उसका आधार कार्ड लेके आए, राशन कार्ड लेके आए, जिसका यूनिट बढ़वाना है उसका आधार कार्ड। तो हम यूनिट बढ़ा देते हैं और राशन कार्ड ऑनलाइन भी कर देते हैं। नया कोई राशन कार्ड ऑनलाइन करवाया उसके डॉक्यूमेंट

0: पत्नी का बैंक खाता, पत्नी का फोटो और बच्चों के आधार कार्ड, पति का आधार कार्ड।
1: अच्छा, किसी व्यक्ति के लिए पैन कार्ड बनवानी है तो पैन कार्ड बनवाने की व्यवस्था अपने यहाँ उपलब्ध है?
0: जी, पैन कार्ड बनवाने के लिए उसका एक आधार पे मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, तब पैन कार्ड बनेगा। उसका एक फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए।
1: अच्छा, तो पैन कार्ड बनवाने के लिए कितने समय सीमा है, कितने समय के बाद में पैन कार्ड प्राप्त हो जाते हैं?
0: पैन कार्ड अब तो जल्दी ईमेल पे ही आ जाता है, शाम तक आ जाता है। अगर अभी बनाओगे तो शाम तक आ 24 घंटे में आ जाता है।
1: अच्छा,
0: और 7-8 दिन में प्लास्टिक में आ जाता है, जो डाकिया लाता है पोस्टमैन।
1: तो करूँगा मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जन सेवा केंद्र की एक अहम भूमिका है। छोटे मोटे काम के लिए, हमारे भीड़ पैसा निकालने के लिए बैंक जाने पड़ते, काफी समय इंतजार करने पड़ते। इस प्रकार की उनकी जो कार्य प्रणाली थी, बात है, उनके लिए राहत मिली है। गांव में ही इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं कि अगर पैसा निकालने हैं अपना आधार कार्ड, बैंक की किताब लेके आओ और तुरंत ही व्यक्ति पैसा निकाल सकते हैं। जीवन राम भैया, हम देख रहे हैं आपके यहाँ पे एक बोर्ड लगो, इस पर लिखो अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का है?
0: अटल पेंशन योजना है आदमी के लिए बहुत अच्छी योजना है। अगर आदमी से चलाना चाहता है तो एज के हिसाब से पैसे कटते हैं। अगर एज 18 से है तो 59 रुपया कटेंगे, और ऊपर है तो 210 रुपया कटेंगे। उसके बाद 60 साल तक अगर व्यक्ति जीना चाहता है तो उसके बाद 1000 से 5000 तक उसको पेंशन मिलेगी। अगर बीच में चाहें वो नहीं चला पा रहा है तो एप्लीकेशन देगा तो बंद हो जाएगी।
1: बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि जा योजना के लिए कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिनकी उम्र 18 साल से लेके 40 साल के बीच है। सरकार ने जा सोच के जा योजना लागू करी है कि बहुत से भैया ऐसे होते हैं जो 60 साल के बाद में चाहते हैं कि हमारे लिए कहीं ना कहीं से कोई धनराशि प्राप्त होती रहा है। जब योजना के अंतर्गत अगर हमारे भैया लोग 42 रुपया से लेकर 210 रुपया तक उम्र के हिसाब से पैसा कटते हैं और 1000 रुपया से लेकर 5000 तक जैसी भी सोचे कि हमारे लिए 1 रुपया चाहिए, उसी हिसाब से एक प्रीमियम निर्धारित हो जाती है जो कि प्रति महीना कटने शुरू हो जाती है और तब तक कटती है जब तक उस व्यक्ति की उम्र 60 साल की ना हो जाती है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद में पेंशन के रूप में उनके लिए एक धनराशि प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और जब हमारे भैया चाहें कि यह योजना आगे हम ना लेना चाहते हैं तो जो भी उनके पैसा वगैरह जमा हो चुके होते हैं वह पैसा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जीवन राम भैया, आपने कई योजना की जानकारी और जन सेवा केंद्र से ग्रामीण क्षेत्र में भैया के लिए का का फायदा है जहाँ पर प्रकाश डालो, आपने आकाशवाणी टीम के साथ अपने अनुभव साझा करे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अब हमारे भैया लोग सुन रहे ग्रामीण क्षेत्र में जनसेवा केंद्र की भूमिका, और इसके साथ ही साथ अब हम शामिल करते हैं वे कमेंट जो भैया लोगों ने हमारे पास भेजी हैं। तो हमारे पास पहली कमेंट आई है ग्राम दूने नगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, नित्या, सरिता और अंतिमा, आप लिख रहे हैं कोई सा भी लोकगीत सुनवाने की कृपा करें। और इसके साथ ही साथ अगले हमारे साथी हैं निसार सलमानी, धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से, आपने भी लोकगीत की फरमाइश लिखी है। और इसके साथ हैं चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय और किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू, आप भी लिख रही हैं कोई भी अपनी पसंद से लोकगीत सुनवाने की कृपा करें। उपेंद्र सिंह ने भी लोकगीत की फरमाइश भेजी है, ग्राम सिरौंधी अंगदपुर तहसील मीरगंज जिला बरेली से। और अगले साथी भूपेंद्र सिंह राजपूत, प्रवेश कुमार राजपूत, सचिन वर्मा, मनोज वर्मा और अरुण कुमार। इसके साथ साथ आप हैं उत्तम सिंह जंघेल कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से, और दत्तरेंगी वाटापारा छत्तीसगढ़ से अगली कमेंट आई है। दिनेश वर्मा जी लिख रहे हैं आप अपनी पसंद से कोई भी लोकगीत सुनवाने कृपा करें। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद वरली से आप हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अवरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई और आसिक हुसैन, आपने भी लोकगीत की फरमाइश लिखी है। और अगले साथी हैं आप लिख रहे हैं कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार, आप एक लोकगीत सुनवाने की कृपा करें। और इसके साथ ही साथ अगले साथी हैं इनके राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, सविता देवी, सत्यम मिश्रा, शीतल मिश्रा, धर्मेंद्र छिपा लिख रहे हैं आप सभी को हमारी

लोकगीत के बोल लिखे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। ताज अंसारी लिख रहे हैं, कोई भी लोकगीत सुनवाने की कृपा करें। कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से आप हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति, आप सबकी फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारो सो लोकगीत।

मुझे लगा भाई आपने प्यारे सुलोक भी सुनो, हमें उम्मीद है कि देखो हमारे जो भी भैया जा कार्यक्रम को ध्यान से सुन रहे होंगे उनके लिए जरूर पसंद आओ है, क्योंकि देखो साहब उनको महीना चल रहा है, जगह जगह कांवरियाँ निकल रहे हैं, तो ऐसे में हमने भी कोशिश करी क्यों ना मंदिर में घंटा टना टना वालों लोग भी सुनवाओ जाए, और भैया लोगों समय ना बचो है आपसे और कोई बातचीत करें अगले कार्यक्रम में कुछ नई नई जानकारी के साथ में आपसे फिर बातचीत होगी। तब तक के लिए अपने भैया राकेश शर्मा को दो अनुमति, भैया बहनों राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय भट्ट। आज इस क्रम में कार्यक्रम में मेहमान है श्रीमती रामलली।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम अक्षय भट्ट। और बताते ही हैं हम हर बार और फिर से बताए देते हैं कि कार्यक्रम अक्षय भट्ट आकाशवाणी बरेली की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम अपने समाज के वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ स्टूडियोज में आमंत्रित करते हैं और हमारे आमंत्रित जो विशेष मेहमान होते हैं उनके जीवन की जो संघर्ष गाथा है या उनके जीवन में अब तक जो कुछ घटित हुआ उनसे लाभान्वित या उनके अनुभवों से लाभान्वित हो सके हमारे श्रोता, हमारा समाज, यही उसके पीछे का मनोभाव है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियोज में है रामलली शर्मा जी। रामलली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो रामलली जी, पहले तो आप हमें यही बताइए कि लगभग आपकी उम्र कितनी होगी?
2: हमारी 60 साल।
1: 60 साल जी। तो रामलली जी, एक बात बताइए, 60 साल की उम्र, और वैसे हम लोग ने जैसा बताया ही कि कार्यक्रम में हम वरिष्ठ नागरिक और खास तौर से 55-60 के बाद के जो हमारे समाज में विद्यमान हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको बुलाते हैं उनके अनुभव जानने के लिए। ऐसे में रामलली जी का अनुभव जो है वो यहाँ तक कि उनके जो संघर्ष गाथा है कि उनका कैसे बाल्यकाल से लेकर यहाँ तक कि उनके जीवन में कैसे शुरू हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने संघर्ष देखे और यहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: संघर्ष तो मेरा बहुत वैसा रहा है, मैं आपको बताऊंगी तो आप भी ये कहेंगे कैसे करके आपने ये संघर्ष कैसे करके जीवन अपना काटा। हाँ, मेरी 22 साल की एज थी
1: जी।
2: मेरे पति एस पारो, 15 साल में मेरी शादी।
1: अच्छा, आपकी शादी 15 साल में हो गई थी। और आपका जो मतलब बचपना था वो माता पिता और कहाँ कैसे
2: माता पिता तो पढ़ाई तो ऐसी रही, खेती किसानी करते
1: अच्छा,
2: मेरे पिति।
1: अच्छा।
2: हाँ, पर पढ़ाई तो मेरी ज्यादा नहीं, 8 अच्छा, तक पढ़ पाई।
1: अच्छा, 8 तक पढ़
2: जी
1: पाई थी।
2: उसके बाद फिर शादी कर दी। शादी के बाद माने कि लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है कि शादी कर दो। बाबा हमारे बीमार रहते थे तो मेरी बुआ की, मेरी सबकी 14-15 साल में सबकी शादियां हो गई।
1: अच्छा।
2: हाँ, शादी 15 साल में शादी कर दी।
1: अच्छा।
2: और 22 साल की मेरी थी, 19 साल में मेरी बेटी हुई और 1.25 साल की मेरी बेटी थी, बेटा मेरा बेटा हो गया 1.25 साल।
1: अच्छा
2: जी। 22 साल की मेरी एज में एस पार हो गए मेरे पति।
1: अच्छा
2: जी। अब छोटे दोनों, 3 साल की मेरी बेटी पूरी नहीं हुई थी, 1.5 साल का मेरा बेटा था, ना बोल पाता था ना चल पाता था। और मैंने अपना ऐसा जीवन कि मुझे कुछ नहीं आता था, केवल एक सिलाई आती थी मुझे।
1: अच्छा।
2: अपना पूरा 2-3 साल इनके बाद तो ऐसा रहा कि जैसे 3 साल तक तो मेरा बिल्कुल दौड़े पड़ते थे मुझे और मुझे होश में नहीं आया। मेरे सास ससुर खैर बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा।
2: परिवार मेरा, वो मेरा बहुत साथ दिया और जब तक 6 साल बाद सास ससुर भी नहीं रहे इनके।
1: अच्छा। हाँ, इनके जाने के बाद।
2: जाने के बाद फिर मुझे बहुत जीवन ऐसा, कैसे काटूंगी मैं, क्या करूंगी। ससुर ने मेरे, मुझे थोड़ी सिलाई आती, ससुर जब रहे तो ससुर ने मेरी सिलाई सिखवाई मुझे सेंटर की। बोले कि नहीं ऐसे नहीं सीखोगी, तुम ब्लॉक से मुझे जुड़वाया, ब्लॉक से मुझे सिलाई सिखाई।
1: अच्छा।
2: हाँ, सिलाई के बाद बोले बेटा तुम बिजी हो जाओगी तो कम से कम 2 पैसे का सहारा हो जाएगा, किसी के अधीन नहीं रहोगे। और केवल 350 रुपए पेंशन बन गया
1: 1985
2: में मेरे पति एक्सपायर हुए। अब कैसे करके आप जानते हैं 350 रुपए में क्या
1: तो
2: होता
1: क्या
2: ना, तो मेरे जमीन थी, पुलिस में थे।
1: अच्छा, वो भी सेवा
2: जी। ना जमीन थी और मकान भी ऐसा ही था, कोई मकान बनवा पाए, प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं था। ऐसे एक बार बारिश हो रही थी, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर चार बैठी ऐसे बारिश जैसे बाहर वैसे ही अंदर, और चौकी रख के तब मैंने बच्चों को खिचड़ी बना खिलाई अपने। मैंने इतना जीवन अपना संघर्ष में काटा कि मैं आपको अपना बता नहीं सकती। फिर सिलाई उलाई अपना करके फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया सिलाई में, फिर बच्चे भी थोड़ा समझदार हो गए। फिर मैंने एक गाय पाली, थोड़े दिन गाय का अपना गोबर और दूध सब बेच, मैं दूध बेचती थी, दूध बेच के अपनी सिलाई भी करती थी और फिर बच्चों का पालन पोषण करा। 5 साल में अपने देवर के पास देवरानी के रही कि बच्चों की पढ़ाई की वजह से, केवल बेटा मेरे ससुर

0: तो सास ससुर नहीं रहे तो बेटा थोड़ा सा बच्चों में निकल जाता, तो घने अब गांव में तो पर्दा होता है, बाहर नहीं निकल सकती।
1: बिल्कुल.
0: फिर वह दे 5 साल देवर के पास रही, वहां पढ़ाया उसको, दोनों बच्चों को। और फिर पढ़ाई के बाद लड़की मेरी एमए कराई ज्योग्राफी से, बेटे ने मेरे एमए कराए इंग्लिश से, फिर उसने
1: अच्छा,
0: एमबीए
1: एमबीए.
0: कराया। हाँ, अब प्राइवेट कंपनी में कर रहा है,
1: नहीं
0: पुलिस
1: मिली.
0: में नहीं मिली।
1: अच्छा,
0: बहुत प्रयास किया,
1: लेकिन नहीं
0: हम
1: मिली.
0: नहीं मिली। वो जियो
1: तो
0: ही निरस्त कर दिया गया था, बोले
1: इस
0: 5 साल
1: वजह
0: के अगर अंदर मानी होता,
1: होगा.
0: 18 साल बहुत हो गई।
1: तो आपने जैसे बताया कि कैसे आपने, कि तखत चौकी के नीचे आपने बच्चों को खाना बना के खिलाया वहां से, और आज यहाँ कि आपने बच्चों को एमबीए कराया,
0: जी,
1: आज दोनों बच्चों की शादी कर दी आपने.
0: दोनों बच्चों की शादी है, दोनों बच्चे बच्चे हैं, बेटी पे 2 बेटी हैं, एक बेटा है, और बेटे पे एक बेटा है।
1: अच्छा, और वो 300 रुपये पेंशन के सहारे, और गाय पाली आपने, और काम करा, सिलाई करी. तो श्रोताओं, अगर आप हमारी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आप सोचिए कि हम लोग जरा सी कोई आज की डेट में तकलीफ आ जाती है जरा सी, कि काम को करने के लिए हम पे पैसे नहीं, या मान लीजिए कुछ खाने का मन ही हो रहा है और नहीं खा पा रहे हैं, तो भी विचलित हो जाते हैं कि बताओ आज मन मा. ऐसे में आज हमारे स्टूडियोज में जो हमारी मेहमान है रामलली जी, कि बच्चों को वहां से पढ़ा लिखा कर आज इस लेवल पर लेके आए, कितनी संघर्ष गाथा है, कितनी उसके पीछे के भाव हैं, कठिन भाव हैं, और विचलित नहीं हुई ना डिगी, और वहां उन संघर्षों से लड़कर अपनी नौका को आज खेव करके इस किनारे पर हैं. इस संघर्षपूर्ण गाथा को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम अक्षयवट में, और यही इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता है कि आप अनुभवों से. तो हम आगे बढ़ते हैं. राम लीजिए, एक बात और बताइए,
0: जी बताइए।
1: आपने वहां से दौर देखा कि भाई
0: जी
1: बच्चों को कितने प्यार से आपने रखा, जो भी साधन
0: जी
1: थे. आज हम देखते हैं कि भाई बच्चे अपने अपने जीवन में गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं. कई बार हम ये भी देखते हैं कि माँ बाप उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, कि वो इतने इन्वॉल्व हो गए अपने परिवार में कि हमारे माँ और अपने परिवार के उन संघर्षों को भूल गए जो उन्होंने बड़े दी. तो आजकल के जो बच्चे हैं जो एकल परिवार में विश्वास रखते हैं, कि खट से जरा सा इंडिपेंडेंट हुए नहीं कि अपना परिवार अलग, अपनी गृहस्थी अलग बसा ली, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
0: इसको तो ऐसे देखते हैं, बेटा भी मेरा बहुत अच्छा है और मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, आज के देखे बहुत अच्छी है। और बेटी तो है ही अच्छी, बेटी से ज्यादा दामाद अच्छे है मेरे।
1: अच्छा.
0: हर बात में पूछना कि मम्मी कोई परेशानी तो नहीं है। और बेटा भी शाम को आएगा, मम्मी क्यों दवा खाई, तबीयत सही है, कल मेरी दवा खत्म हो गई। जब आया 2 दिन बाद आया हल्द्वानी से, लौट के लेके आया। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं,
1: तो
0: बहुत ध्यान रखते हैं। अब तो ये समझ लीजिए, जीवन जो संघर्ष का था, अपना छोटा सा मकान भी है बरेली में, बेटे को बना दिया है,
1: अच्छा.
0: दुनका में रहते हैं, पर जी हाँ अपनी गृहस्थी के लिए है मकान, पर बरेली में है।
1: अच्छा
0: दमान मेरे जूनियर में टीचर हैं।
1: अच्छा, देखिए
0: और
1: आपके संघर्षों की जो
0: जी
1: है कितना सुंदर फल है कि बच्चे आज कामयाब हैं, दामाद भी सेवारत हैं. और देखिए, और क्या ही चाहिए एक माँ बाप को कि उनके बच्चे उनसे उनका बस प्रेम से बैठ के हाल पूछ लें तो लाखों रुपया.
0: शाम को नाती है, 9 साल का हो गया, 10वीं साल में चल लिया, अगर मैं नहीं भी खाऊं तो खाना नहीं खाएगा, दादी आपने क्यों नहीं खाया। चारों लोग शाम को खाना बैठ के ही खाते हैं साथ में, जब तक बेटा नहीं आएगा, चौ 11 बज जाए, दादी मेरा खाना नहीं, माँ लगाना नहीं, दादी को मेरा खाना, पापा आ जाऊंगे तभी खाएंगे।
1: बहुत सुंदर बात कही कि
0: बस
1: भाई जो
0: ये
1: परिवार
0: परिवार में।
1: आज की
0: हाँ
1: डेट
0: आज
1: में साथ में बैठ के खा रहा है, बातें कर
0: जी
1: रहा है, वो वाकई में सुखी है. अच्छा रामलली जी, मेरा वो प्रश्न इस तरह था कि
0: जी
1: हम देखते हैं कि आज जो एकल परिवार है
0: जी
1: उसकी अवधारणा है, मतलब ये भी मानेंगे कि अब छोटे छोटे परिवार, 4 भाई हैं तो चारों अलग अलग बट गए, और हम लोग ने हमने भी हमारे पिताजी 5 भाई थे और मिट्टी का हमारा घर था और उसमें सब लोग एक साथ रहते थे मिलजुल के. मेरी मम्मी सबसे छोटी थी, तो वो और जेठानी तो नहीं क्योंकि पहले तो बड़े का अदब है, लेकिन उनकी बहुएं फिर हम उम्र होती तो वो सब मिलके इतने बड़े 50 लोगों का खाना बनता
0: खाना।
1: था, इतना बड़ा परिवार, तो वो तो खत्म ही है.
0: खत्म
1: और
0: है।
1: तो आपको क्या लगता है वो दिन आज के दिन कैसे लोग प्रेम
0: नहीं
1: के
0: खत्म है? पर हम ये नहीं कहते हैं कि चलो आज का समाज ऐसा है, पर अगर कुछ है शादी है या ब्याह है तो ये सोचना चाहिए सब मिलके ही एक साथ बैठ के खाएं, एक साथ बैठ के बातें करें, तो वो परिवार की मनिया अलग
1: अच्छा
0: ही
1: हाँ,
0: खुशी अलग
1: मतलब
0: ही
1: अवसरों पर तो कम से कम समय से आदमी इकट्ठा और सुख दुख में एक साथ
0: दुख सुख है।

0: तो साथ खड़े रहना
1: खड़े
0: चाहिए।
1: रहना चाहिए। तो अच्छा, आप ये तो बात आपने बताई, क्या हमारे अपने जीवन के यहाँ तक के अनुभव से हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं और हमारा जो समाज है, हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल बड़ी छोटी छोटी सी बात पे मियां बीवी में झगड़े हो जाते हैं, झगड़े कई बार पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जा रहे हैं, मोहल्ले में बीच बचाव कराना पड़ रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए आजकल बच्चों को कि अपने जीवन को अच्छे से
0: बढ़ाएं? बच्चों को शुरू से ही माँ बाप को थोड़ी शिक्षा देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: आजकल बच्चे क्या है, संस्कार बिल्कुल भूल गए। बच्चों को माँ बाप ही है गुरु, जैसे बच्चों को ढालोगे शुरू से वैसे ही बच्चे ढल जाएंगे। अब सोई बाहर की बेटी अगर मानी है, कुछ ऐसी होती है लड़कियां जो मानी जैसे थोड़ा सा अलग हटके चलती हैं परिवार से, और वैसे ये है कि उन्हें भी ये सोचना चाहिए मेरे भी माँ बाप हैं, वैसे ये भी मेरे माँ बाप हैं, तो उसको मानी साथ में लेके चलना चाहिए,
1: मतलब सब पूरे परिवार को
0: एक साथ।
1: अच्छा, ये तो आपने कहा लेके चलना चाहिए। अब बात आती है कि हम ये देखते हैं कि आजकल के युवाओं में धैर्य बहुत कम है। धैर्य मतलब कहा जाता है कि पेशेंस तो है ही नहीं कि किसी ने कोई बात कह दी तो खाली ना जाए, तुरंत उसका जवाब दे। कई बार हम लोग उस काल से आते हैं, वो दौर भी देखा है कि जहां हिम्मत नहीं थी कि बड़े ने अगर कोई बात कह दी तो छोटे उसका प्रतिउत्तर दें। वो बात सही है कि गलत है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उस समय वहां से नहीं देते तो कई बार बड़े बड़े झगड़े टल जाते थे। नहीं, तो ये भी एक धैर्य बात है ना कि लोग धैर्य के साथ
0: धैर्य रखना चाहिए। और हाँ, जिसके अंदर अगर धैर्य नहीं होगी तो वो एकता करके नहीं रह सकता। मियां बीवी हों, चाहे मानी सास ससुर हों, चाहे बहू बेटा हों, वो नहीं रह सकते। थोड़ा तो अपने आप को मानी ये तो धैर्य रखना पड़ेगी,
1: और अपने परिवार की ये जो गाड़ी है, जो दो पहियों के साथ चलती है, ये पहिया ये गाड़ी तभी चल सकती है जब दोनों पहिये समान रूप से चले। एक भी डिरेल हो गया तो गाड़ी उतर जाए। तो रामलली जी, आपने आए अपने जीवन के बारे में हमारे साथ इतनी सारी बातें की और अपने संघर्षों के बारे में बताया। आजकल जहां थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी सी बातों पे हम सभी विचलित हो जाते हैं, ऐसे में आपने बताया कि कैसे इतना पहाड़ जैसा दुख टूटने के बाद भी आप डिगी नहीं, आपने अपने आप को सामर्थ्यवान बनाया, सिलाई सीख के अपने आप को हुनरमंद बनाया, अपने बच्चों को पाला, बच्चों को न सिर्फ पाला बल्कि उच्च शिक्षा दी, और आज वो बच्चे अपने अपने स्थान पर हैं और परिवार के समय। तो ऐसे में अब चलते चलते हमारे बीच बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हमें सुन रही होंगी जो अपने आप को सशक्त करना चाहती हैं, जो धन अर्जित करके अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं, अपने परिवार को आगे ले चलते। अब देखिए खर्चे भी इतने ज्यादा हैं कि एक व्यक्ति के कमाने से भी अब घर चला मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप हमारी उन सभी महिलाओं को जो हमें सुन रही हैं क्या राय देंगी कि किस प्रकार से वो अपने आप को?
0: मैं तो यही राय दूंगी कि अपने लिए मानी थोड़ी मेहनत करना चाहिए
1: जी।
0: सिलाई है, कढ़ाई है, बुना, अपने को बिजी रखना चाहिए। अगर बिजी रहेंगी तो इधर उधर की दिमाग में बातें नहीं आएंगी
1: जी।
0: अपने परिवार को लेके चलना चाहिए
1: जी।
0: परिवार में एकता रखना चाहिए, चाहे देवरानी जिठानी हो, चाहे सास बहुए हो, चाहे बेटी माँ हो, तो परिवार में एक साथ एकजुट रह कर कुछ खुशी अलग है।
1: बिल्कुल,
0: तो कहना यही है।
1: बिल्कुल, हमेशा अपने आप को नई नई चीजें
0: सीखना चाहिए,
1: सीखने चाहिए भाई। आजकल
0: पहले तो इतना नहीं था, अब तो देखो ये जो मोबाइल हर समय हाथ में लिए बैठी, इसमें सब कुछ आ रहा है, सब कुछ दिखा रहे हैं। पहले तो कि लाइट भी नहीं थी, हम तो जला ले लैंप के लिए, उसमें सिलाई करते थे रात में, दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात में करती थी मैं सिलाई।
1: देखा,
0: मेरी सास कहती है आंखें फोड़ लोगी, एक तो वैसे इतनी परेशानी, इतनी दुखमाओ, और ये आंखें भी फोड़ लेना। मैं कहती कोई बात नहीं है माता जी, अभी ये परेशानियां आगे चल के बिल्कुल नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल, श्रोताओं देखा कि कितनी कठिनाई है, दिए में, लैंप में, मोमबत्ती में इस तरीके से संघर्ष करें, और आज के आधुनिक युग में जब हमारे पास लाइट है, इन्वर्टर है, मोबाइल है, एसी है, कूलर है, पंखा है, बिजली सब कुछ है, ऐसे में भी हम डिग जाते हैं। और तब उस विपरीत परिस्थितियों में भी रामलली जी नहीं डिगी, ने मजबूत हौसलों और इरादों के दम पे उस विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए हम यही संदेश लेकर आएंगे कि क्या परिस्थितियां कितनी भी विचलित हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर काली रात के बाद सुबेरा जरूर होता है। अपने हिम्मत को मजबूत बना के रखें, प्रयास करते रहें, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहिए, निश्चित रूप से आपको एक नई दिशा और एक नया राह मिलेगा। रामलली जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आप हमारे स्टूडियोज में पधारी, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, अपने जीवन के इतने सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका अनेक अनेक धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

पीछे बैठ करके मैं आज मेहमान थी श्रीमती रामलली, इनसे बातचीत कर रहे थे ब्रजेश तिवारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया।

सुनाओ आइए, अब बता दें आपको कुछ खोई हुई व्यक्तियों के बारे में। आप हैं सोहानी मौर्य, पुत्री पवन मौर्य, निवासी हैं चौधरी सराय थाना कोतवाली जिला। बताइए, उम्र है सोहानी मौर्य की 15 वर्ष, लंबाई 5 फीट है, बोलचाल की भाषा सोहानी की है, हिंदी। अगर आकृति एवं रंग रूप की बात की जाए तो रंग गोल चेहरा है, रंग गेहुआ है, आंख नाक कान सामान्य है, काले बाल है, इकहरा मजबूत जिस्म। सुहानी मौर्य ने सफेद शर्ट और काली जींस पहनी है इन्होंने। सुहानी मौर्य से संबंधित जानकारी अगर आपके पास हो तो आप मोबाइल नंबर 07555425211 पर दे सकते। जी हाँ, मोबाइल नंबर है 07555425211 पर, या आप प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बदायूं को भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 07555425211। आप है शिवम पाठक, पुत्र हरपाल पाठक, निवासी बसई थाना बिसौली सिर पर बताई। शिवम की उम्र है 25 वर्ष, लंबाई 5.6 फीट की है और की बोलचाल की भाषा हिंदी है। शिवम का गोल चेहरा है, रंग गेहुआ है, आंख नाक कान औसत है, काले बाल है, इकट्ठा मजबूत जिस्म है इनका। शिवम ने नीली जीन्स और काली चेकदार शर्ट सफेद जूते पहने हुए हैं। शिवम पाठक के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको मिले तो आप मोबाइल नंबर 7533969217 पर खबर दे सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल नंबर है 7533969217, यानी कि 7533969217 पर संपर्क कर सकते हैं, या प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बिसौली बनाई को भी संपर्क आप कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कुछ खोई हुई व्यक्तियों के बारे में।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन एंड कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का जो विषय है वो है वायरल फीवर शंकाएं एवं आधुनिक उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 4 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर आपको हमारे याद ही है 0581251700। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए, विषय रहेगा वायरल फीवर शंकाएं एवं आधुनिक उपचार। रिकॉर्ड की तारीख और समय कल मंगलवार 4 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर हमारा 0501251700।
1: है शाम के 7:20 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov।

0: www.gov.in
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी के निधन पर शोक जताया गया। इसके साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चा और सुझावों पर काम कर सरकार आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदल सकी है और इसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाना संभव हो सका है। श्री योगी ने कहा कि इस बार भी सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाए।
3: इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
2: इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 1 से 1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी सदस्यों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
4: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित कितने बड़े बड़े कदम उठाए। कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
2: लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के एनएसओ प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन जीएसपी 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। बैठक में सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया।

0: उन्होंने कहा कि तकनीकी के आदान प्रदान और साझा अनुभवों के माध्यम से ब्रिक्स देशों का उद्देश्य डेटा की कमी को दूर करना, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना और भविष्य के लिए लचीली सांख्यिकी प्रणालियां बनाना है। सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता बैठक में दोहराई। प्रशासनिक डेटा की क्षमता और विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही देश प्रगति के पथ पर है। आज उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां नोएडा में निवेश कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने गरीबों को पैर से खड़ा करने का काम किया है, उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। नागरिक व्यवस्था के पहले नीचे बात करता आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल्य मंत्र दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए कतारों में लगे हैं। प्रदेश सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बागपत, कानपुर, आगरा और संभल सहित कई जिलों में सुरक्षा, सफाई, पेयजल और आवागमन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में शिव भक्ति के साथ नारी शक्ति की भी बड़ी सहभागिता देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में महिला शिव भक्त गंगा यमुना का जल लेकर काशी के लिए प्रस्थान कर रही हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। यहां बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है और श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सावन के प्रथम सोमवार पर धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिवमय उठी। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। गंगा द्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िए, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुंचकर दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। डाक बम कांवड़ियों के लिए अलग लेन तथा भदोही से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल भी स्थगित रखा गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: इधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 4 अगस्त से 12 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया है। ये निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चहलुंग के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। हुसैनाबाद और संबद्ध ट्रस्ट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक

0: प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
6: इतनी भी क्या जल्दी थी।
5: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना, और ये
6: मेरी गुड़िया के नाम।
5: और दादी आपके नाम?
7: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो क्या
7: RBI कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं, फिल्म का नाम है याराना, इसे गाया है किशोर कुमार ने, बोल है अनजान के, संगीत है राजेश रोशन साहब का, पसंद है आप सभी की। आप हैं आसिफ भाई, गरीब भाई, विक्की भारद्वाज, नासिर भाई की जोड़ी से लिख रहे हैं हम ये बरेली जंक्शन से, और आप हैं बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। ये साथी हमारे हैं आसू चुग, अश्वनी चुग, गोविंद, टोनी लव और राधे, भाविक ढींगरा, बागपत यूपी से सजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, और ये हैं साथी हमारे वारिस अली खान, डॉक्टर शाहनवाज खान, सलीम खान, ऐशबाग लखनऊ से। आप हैं औरंगाबाद छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबी और बेबी अंशिका, साथ में तनमय गजबीये। लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिब राय और मेहराज जहां। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, ज्योति, सूरज, रियांश और पूरा ठाकुर परिवार। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने गीत पसंद के कार्यक्रम अनुरोध गीत में। आप है आलमपुर से जायद सलमानी, मोहल्ला तलैया और लजागीर से हैं फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, राम प्रताप शर्मा, गैक्टा काशीपुर धर्मपुर बरेली से फहीम खां, सिद्दीकी अली साविया, राम प्रताप शर्मा, दूरनगर से ठाकुर मन सिंह कटेरिया और सभी साथी इनके। और ये खत हमें मिला है कटरा चांदखा मौर मंदिर पार्ट नंबर 11 प्राण साहब बरेली से नुखलाल मोरे, प्रकाश मौर्य, सुंदरी मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, खुशबू, सुनील, आरोही और स्वाति मौर्य। ये हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरा ठेकेदार नसीबन बेगम, आशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया, शुएब खान, पोत्रा मुश्तबा से हैं मुश्तबा खान, राउफ भाई और शाहीन भाई, गांधीबाग ककोला से रमेश कटनकर और साथ में हैं वैशाली कटनकर। ये हैं मनकरा मंदिर बीडी कॉलोनी करगना से बेनी सिंह सागर, पंडीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, ओमपति भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा और साथ में शिवांश और प्रताप सिंह। और ये हैं साथी हमारे हमें ये लिख रहे हैं निकट बिजली घर का

साहिबगंज से हैं, कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, दानिश, यशपाल दिवाकर, और साथ में हैं चौधरी राजपाल सिंह, मनोज वर्मा, उमेंद्र पुरी गोस्वामी, राजीव गिरी गोस्वामी और समस्त साथी। ग्राम रामपुरा किसान मजरा सिमरिया तहसील बीरगंज बरेली से हैं राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, सोमपाल वर्मा, साथ में तेज प्रकाश वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल वर्मा, साथ में है ननकी देवी वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी साथ में हैं। तो अब सुनवाने जा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत है वर्मा मलिक का, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अनुरोध की थी। करके मैं सुनवाने जा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है चांदनी। इसे गाया है गीत को सुरेश बड़कर और अनुपमा देशपांडे ने, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत है शिव हरि का। अनुरोध है आप सभी का, आप हैं बजीगंज जिला बदायूं से, प्रेम कुमार वाश ने, प्रभात, शीला, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेदरचा और ऐश्वर्या कमल वाष्णे का, पूरा वाष्णे परिवार लिख रहा है। आप हैं परिमहल कासगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा खान और इल्मा खान। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप हैं मोहल्ला हलवाइयान शेखपुरा बिजनौर से हैं मोहम्मद बका फरीदी, इकबाल भाई, सितारा बेगम, नसीर परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सादरानी और हिना कौसर। चंडीगढ़ से लिख रहे हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आप हैं मोहल्ला गड़ैया बरेली से मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नैवे शमसी, राजिया शमसी और साथ में देवी। ये हैं ककराला से साथी हमारे मसूर खान, फुरकान भाई, विकास सक्सेना, करमवीर, प्रवीण, अनिल नागर और सागर बख्शी, साथ में भरत यादव और दीपक वाल्मीकि।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, और कार्यक्रम में आप सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है माचिस, और सिखाया है हरिहरन और सुरेश वाडेकर ने, बोल हैं गुलजार के, संगीत है विशाल का, और अनुरोध है आप सभी का, आप हैं वैष्णव कारण चनावस्त एमपी से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्ताश खत्री, साथ में रमेश गढ़ और शराब खत्री। बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशन राय, प्रांजल राय। शिल्पकला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। आप हैं रीता, विनोद, वंश, छोटा सा अनंत, और साथ में मनोरमा देवी हैं, राम प्रसाद शर्मा जी, जशी देवी हैं, आप लिख रहे हैं। छावनी अशरफ खां के पास होली चौक बरेली से, और आप हैं मलोट पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर सिंह संधु, महावीर संधु, और साथ में हैं गोचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। सुंदरखेड़ राजपत नगर से हैं बुलडाडा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। ये साथी हैं मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल वर्मा। कालका से हैं शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: Perché un...
1: कार्यक्रम में अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा। फिल्म का नाम है दादा, इसे गाया है यशुदास ने और अनुरोध आप सभी का है। आप हैं पटेला से बत्ता परिवार है, मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता विलरा गेट कासगंज से ए मतलब साहिब जैबन शाह बेगम, अकरम साहिब और आवाद खान। आप हैं सरगुजा मैन पार्ट से सोनम थापा, सोने थापा, रेशम थापा और अदीबा थापा, बहरी क्रॉनिकल लोनी से हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, बले डोम और डब्लू डोम, जे लोड मथुरा से बसीम आसमा वेलदार, अकरम आसमा वेलदार, उल्ला आसमा वेलदार। आप पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, युवा शर्मा और सौरभ शर्मा लिख रहे हैं, अपना ये पत्र अनुरोध पत्र भेज रहे हैं। आप हैं उत्तराखंड से रेशम भाई सिद्दीकी, राजा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, रेहान और माहिरा नूर। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब हम रिले कर रहे हैं संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल, क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए

स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है।

तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, airbareli@cbs.gmail.com।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 100.4 FM कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: और सदन के वरिष्ठ सदस्य आलमबदी के निधन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आलमबदी इस सदन के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे और पांचवी बार निर्वाचित होकर आए थे। आजमगढ़ के निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित आलमबदी उम्र के इस पड़ाव में भी राजनैतिक सक्रियता बनाए हुए थे। 90 साल की उम्र में उनका राजनैतिक जीवन निर्विवाद छवि वाला रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के शोषित वंचित लोगों के उत्थान में लगाया। वे सदन में हमेशा इसी वर्ग की आवाज उठाते थे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अपनी पार्टी का सदस्य होने के नाते उनसे अक्सर मिलना होता था। वे इस बार भी चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े थे। राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी उन्होंने काफी काम किया। अपना दल के सदस्य रामनिवास वर्मा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के लिए आलमबदी ने काफी कार्य किया। राजनीतिक होने के साथ उनमें समर्पण की भी भावना थी। कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के सदस्य ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सदन के वरिष्ठ और वयोवृद्ध सदस्य आलमबदी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके निधन से इस सदन ने एक कर्मठ सदस्य को खो दिया। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सदस्य संजय निषाद और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उनकी पहचान उनकी ईमानदारी और सादगी थी। जनसत्ता दल के सदस्य विनोद सरोज ने भी आलमबदी के निधन पर सदन में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दलीय नेताओं के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आलमबदी के निधन पर वे उनके गाँव भी गए थे। उनका रहन सहन काफी सामान्य था। वे सदन में हमेशा क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाते थे। आज ही विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में पूर्व विधायक भोला पांडे, अमिताभ लवानिया, जगन्नाथ चौधरी, राम प्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, भगवत दयाल, अरुण कुमार मुन्ना, ओमवती, मोहर सिंह, अफसर यू आजाद, तेज भान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओंकार सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी और हनुमंत सिंह के निधन की सूचना देते हुए शोक जताया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना के साथ पूर्व सदस्यों के नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि पूर्व में ये परंपरा रही है कि जिस दिन किसी वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना दी जाती है उस दिन पूर्व सदस्यों की सूचनाएं नहीं ली जाती हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ऐसा नहीं है, पूर्व में भी इस तरह के कई दृष्टांत हैं, इसीलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है। वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर सरकार को घेरा और वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद में 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी। रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना जिसे आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। आज सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। सदन में पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन में कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन की मेज पर रखा। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में सभापति ने सदन के पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59 में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही विजय बहादुर पाठक

0: विधानमंडल समीक्षा, आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा, लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
1: मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान सदस्य आलमबदी सहित 21 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी

0: ने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, कब्जा, बेदखली, सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध ढंग से कब्जे से संबंधित वाद बड़ी संख्या में लंबित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर अत्यधिक प्रशासनिक दायित्वों का भार होने के कारण वर्षों से लंबित वादों के निस्तारण की गति धीमे है, जिस कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों और गरीबों पर पड़ रहा है। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर किरण पाल कश्यप ने कहा कि मंदिरों में लोगों की आस्था है, चोरी पकड़ में आ गई, इसकी संपूर्ण जांच कराकर बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मुकुल यादव ने कहा कि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, दान की वस्तु सामग्री का हरण करना पाप होता है, सरकार और पुलिस की कार्रवाई नाकाफी रही है, सिर्फ छोटे लोगों के विरुद्ध काम चलाओ कार्रवाई की गई है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में 12 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जबकि 3 यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार द्वारा सशक्त और निष्पक्ष जांच न होने से लोगों में चोरी की घटना के प्रति रोष है। जवाब देते हुए नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। लंबे संघर्ष के बाद रामलला के मंदिर का निर्माण 500 वर्षों बाद हुआ है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना है, जिसे आने वाली पीढ़ियां देख सकेंगी, हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। सरकार का जवाब शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष समेत सपा के सभी सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गए। सभापति ने सदन को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, लेकिन सदस्य वेल में डटे रहे। तब सभापति ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसके बाद सदन के स्थगन का समय 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने के बाद भी सपा सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे और नेता सदन ने सरकार का पक्ष रखा, हालांकि शोर शराबे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव मौर्य ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ी व्यवस्था की है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं और कोई टूटे नहीं, इसका सरकार ख्याल रख रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से बात करके कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के हस्तक्षेप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस दौरान कुछ देर के लिए आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा, लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

जावेद अख्तर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म उदित यस बॉस में। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की।

हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। आवाजें हैं अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और उदित नारायण की।

देव कोहली का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं अनुराधा श्रीराम और सुमन श्रीधर की। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा रहता है।

जिस देश में गंगा रहता है, सी फिल्म के गीत के साथ यह वक्त है चित्रपट संगीत के कार्यक्रम को यही विराम देने का। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर

0: करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार

0: सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
4: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार

0: मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। तर्ज है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है राजकुमार।
5: रंग बता

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लव मैरिज।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर

0: में आई है
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, बहुत गाली दी।
3: प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है जयदेव, फिल्म का नाम है लैला मजनू।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है श्री 420।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने

0: लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

0: अब हो।
1: किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त

और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं, और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी।

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगल-ए-आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपरहिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

0: फिल्म कोहिनूर।
1: तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो,
2: तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो।
1: खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो,
2: रंग लो, तन रंग लो जी आज मन।
0: और फिर फिल्म मदर इंडिया।

0: एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।
1: एक

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल।

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था। और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं? बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

30 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा किया।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

साथियों, सावन के रिमझिम फुहारे जब खिड़की पर दस्तक देती है तो कहीं ना कहीं कोई पुराना गीत याद आ ही जाता है। कभी मोहब्बत का एहसास, कभी बचपन की यादें और कभी दोस्तों के साथ बिताए वो बारिश वाले दिन भी हमें जरूर हमारे दिमाग में दस्तक दे जाते हैं।

साथियों, बारिश के मौसम में ऐसे गीत सुनने को मिल जाए तो मौसम अपने आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है ना, सही बात। और साथियों, सावन सिर्फ एक मौसम नहीं, ये एक एहसास है। किसी के लिए सावन बचपन की याद है, किसी के लिए प्यार की पहली दस्तक, और किसी के लिए गांव की गलियों में झूलते झूलों की कहानी। आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं ऐसा ही एक और सदाबहार फिल्मी गीत, फिल्म अजनबी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

साथियों, बारिश की एक खासियत है, ये पुरानी यादों को जैसे धोकर फिर से ताजा कर देती है। पहली बारिश में स्कूल से लौटना, कागज की नाव बनाना, बारिश में पकौड़े और चाय और रेडियो पर बजता कोई खुद का पसंदीदा गीत। कभी कभी तो लगता है कि बारिश बाहर कम हमारे भीतर ज्यादा होती है, और जब बारिश के साथ साथ संगीत मिल जाए तो ये एहसास और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो चलिए, हम माहौल को थोड़ा और सुरी

साथियों, आप भी इस समय सावन की बारिश का आनंद ले रहे हैं तो हमारी इस संगीत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। शायद बाहर बारिश हो रही हो या आप किसी खास इंसान को याद कर रहे हो, जो भी हो संगीत को अपना साथी बनाइए, क्योंकि कुछ मौसम आंखों से नहीं दिल से देखे जाते और सावन भी उन्हीं मौसमों में से एक है। कार्यक्रम में आइए, अब सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत फिल्म हमजोली से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

साथियों, सावन आते ही हरियाली के साथ साथ बाजारों में भी रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगती है। खासकर हरी चूड़ियां सावन की खास पहचान मानी जाती है। भारतीय परंपरा में हरा रंग, हरियाली, प्रकृति, नई ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सावन में चारों ओर फैली हरियाली के कारण हरी चूड़ियां इस मौसम की खूबसूरती से भी जुड़ गई हैं। साथियों, चूड़ियों की खनक सिर्फ एक आभूषण की आवाज नहीं बल्कि हमारे लोक संस्कृति और त्योहारों की खूबसूरत यादों की ध्वनि से भी जुड़ी हुई है। और साथियों, सावन की फुहारें, हाथों में हरी चूड़ियां, हथेलियों पर मेहंदी, झूलों की पिंग, ये सब मिलकर सावन की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें परंपरा और प्रकृति दोनों के रंग दिखाई देते हैं। कार्यक्रम में अब वक्त है अगले गीत को सुनने का, जिसे हमने लिया है फिल्म आज का अर्जुन से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी सावन के रंग फिल्मी संगीत के संग वाली खूबसूरत संगीत यात्रा को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। उम्मीद है बारिश की बूंदों, सावन की खुशबू और इन्हीं फिल्मी नगमों ने आपके इस खूबसूरत शाम को थोड़ा और खुशनुमा बना दिया होगा। फिर मिलेंगे एक नई थीम, नए किस्से और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सावन की फुहार का आनंद लेते रहिए और याद रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए शेख मोहम्मद इब्राहिम का 3 ताल में तबला वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना शेख मोहम्मद इब्राहिम का तीन ताल में तबला वादन, और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त हुआ।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और

0: और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further